आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। आज मंगलवार है, शक संबत 1948, ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार दिनांक 26 मई सन 2026। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

सुप्रभात आगरा, यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को हैं। बस अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम कर

0: जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Rakel.
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम की प्रस्तुति में सुनते हैं संवेद स्वर में यतेश खान।

0: कार्य सफल होते सभी करें जो उनका ध्यान, साथ कभी ना छोड़ते श्री राम भक्त हनुमान।
1: श्री हनुमान जी में भगवान रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी हैं, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

राम कृपा नवजीवन है, राम का नित नित वंदन है, श्री राम सहारे ही मनवा मंगल में तन और मन है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब समय हो चला है चिंतन कार्यक्रम का। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं दूसरों के लिए सोचें।

धर्म सम्मेलन में भाग लेने जिन दिनों स्वामी विवेकानंद शिकागो जाने वाले थे, उन्हीं दिनों माँ शारदा भी श्री रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु व पथ प्रदर्शक मान लिया था। एक दिन विवेकानंद माँ शारदा के पास पहुंचे। वो उस समय रसोई में भोजन की व्यवस्था कर रही थी। विवेकानंद को देखते ही उनका चेहरा प्रसन्नता से भर उठा। माँ शारदा ने उन्हें बैठने को कहा, पर विवेकानंद बैठने वाले कहाँ थे। माँ के साथ रसोई में हाथ बटाने लगे। माँ शारदा भी काम के साथ साथ विवेकानंद से बातें करती जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने विवेकानंद से कहा, बेटा जरा चाकू उठाकर देना। उन्होंने तुरंत चाकू उठाकर माँ शारदा को थमाया। चाकू लेते हुए माँ ने देखा कि विवेकानंद चाकू को लोहे वाले भाग की तरफ से पकड़े हुए हैं और लकड़ी के हैंडल वाले भाग को उन्हें थमा रहे हैं। आमतौर पर होता यह है कि चाकू देने वाला चाकू को लकड़ी के हैंडल की तरफ से पकड़कर लोहे वाले हिस्से को ही पकड़ाने के लिए आगे बढ़ाता है। यूं तो ये बात बहुत छोटी सी है, पर यदि विचार किया जाए तो बहुत बड़ी। ये मानवीय स्वभाव है कि जाने अनजाने में पहले अपनी सुरक्षा मनुष्य स्वयं करता है, परंतु विवेकानंद तो जन सामान्य से ऊपर थे। उनमें असाधारण प्रतिभा थी। वो तो स्वयं को कष्ट देकर दूसरों के हित की बात सोचने वाले प्राणी थे। प्यार से विह्वल हो माँ शारदा ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, बेटा तुम अपने उद्देश्य में सफल होगे, लोग तुम्हारा नाम मान सम्मान से लेंगे, इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए अमर रहेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम स्वभावतः दूसरों का भला चाहते हो। इस संसार में सारे कष्टों का मूल यही है कि हम केवल अपना हित चाहते हैं। अपने छोटे से हित के लिए दूसरे का बड़े से बड़ा नुकसान करने में नहीं हिचकिचाते। देव और दानवों में भी यही अंतर है। जहां देव देता है, दानव केवल लेता है और लेता ही रहता है। एक पौराणिक कथा है। एक बार भगवान विष्णु ने देव और दानवों को भोजन पर निमंत्रित किया, लेकिन शर्त यह रखी कि भोजन खाते समय कोई भी अपना हाथ नहीं मोड़ेगा। अब समस्या ये थी कि बिना हाथ मोड़े खाना मुंह में कैसे डाला जाए। कुछ देर सोच विचार चलता रहा और देवताओं को इसका समाधान मिल गया। उन्होंने एक दूसरे के मुख में भोजन का ग्रास डालना शुरू कर दिया, क्योंकि बिना हाथ मोड़े भी सामने वाले को तो भोजन कराया ही जा सकता है। केवल मन में ये विचार भर ही आना चाहिए कि हमें दूसरों को भोजन कराना है। उधर दूसरी ओर दानवों को केवल अपने अपने भोजन की चिंता थी। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि भगवान विष्णु द्वारा लगाई गई शर्त का उल्लंघन किए बिना वे कैसे भोजन कर सकते हैं। क्षुधा से आतुर हो वे भभक उठे। क्रुद्ध होकर वे सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, अरे विष्णु, आज तुम अतिथि अपमान के पाप से नहीं बच सकते। एक ओर तो हमें आमंत्रित किया और दूसरी ओर ऐसी शर्त लगा दी।

0: कि हम भोजन ही नहीं कर सकें। विष्णु मुस्कुराए, बोले, पहले दूसरों को खिलाना सीखो, तुम्हारा पेट स्वयं भर जाएगा। तुम दूसरों की भलाई करके तो देखो, तुम्हारे कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। संसार में शांति लाने का यही तो एक छोटा सा गुर है। इस बात पर दानव बहुत लज्जित हुए।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दूसरों के लिए सोचो। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

अब एक नजर आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान पाठ। गायक कलाकार होंगी अनुराधा पौडवाल। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर आप सुनिएगा भेंटवार्ता, सस्ती और टिकाऊ खेती। वार्ताकार डॉक्टर ओपी राजपूत से कृपा शंकर की बातचीत। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर सुनिएगा वार्ता खून चढ़ाने से पूर्व सावधानियां। वार्ताकार होंगे डॉक्टर एचएल राजपूत। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास का समय रहेगा सुबह 7:31। फिल्म संगीत का आनंद आप लीजिएगा सुबह 8:45 पर, 9:25 पर, सुबह 10 बजे, 12:30 पर और दोपहर 2:45 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 पर आप सुन सकते हैं सुनीता धाकड़ के गाए कुछ ब्रज लोक गीत।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर आप सुनिएगा पंडित निखिल बैनर्जी का राग अहीर भैरव में सितार वादन। कार्यक्रम आज के कलाकार का समय रहेगा सुबह 11:00। 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। 12:00 आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। महिला श्रोताओं का कार्यक्रम घर संसार का समय रहेगा 1:15। इसमें चर्चा रहेगी पहचाने अपनी काबिलियत। अप टू डेट सेक्शन में सुनिएगा रिसाइकलिंग। वार्ता रहेगी बच्चों से करें मित्रता का व्यवहार। वार्ताकार होंगी नीलम यादव। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर आप सुनेगा ए हरिहरन की गाई छंद गजलें।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर सुनेगा उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को। इनके साथ ही आप सुन सकते हैं पंडित अजय पोहनकर का गायन। दोपहर 3 बजे आप सुनेगा कार्यक्रम हेलो मेरे पसंद का पुनः प्रसारण। संवाद प्रस्तुतकर्ता होंगे अनिंद्र सिंह। हमारी शांतिकालीन सभा के कार्यक्रमों में शाम 5:10 पर आप सुनेगा भक्ति वरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:30। इसमें चर्चा रहेगी राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन पर। वार्ता में सुनेगा हिंदू मुस्लिम सौहार्द के विलक्षण पैरोकार काजी नजरुल इस्लाम। वार्ताकार होंगे गुंजन तिवारी।

नेगा चर्चा स्वस्थ श्रमिक समृद्ध राष्ट्र। साथ ही वार्ता प्रसारित की जाएगी सौर ऊर्जा का प्रभाव, वार्ताकार होंगी पुनीता चतुर्वेदी। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आप सुनेगा वार्ता पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावास प्रबंधन, वार्ताकार होंगे डॉक्टर सी आर वर्मा। मेरी माटी मेरा देश ये कंप्यूटर कार्यक्रम आप सुनेगा शाम 7:31 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे देशभक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती। चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:30। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनिएगा आचार्य गोस्वामी का रागपुरिया धनश्री में ख्याल गायन। और हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों में रात्रि 9:30 पर सुनिएगा मनी टॉक। और हमारे लखनऊ केंद्र से रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण। श्रोताओं, ये थे आज की सभा के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

ग्रामलोक कार्यक्रम में शाम 6 बजे सुनिएगा चर्चा, स्वस्थ मिट्टी संपन्न किसान। भेंट वार्ता में सुनिएगा धान की उन्नतशील खेती कैसे करें। वार्ताकार होंगे वार्ताकार सौरभ उपाध्याय से लोकेंद्र पाठक की बातचीत आप सुन पाएंगे। मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 पर

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान पाठ, गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल। अब सुनते हैं खेती की बातें कार्यक्रम में भेंट वार्ता। सस्ती और टिकाऊ खेती वार्ताकार डॉक्टर ओपी राजपूत से कृपा शंकर की बातचीत सुनते हैं।
1: जी कृपा शंकर जी,
2: डॉक्टर साहब, सस्ती और टिकाऊ खेती का क्या मतलब है?
1: हाँ कृपा शंकर जी, जो सस्ती और टिकाऊ खेती की बात आ रही है आजकल, उसका अर्थ यह है कि हम जो बढ़ती हुई हमारी जो आवश्यकता हैं आज, उसकी आपूर्ति कैसे करें और जो भी संसाधन हमारे खेती में उपलब्ध हैं उनका समुचित उपयोग करें और ऐसा समुचित करें कि उत्पादन भी बढ़ता जाए और हमारी जो इनका ह्रास भी ना हो, नुकसान भी ना हो, तो इसी को हम कहेंगे टिकाऊ खेती जो है।
2: टिकाऊ खेती के लिए डॉक्टर साहब किसान भाइयों को प्राकृतिक संसाधनों से और जूझना पड़ रहा है।
1: हाँ बहुत बढ़िया। हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों में जैसे पानी है जो मुख्य रूप से है, सिंचाई जल का हमको समुचित उपयोग करना होगा और दिनों दिन ये जो हमारी जो वर्षा देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष कम होती चली जा रही है और भूमि का जो जल स्तर है नीचे घटता चला जा रहा है, इसलिए आज आवश्यकता है कि हमारा जो भी उपलब्ध पानी है हम उसको फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के अनुसार दें।
2: डॉक्टर साहब, टिकाऊ खेती के लिए हमें पर्यावरण की विशेष आवश्यकता है।
1: हाँ बहुत बढ़िया, आपने ये प्रश्न पूछा है कृपा शंकर जी। जहाँ पर्यावरण सुधारने की बात आ रही है, हमने अब तक जो है पहली जो हरित क्रांति हमको मिली 1968 से लगा करके 85 तक, उसमें हमने अधिक से अधिक उर्वरकों का, अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग किया, तो कीटनाशकों के प्रयोग से हमारा ये पर्यावरण जो बिगड़ा है उसको हमें सुधारना है, क्योंकि कीटनाशक जो जितने भी हमारे हैं, चाहे फफूंदी नाशक हैं या शाकनाशी हैं, ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, कुप्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हमको जो है आज देखना है कि इसके क्या विकल्प होंगे।
2: डॉक्टर साहब, कीटनाशक दवाएं बहुत महंगी होती जा रही हैं, जिससे हाँ, किसान भाइयों को बहुत जूझना पड़ रहा है।
1: हाँ,
2: इसका कोई और विकल्प है आपके?
1: हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। ये जो कीटनाशी हमारे जो बड़े महंगे हैं, जैसे देखा कि कीट मारने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं मेलाथियॉन भी कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य भी हमारी जो हैं दवाएं हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, इनका विकल्प हमारे दिमाग में ये है कि पौधों के रस हैं उनका प्रयोग किया जाए। इसके अलावा पौधों के रस में

0: आपने अभी रस वाली बात की, पादक जो रस हैं वो हमें कौन-कौन सी फसल से प्राप्त हो सकते हैं?
1: हाँ, बहुत अच्छा। ये जो हमारे गांव में देखा होगा कि नीम है, नीम जो है खूब उपलब्ध है, और हम नीम की निवौली जो है उनको इकट्ठा करें, उसका सुखा करके पाउडर बना लें, और या उसका निवौली का तेल निकाल लें, तो तेल का अगर हम उसका छिड़काव फसलों पर कर देंगे, 0.03% का एक जो घोल है इसका नीम का तेल का, फसलों में कीड़ा मारने के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। साथ ही ये नीम तो है ही, और हमें नीम जो अब आ रही हैं, बौर आ रहा है, समय फूल आ रहा है, देखा के जून जुलाई अगस्त में निवौली भी होंगी, हमारा किसान भाई इसे आराम से एकत्रित कर सकता है, और जिससे भूमि में प्रयोग से कोई भी कीड़ा जैसे दीमक ही है उस
0: नहीं
1: नहीं लगेगी।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने नीम वाली बात की, मैं एक खेती के लिए फसल जो रस कैसे प्राप्त किया जाए, ये
1: ये जो
0: कीटनाशक दवाएं महंगी होती जा
1: हाँ
0: रही
1: ठीक
0: हैं।
1: है, देखो अन्य जो हमारे पादप रस हैं उसमें जैसे तुलसी जी है, तुलसा जिसको कह
0: अच्छा
1: देते हैं, और तंबाकू है, मेंथा है, हल्दी है, तो इनका हम जो अर्क निकाल लें, तो अर्क निकालने के बाद जो अगर फसल में कोई भी कीड़ा लग रहा है, उसका अर्क का छिड़कने से घोल बनाने के बाद अगर फसल पर छिड़क देंगे
0: डॉक्टर
1: तो
0: साहब,
1: फसल पहले कीड़ा मर जाएगा।
0: हम इसका घोल कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे?
1: जैसे हमको तुलसी जी लेनी है तो तुलसी जी के पत्ते ले लीजिए, और तुलसी की आप काश्त भी होने लगी है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे बहुत से प्रगतिशील किसान भी तुलसी की खेती करने लगे, महज इसीलिए तुलसी जी की खेती कर रहे हैं कि हम जो है आगे से जो है रस निकाल लें कूट पीस करके पत्तियों का, और जो भी हमारा जो रस आ जाएगा उसको हम फसल पर छिड़क देंगे।
0: नहीं डॉक्टर साहब, ये रस वाली बात अभी की आपने, ये सुखा के किया जाए या ये गीला किया जाए इसे, ये और
1: वो
0: बताएं।
1: हाँ, चाहे आप सुखा के करें चाहे गीला करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे तुलसी जी की पत्तियां आप हरे हरे हरा ले लीजिए, हरी पत्तियों को आप रस निकाल लीजिए और फसलों पर छिड़कीए जो है।
0: एक बात और है डॉक्टर
1: हाँ
0: साहब,
1: जी
0: कि भूमि की उर्वरा शक्ति जो घटती जा
1: हाँ
0: रही है, इससे सुधारने के लिए हम कौन-कौन सी फसल पद्धति अपनाएं?
1: हाँ बहुत अच्छा। जैसे हम इस क्षेत्र में आगरा मंडल में विशेष रूप से बाजरा और गेहूं फसल चक्र ले रहे हैं, या बहुत से हमारे काश्तकार भाई धान और गेहूं भी ले रहे हैं। ये फसलें हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा भूमि से तत्वों का ग्रहण करती हैं। हमको ऐसी परिस्थिति में जहाँ हमारी ये फसलें हम ले रहे हैं लगातार और भूमि की उर्वरा शक्ति घट गई है, तो उस जगह किसान भाई मेरे दिमाग में आता है कि हम दलहनी फसलों का इनका इस्तेमाल करें, चाहे वो हम गर्मियों में करें, चाहे रबी में करें, चाहे हम खरीफ की फसल में करें।
0: दलहनी फसल डॉक्टर साहब कौन-कौन सी होती है?
1: हाँ बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। हम जो गर्मियों में बात आती है, एक तो मूंग है, उड़द है, अरहर है और लोबिया, ये हमारी जो है गर्मियों में है और यही बरसात में भी आती हैं।
0: डॉक्टर साहब, मूंग और उर्द वाली बात जो आपने
1: हाँ
0: कही, हमें पानी से और जूझना पड़ रहा है, ये
1: बहुत
0: फसल नहीं हो पा रही है हमारे यहाँ, तो इसके लिए क्या विकल्प है आपके?
1: हाँ हम ये सोचते हैं कि हमारे जिन काश्तकार भाइयों के पास पानी की सुविधा गर्मियों में नहीं है, तो वो गर्मियों में ये मूंग या उड़द ना लें। हाँ इसकी जगह हम ये समझते हैं कि जैसे बाजरा है, बाजरा के बाद गेहूं लेता है, तो बाजरा के स्थान पर जो है अरहर अगर लेता है बरसात में, तो गेहूं भी आराम से हो जाता है। तो ऐसी आजकल हमारे पास बहुत सारी अरहर की भी किस्में हैं कि जो जल्दी पक जाती हैं, जैसे उपास 120 है। तो मैं समझता हूँ कि या तो हम जो है खरीफ में कोई दलहन ले लें, जैसे हम बाजरा के स्थान पर अरहर ले गए, या हम रबी में ले लें, रबी में क्या है या गेहूं के स्थान पर चना ले लें, तो ये हमारी दलहनी फसलों में ये आगे बात जो है हमारे जो विकल्प होंगे जो कि हमारे फसल चक्र के।
0: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि केंचुआ की खेती भी होने लगी है।
1: हाँ बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न ये पूछा है कि जहाँ टिकाऊ खेती की बात आज हम बात कर रहे हैं किसान भाई, टिकाऊ खेती को जो सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान पहुँचाया है इन रसायनों ने, जो कीटनाशी हैं, फफूंदनाशी हैं या शाकनाशी हैं, इनमें अंधाधुंध हमारे किसानों ने प्रयोग किया, उसकी वजह से हमारी ये जो पर्यावरण बिगड़ा है। और उसके लिए यदि हम जो बात करते हैं कि पर्यावरण का जो असली मित्र है हमारा, किसान का मित्र जिसको कहते हैं केंचुआ, और केंचुए को जो है देखा होगा कि ये

0: भूमि का थर्मामीटर भी बहुत से कह देते हैं कि साहब ये जो है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का एक जो है एक कारक है। तो ये जो केंचुआ हैं अब हमारी खेती में दिखाई नहीं दे रहे हैं, भूमि में बिल्कुल नष्ट कर दिए हैं, और इन्हें हमें पालना है। और इनके द्वारा जो भी कूड़ा करकट हमारे सामने आता है, जैसे बाजरे का बूलरा आ गया, धान का पुआल आ गया, मक्का की कड़वी आ गई हमारी, ये बच जाती हैं, फेंक देते हैं हम जो है, या हमारे जो खरपतवार हैं जितने भी घास फूस हैं उनमें हम जो है देखें कि इनको केंचुआ पाल करके अच्छी खाद में परिणत कर देंगे।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, सस्ती और टिकाऊ खेती। वार्ताकार डॉक्टर ओपी राजपूत से बात कर रहे थे कृपा शंकर। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार, उसके उपरांत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्।

0: हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार, उसके उपरांत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे षट्षष्टिः प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव अष्टपञ्चाशद् विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्म विभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉक्टर एन राजम अपि पद्म विभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एचडी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणम् अंतरराष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयस्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीड़ा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनम् इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशति दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्ट चिकित्सालयेभ्यः चिकित्सा साहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्री दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, और नमस्ते लखनऊ में अब बारी हो गई है कि हम आपको स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां दे दें। तो आइए सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा।
1: नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में
2: जुड़े ताजा घटनाक्रम

0: समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ समाचार दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Sunday. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। सुबह के 7:10 हुए हैं। समय है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता। खून चढ़ाने से पूर्व सावधानियां। वार्ताकार हैं डॉक्टर एचएल राजपूत।
2: रक्त चढ़ाने से पूर्व क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आखिर रक्त चढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जैसे एनीमिया, इन्फेक्शन या एक्सीडेंट इत्यादि में रक्त का शरीर से ज़्यादा निकल जाना या शरीर में रक्त का नहीं बनना, जैसे कैंसर, एप्लास्टिक एनीमिया या मलेरिया इत्यादि। मनुष्यों में 4 प्रकार का रक्त ग्रुप पाया जाता है, जिसे हम ए, बी, ओ तथा ए बी ग्रुप कहते हैं। इसके साथ में एंटीजन और एंटीबॉडी होती हैं, उसकी वजह से आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, इस तरह से ब्लड ग्रुप 8 प्रकार का हो जाता है। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। और सबसे बड़ी सावधानी शुरुआती ये है कि जिस ग्रुप के व्यक्ति को जिस ग्रुप की आवश्यकता है वही ग्रुप का उसमें चढ़ाया जा सकता है। जैसे ए पॉजिटिव ग्रुप का मरीज है तो उसमें ए पॉजिटिव का ही रक्त चढ़ाया जा सकता है, ए नेगेटिव रक्त नहीं, क्योंकि उसमें एंटीजन होते हैं। उसी तरह से बी नेगेटिव ग्रुप है तो उसमें बी नेगेटिव ग्रुप का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है। इसमें एक ग्रुप होता है ओ ग्रुप, जो कि इमरजेंसी केसेस में, सिर्फ इमरजेंसी केसेस में किसी भी ग्रुप वाले मरीज को चढ़ाया जा सकता है, जिसको कि हम यूनिवर्सल डोनर या सार्वजनिक दाता कहते हैं। दूसरा होता है ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट या सार्वजनिक ग्राही कहते हैं। इसमें इमरजेंसी केसेस में किसी भी ग्रुप का, ए बी, ए बी या ओ का ग्रुप ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ये सिर्फ इमरजेंसी में ही संभव है, अन्यथा हमें जिस ग्रुप का, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसी ग्रुप के उसमें हमें ब्लड चढ़ाना चाहिए। दूसरी सावधानी हमें डोनर में रखनी चाहिए। डोनर स्वस्थ होना चाहिए, 15 से 55 वर्ष की उम्र का होना चाहिए, उसके कोई भी क्रॉनिक बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, एचआईवी है, मलेरिया है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हेपेटाइटिस है या दिल की बीमारी है। और ब्लड देने वाले व्यक्ति का वजन भी 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा स्वस्थ व्यक्ति ही डोनर हो सकता है। और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 6 महीने में रक्तदान कर सकता है। 4 हफ्ते में रक्तदान किए हुए रक्त की भरपाई हो जाती है। रक्तदान के पश्चात कोई शरीर में शारीरिक कमजोरी, जैसे कि जनमानस में भ्रांति है, नहीं होती है, बल्कि रक्तदान के पश्चात शरीर में खून बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। आम जन में 85% आरएच पॉजिटिव रक्त पाया जाता है, 15% आरएच नेगेटिव रक्त पाया जाता है। एक ग्रुप होता है ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब बड़ा ऑपरेशन हो जिसमें बहुत रक्त की आवश्यकता हो, उतने देने वाले डोनर नहीं हो, तो इसमें हम जिस व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है उसका हम पहले से ही करीब 1.5 महीने 2 महीने पहले से ब्लड को निकाल लेते हैं और ब्लड बैंक में सुरक्षित रखते हैं, और ऑपरेशन के दरमियान उसी ब्लड को हम इस्तेमाल करते हैं। ये सुरक्षित और कारगर तरीका है, इसको हम ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा रक्तदान करना चाहिए और दूसरे लोगों को प्रेरित करना चाहिए। रक्तदान में अगर ब्लड चढ़ाते समय किसी तरह की अगर कोई परेशानी है, जो शुरुआती लक्षण है, मरीज को बुखार हो सकता है, मरीज को कपकपी आ सकती है या मरीज को शॉक की तरफ जा रहा है, तो इन चीज़ों पे हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए और जहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है उस अस्पताल में या उस डॉक्टर से तुरंत हमें संपर्क करके इस पर ध्यान देना चाहिए।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता खून चढ़ाने से पूर्व सावधानियां। वार्ताकार थे डॉक्टर एच एल राजपूत और अब सुनते हैं तेज कांत।

0: है कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं

0: देख रहा है महात्मा गांधी।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देशभर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वहीं वायलिन वादक और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश से 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कारागार विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से कारागारों को नई पहचान दी जाए। उन्होंने ओपन जेल की परिकल्पना को उपयोगी बताते हुए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री योगी ने 75 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों, असाध्य रोगों से ग्रस्त बंदियों, बच्चों के साथ जेल में रह रही महिला बंदियों तथा जमानत राशि जमा न कर पाने वाले कैदियों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कल ही कृषि विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि खरीफ 2026 की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए दलहन, तिलहन और श्री अन्न की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए अग्रिम कार्य योजना तैयार कर ली जाए और आवश्यकता पड़ने पर किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाए। श्री योगी ने जून माह से सभी विकास खंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपालों के साथ किसान मेले के भी आयोजन के निर्देश दिए ताकि किसानों को योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और प्रगतिशील खेती की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर कल चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराध्य की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। शिक्षा

0: मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल आगरा पहुंचकर ताजमहल देखा। उनके साथ उनकी पत्नी और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर अमेरिकी विदेश मंत्री का स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया। साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: प्रदेश सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को नई ग्राम पंचायतों के गठन तक अथवा अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार सभी जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासकों को केवल सामान्य और नियमित कार्य करने की अनुमति होगी, उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी आपात स्थिति में या विशेष परिस्थितियों में कोई नीतिगत निर्णय लेना आवश्यक हो तो प्रस्ताव पर जिलाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। केंद्र सरकार ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सरकार के प्रयासों से देश में उर्वरक का भंडार भी बना हुआ है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
2: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज वहां विशेष अनुष्ठान होंगे। एक रिपोर्ट।
3: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी जिसकी पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: कल पूरे प्रदेश में दिनभर की तेज धूप, भीषण गर्मी और लू के बीच रात में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। प्रदेश के गोरखपुर और अयोध्या सहित कई अन्य जिलों में बीती रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत दे दी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी लू चलने की आशंका बनी हुई है। प्रचंड गर्मी और हीट स्ट्रोक के मामलों को देखते हुए अलग अलग जिलों में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों सहित देशभर के 66 लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि प्रदेश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 6 अन्य लोगों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार विभाग और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जेलों को सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने का दिया निर्देश। जून माह से विकासखंडों में प्रस्तावित साप्ताहिक चौपाल के साथ किसान मेले लगाने पर दिया जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार। स्मारक की सुंदरता को

0: जमकर सराहा और ग्राम पंचायतों के प्रशासक की भूमिका निभाएंगे निवर्तमान ग्राम प्रधान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास का।

कार्यक्रम आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी शशांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले नजर स्थानीय सूचनाओं पर। सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस के बीच सुपरफास्ट ट्रेन ने 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांद्रा टर्मिनस ने 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होने की व्यवस्था की है। रेलवे पीआरओ ने बताया है कि सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस सूबेदारगंज से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांद्रा टर्मिनस से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी। वृद्धावस्था पेंशन में आधार से आयु प्रमाण मान्य नहीं होगा। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अब आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि आवेदन के लिए परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे।

बायोमेट्रिक से सत्यापन के बाद ही विवाह पंजीकरण। विवाह पंजीकरण में वर वधु और उनके गवाहों की पहचान बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के बाद ही होगी। सभी उपनिबंधक कार्यालयों में ये लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय भी आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

मई में कई ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चल रही हैं। उत्तर रेलवे में मेगा ब्लॉक के कारण ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। पीआरओ ने बताया है कि गांधीधाम भागलपुर स्पेशल भागलपुर, गांधीधाम स्पेशल गोरखपुर, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, बनारस अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ अहमदाबाद मल्होर, ऐशबाग और मानक नगर होकर संचालित होंगी।

वहीं आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन के फेरे भी बढ़ाए गए। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की है। पीआरओ ने बताया है कि कानपुर सेंट्रल मदुरई स्पेशल ट्रेन 27 मई तक और मदुरई से 29 मई तक चलेगी। वहीं आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन भी संशोधित दिनों में संचालित होगी।

बस रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर दायरे में बनेंगे परीक्षा केंद्र। राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाने के मानक में बदलाव कर दिया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोषागार से 30 किलोमीटर की परिधि में परीक्षा केंद्र बनाने की सुविधा दे दी है। अभी तक 10 किलोमीटर की परिधि में परीक्षा केंद्र बनाने की अनिवार्यता थी। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने इस संबंध में शासन आदेश जारी किया हुआ है और सभी आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों को निर्देश भेज दिए हैं। प्रदेश में कुछ भर्तियां काफी बड़ी होती हैं, जिनमें कई लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। यूपी में अप्रैल में होमगार्ड भर्ती परीक्षा हुई थी, इसमें 25 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था।

आगरा में पेट्रोल की कीमत 100 के पार। पश्चिम एशिया संकट के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 2.60 रुपये और डीजल के दामों में 2.72 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। आगरा में सोमवार को पेट्रोल की कीमत 98.94 रुपये से बढ़कर 101.54 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.30 रुपये से बढ़कर 95.02 रुपये प्रति लीटर हो गई है। 11वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में चौथी वृद्धि है। इसके बावजूद तेल कंपनियों को अभी भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में तेल की कीमतों में अभी और इजाफा हो सकता है। 15 मई से शुरू हुई कीमतों में संशोधन के तहत पेट्रोल डीजल के दामों में अब तक 7 रुपये से ज्यादा की प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। वहीं दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम में इस वृद्धि के बावजूद तेल कंपनियों को 600 करोड़ रुपए प्रतिदिन की हानि हो रही है। एलपीजी सिलेंडर पर भी घाटा हो रहा है। इसका असर आम आदमी की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। आगामी दिनों में ये 10 बड़े असर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें खाने पीने का सामान महंगा हो सकता है। डीजल महंगा होने से सब्जी, दूध, फल, रोजमर्रा के सामान की ढुलाई लागत बढ़ सकती है। वहीं ई कॉमर्स सेवाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। फूड डिलीवरी, ग्रोसरी ऐप और ई कॉमर्स कंपनियां डिलीवरी शुल्क बढ़ा सकती हैं, यानी घर बैठे सामान अब महंगा हो सकता है मंगाना। वहीं रोजाना सफर पर खर्च बढ़ेगा। ऑटो, टैक्सी और बस किराए में वृद्धि संभव है। इससे दैनिक यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। रोजमर्रा के सामान पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। डीजल ट्रकों का मुख्य ईंधन है। इसकी कीमत बढ़ने से फल, सब्जी, दूध आदि महंगे हो सकते हैं। साथ ही मासिक किस्तों में वृद्धि भी संभव है। महंगाई लंबे समय तक रही तो होम लोन और कार लोन पर भी इसका असर पड़ सकता है। निर्माण खर्च बढ़ने की भी इसमें आशंका है। सीमेंट, सरिया और निर्माण सामग्री की ढुलाई लागत बढ़ने से रियल एस्टेट में भी लागत बढ़ सकती है। वहीं महंगा हो सकता है हवाई किराया। जी हाँ, विमान ईंधन महंगा हुआ तो हवाई टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। हवाई यात्रा पर इसका असर देखने को मिल सकता है। कृषि लागत भी बढ़ सकती है। खेती में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सिंचाई पंप में डीजल का प्रयोग होता है। यह महंगा होने पर खेती की लागत भी बढ़ सकती है। दूध सप्लायर, छोटे ट्रांसपोर्टर्स और किराना दुकानदारों की लागत भी बढ़ेगी। इससे कमाई घट सकती है। परिवारों की मासिक बचत घट सकती है। एसआईपी, बीमा, छोटी निवेश योजनाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास। वापस नजर स्थानीय सूचनाओं पर। प्रदेश में लू की तीव्रता बढ़ेगी, रातें भी रहेंगी गर्म। नौतपा की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी और लू का असर और तेज हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि लू की यह तीव्रता 3 दिनों तक बनी रहेगी। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी समेत 33 जिलों में लू या अत्यधिक लू चल सकती है। दिन के साथ रातें भी गर्म हो रही हैं। 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ आगरा में रविवार सोमवार की रात सीजन की सबसे गर्म रात रही। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज व फतेहपुर सहित आसपास जिलों में मंगलवार को भी अधिकतम तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इन जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी ने बताया है कि लू और गर्मी से राहत मिलने की फिलहाल आसार नहीं है। प्रदेश में सोमवार को भी बांदा सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री, हाथरस में 44.9 और अलीगढ़ में 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

0: दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास। अब एक नजर खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में। विलुप्त युवक का नाम सुंदरम, पुत्र देवेंद्र कुमार, निवासी 8/49E 31 विद्यानगर कौशलपुर रोड न्यू आगरा से, दिनांक 26 मार्च 2026 से लापता है। सुंदरम की उम्र 27 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फुट 4 इंच, शरीर पतला है। घटना के समय इन्होंने काले रंग का लोअर और क्रीम कलर की फुल टी शर्ट पहन रखी थी। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी थाना न्यू आगरा को सूचित करें।

एक अन्य सूचना के अनुसार विलुप्त युवक का नाम दिनेश, पुत्र हरि सिंह, निवासी सुनारी शिवपुरी रोड, थाना सिकंदरा आगरा से, दिनांक 10 अप्रैल 2026 से लापता है। दिनेश की उम्र करीब 22 वर्ष, रंग गेहुआ, कद सामान्य है, घटना के समय उन्होंने सफेद रंग के चेक की शर्ट पहन रखी थी। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी थाना सिकंदरा आगरा को सूचित करें।

0: अंतिम सूचना के अनुसार विलुप्त युवक का नाम सुरजीत, पुत्र मानपाल, निवासी ग्राम अरोरा आवागढ़ एटा से, दिनांक 18 अप्रैल 2026 से लापता है। सुरजीत की उम्र 18 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। घटना के समय इन्होंने हरी शर्ट व काली जींस पहन रखी थी। यदि किसी व्यक्ति को इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी थाना आवागढ़ एटा को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं समाप्त हुई।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया
2: क्या?

अभी आप सुन रहे थे आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: 70,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
2: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री

बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78

0: जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए

0: 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंध ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning.

0: सैयाह फंस कर रह गए थे, जिनमें कुछ जमीन से तकरीबन 500 फीट की बुलंदी पर केबिन में मौजूद थे, जिससे ख्वातीन और बच्चों समेत सयाहों में बेचैनी फैल गई। फौरन ही इमरजेंसी इकदाम किए गए। SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज की चनार कोर और मुकामी इंतजामिया की टीमों ने मिलकर बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दी, जो 7 घंटे तक चली। सभी मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया और किसी को कोई चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तकनीकी खराबी की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात का ऐलान किया है और कहा है कि किसी तरह की कोताही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में डोरीमल इलाके के घने जंगलात में छुपे हुए मुश्तबा इंतहा पसंदों का पता लगाने के लिए तलाश की कार्रवाई आज चौथे दिन भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तसर फायरिंग के बाद दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पता लगाया है। हफ्ते के रोज वहां दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम शुरू हुआ था। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने कांगो और युगेंडा में इबोला बीमारी फैलने को आलमी सेहत तंजीम की जानिब से बैनुल-अक़वामी तशवीश की सेहत आम्मा से मुतालिक इमरजेंसी करार दिए जाने के तनाजुर में एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। DGCA ने कहा है कि युगेंडा और कांगो के लिए परवाजें चलाने वाली फिजाई कंपनियों को मुसाफिरों के उतरने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी तौर पर दाखिल करने और उन्हें वसूल करने को यकीनी बनाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: DGCA ने फजाई कंपनियों के लिए ये लाजमी बना दिया है कि वो परवाजों के दौरान सेहत से मुतालिक मखसूस ऐलान नशर करें ताकि मुमकिन एबोला केसों की जल्द निशानदेही हो सके और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो बुखार, कमजोरी, दर्द होने, सर में दर्द, गले में खराश और कह होने या खून बहने जैसी अलामतों के बारे में हवाई जहाज के अमले के अहलकारों के साथ साथ इमिग्रेशन या तिब्बी हुक्काम को पहुंचने पर इसकी इत्तला बिला ताखीर दें। DGCA ने कहा है कि अगर भारत पहुंचने के 21 दिन के अंदर इस तरह की अलामतें जाहिर होती हैं तो मुसाफिरों को मखसूस अस्पतालों से तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए और हवाई अड्डे के सेहत हुक्काम को मुत्तला करना चाहिए। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। दिल्ली में CNG की कीमत 83 रुपए 9 पैसे फी किलोग्राम हो गई है, जिसका इतलाक आज सुबह 6 बजे से हो गया है। पंजाब में म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। रियासत में 8 म्यूनिसिपल कारपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: पंजाब के साल 2027 के असेंबली इंतखाबात से पहले इन म्यूनिसिपल इंतखाबात को एक अहम सियासी इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। रियासत में हुक्मरां आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। रियासती इंतखाबी कमीशन के मुताबिक रियासत भर के कुल 1896 वार्ड से 7555 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सख्त पुलिस इंतजाम के तहत वोट डाले जा रहे हैं। यहां 32,000 पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। वोटरों की शिरकत बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वोटों की गिनती 29 मई बरोज जुमा की जाएगी। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। बुंदेलखंड खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां करीब करीब हर जिले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। जुनूब मगरबी मानसून के आज केरलम पहुंचने का इम्कान है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरलम पहुंचता है। मौसमियात महकमे ने केरलम के 14 में से 4 जिलों में कहीं कहीं शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज़ हज अदा कर रहे हैं। कल मनासिक हज के आगाज के मौके पर आजमीन हज मीना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज

0: वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदाने अराफात जा रहे हैं, जहां हज का रुकने आजम अदा किया जाएगा। ये आजमीन वहां तौबा इस्तगफार में दिन गुजारेंगे। आजमीन हज मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा रवाना होने से पहले जोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज इकराम कल सुबह मिना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। अमरीकी फौज ने ईरान के साथ जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुज के नज़दीक ईरान के मिज़ाइल लॉन्च करने के ठिकानों और कश्तियों को निशाना बनाते हुए अपने दिफा में हमले किए हैं। अमरीका की सेंट्रल कमान के तर्जुमान तिमोथी हॉकिंस ने कहा कि इन हमलों में ईरान की उन कश्तियों को निशाना बनाया गया जिनके जरिए वहां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें की जा रही थीं। उसने ये भी कहा कि अमरीकी फोर्सेज जंगबंदी के दौरान अपने फौजियों का दिफा करते हुए जब्तो तहमुल से काम लेती रही हैं। इस हमले के चंद घंटे कबल अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी मुजाकरात में पेशरफ्त होने की बात कही थी। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने मुल्क में इंटरनेट खिदमात बहाल करने का हुक्म दिया है। ईरानी हुक्काम ने 87 से ज्यादा दिन के लिए मुल्क में इंटरनेट खिदमात पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीप को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीप की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। अविका सिंह ने 4 गोल किए, जबकि प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। भारत अब इतवार को अपने अगले मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश का सामना करेगा। भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप 5 मरतबा जीत चुका है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में इलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की कयादत करेंगे। दिगर भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। अदाकार धर्मेंद्र को बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस खबर को कई अखबारात ने अपने पहले सफे पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मनासी के हज का बाकायदा आगाज, रुकन आजम वकूफ अरफा आज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आगरा पहुंचे और अपनी अहलिया के साथ ताजमहल का दीदार किया। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर खारजा डॉक्टर एस जे शंकर ने अफ्रीका डे पर मुबारकबाद पेश की, शराकतदारी को मजबूत बनाने के अजम का इजहार किया। इसके अलावा आज के अखबार की अहम बैन अलावा खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, ईरान से मुआहदा न हुआ तो जंग दोबारा शुरू होगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। रूस का कीव पर फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, 4 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म नगीना से। अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज के गए इस गीत को। लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म बोल राधा बोल से। आवाजें हैं सुरेश वाडेकर साधना सरगम की, शब्द रचना समीर की, संगीत रचना आनंद मिलिंद की।

कुमार सानू साधना सरगम की आवाज़ में अभी आपने सुना दीवाना फिल्म का गीत। शब्द रचना समीर की थी, संगीत रचना नदीम शिवण की। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम रोग से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर की। गीत लिखा है पंडित नरेंद्र शर्मा ने, संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म खलनायक से। गीत को गाया है अलका याग्निक ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आपने सुना फिल्म खलनायक से। गीत को गाया था अलका याग्निक ने, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हाथरस और रायबरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार सिंघल का।
1: जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण कार्य की शुरुआत से हाथरस में हो गई है। इस अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी आवास से किया गया, जहां पर्यवेक्षक और प्रांगणकों ने जिलाधिकारी अतुल बस के आवास का सूचीकरण करते हुए मकान संख्या अंकित की। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में मकान सूचीकरण जनगणना कार्य के लिए 3607 प्रांगणक और 472 पर्यवेक्षक तैनात किए गए। यह अभियान 22 मई से 20 जून तक चलाया जाएगा, जिसके तहत जिले के सभी मकानों और परिवारों का विवरण दर्ज किया जाएगा। जिले में पुलिस लाइन

0: ऑडिटोरियल में जिले की प्रभारी मंत्री और महिला कल्याण बाल विकास सेवा ये पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित हुए। इस मौके पर BLS इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया और BLS इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने नारी सशक्तिकरण पर आधारित नाटक कृष्ण लीला पर आधारित मनमोहक नृत्य व छात्र छात्राओं ने नारी शक्ति पर आधारित नुक्कड़ नाटक पर प्रस्तुति दी। प्रभारी मंत्री ने नवनियुक्त 225 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर बधाई और शुभकामनाओं के साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विकास भवन सभागार में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग श्याम बिहारी गुप्ता की अध्यक्षता एवं सदस्य उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग रमाकांत उपाध्याय की उपस्थिति में गौ संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि गौवंश संरक्षण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। जनपद में सिंचाई व्यवस्थाओं को सुदृढ़ सुचारू एवं प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त खंडों के कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में करते हुए जिलाधिकारी अतुल वस ने संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में नहरों नालों एवं नदियों की वर्तमान स्थिति उनकी सफाई मरम्मत जल प्रवाह अधिष्ठान में कार्यरत कर्मियों की स्थिति तथा नगर क्षेत्रों में नहरों नदियों में गिरने वाले दूषित जल की समस्या पर गहनता से विचार करने के साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्त आवश्यक कार्यों व टेंडर प्रक्रियाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से समस्या का सामना न करना पड़े। जनपद में औद्योगिक विकास को गति देने ये उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक करते हुए जिलाधिकारी अतुल वस ने उद्यमियों की समस्या का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता पर समयबद्ध एवं गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करने को कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग बंधु समिति केवल औपचारिक मंच नहीं बल्कि उद्यमियों और प्रशासन के बीच प्रभावी संवाद एवं समाधान का सशक्त माध्यम है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल वर्ष ने EVM BVPAT वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। EVM BVPAT वेयर हाउस के मासिक निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारियों ने CCTV कैमरे सशस्त्र बलों की तैनाती अग्निशमन उपकरणों आदि व्यवस्थाओं को निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल निगम ग्रामीण के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में मुख्य विकास अधिकारी PN दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण पेयजल योजना का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति पूर्ण या अपूर्ण कार्यों को अनारंभ परियोजना की बिंदुवार समीक्षा की। विश्व हिंदू परिषद जनपद हाथरस द्वारा तला चौरा स्थित कार्यक्रम स्थल पर 101 पानी की टंकियों का लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अतुल वर्ष पुलिस अधीक्षक चंद्रजीव नाथ सिन्हा मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा भीषण गर्मी के दृष्टिगत पशु पंछियों एवं गौवंशों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना एक पूर्ण एवं मानवीय कार्य है। जल संरक्षण एवं जीव जंतुओं की सेवा के उद्देश्य से स्थापित की जा रही पानी की टंकियां नान समाज में सेवा संवेदनशीलता ये माननीय मूल्यों को का संदेश देंगी।
1: हाथरस जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
2: जिलाधिकारी सरनीत कौर बोगा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में सुचारू एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा आंधी तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों को रिस्टोर कर विद्युत आपूर्ति बहाल किए जाने की प्रगति की तहसीलवार समीक्षा प्रस्तुत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन क्षेत्रों में आंधी तूफान के कारण विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं वहां मरम्मत कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए विद्युत विभाग पूरी तरह तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील महाराजगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके क्रम में तहसील व थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की इन शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति उत्तर प्रदेश डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने बीते 24 मई को NTPC उजाहर में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के जनपद

0: स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री जी ने जनपद में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, राशन कार्ड सत्यापन, पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ उपलब्ध कराया जाए। मंत्री जी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा किसी भी स्तर पर अनियमितता एवं शिकायत की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। जनपद में बढ़ रहे तापमान एवं भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी सरनीत कौर बोका द्वारा जनहित में हीट वेव लू से बचाव हेतु एडवाइजरी जारी की गई। जिलाधिकारी ने आम जन से सतर्कता बरतने तथा आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की है। जिलाधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार लगातार कई दिनों तक सामान्य से अधिक तापमान रहने पर हीट वेव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गंभीर एवं खतरनाक साबित हो सकती है। विशेष रूप से वृद्धजन, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा एवं अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खुले में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं कामगारों को सिर एवं शरीर को गीले कपड़े से ढककर रखने तथा समय समय पर छायादार स्थान पर विश्राम करने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी में दोपहर 12 से 3 तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचने की विशेष अपील की गई है। जिलाधिकारी सरनीत कौर बोकर ने बताया कि भारत जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में जनपद रायबरेली में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। इस अभियान के तहत नियुक्त प्रगणक एवं सुपरवाइजर घर घर जाकर मकानों का सर्वेक्षण करते हुए सूचीकरण और गणना का कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने इस कार्य को गंभीरता एवं 100% सफलता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी मकान गणना से वंचित न रह जाए। जिला प्रशासन के अनुसार जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जनसंख्या, आवासीय स्थिति, संसाधनों एवं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े संकलित किए जाते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग भविष्य की योजनाओं, सरकारी नीतियों तथा जनहितकारी कार्यक्रमों के निर्माण में किया जाता है। ऐसे में मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनपद में नियुक्त प्रगणक और सुपरवाइजरों ने आज से अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचकर मकानों का सत्यापन, सूचीकरण एवं गणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस दौरान टीम द्वारा प्रत्येक मकान की स्थिति, उपयोग, संरचना सहित निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवश्यक विवरण संकलित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण के दौरान कोई भी मकान छूटने न पाए, प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि
1: जनगणना 2027 है, उसका द्वितीय चरण हुआ है, जिसमें जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं वो डोर टू डोर जाकर हाउस की लिस्टिंग करेंगे। हाउस की लिस्टिंग यानी घर पर नंबर डालेंगे और उनको ब्लॉक के रूप में संगठित करेंगे, जिससे कि जब वो फिर से घर में जाए तो वो प्रति घर जा पाए और कोई भी घर छूटने ना पाए। सभी से अनुरोध है कि इनके साथ सहयोग करें और जो इनके द्वारा दिए गए नंबर वगैरह है उसको मिटाए ना, उसको मिटाना एक अपराध भी है।
0: जिलाधिकारी सरनीत कौर रोका ने बीते 21 मई को विकास कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का जायजा लेने हेतु निर्माणाधीन मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय बेला भेला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, निर्धारित मानकों एवं समयबद्ध प्रगति की जानकारी संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से प्राप्त की।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, समय हो चला है पुरानी फिल्मों से गीतों के कार्यक्रम गीत मंजुषा का।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम था मेरे सनम। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीत से सवारा था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कश्मीर की कली से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी आशा भोसले की। गीत लिखा है SH बिहारी ने, संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

अभी आपने सुना हावड़ा ब्रिज फिल्म में आशा भोसले को, कमर जलालाबादी के लिखे गीत को संगीत से सवारा था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। आवाजें हैं आशा भोसले किशोर कुमार की, मशहूर सुल्तानपुरी की रचना को संगीतबद्ध किया है एस टी वर्मन ने।

कार्यक्रम के आखिरी गीत अभी आपने सुना फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। आवाजें थीं आशा भोसले किशोर कुमार की। मजहूर सुल्तानपुरी की रचना को संगीत से संवारा था एसटी वोमन ने। इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न होता है। सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं, तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें। अब समय हो चला है लोक संगीत के कार्यक्रम का। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुनीता धाकड़ के गाए कुछ ब्रज लोकगीत।

सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। ये विचार हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं। समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर सरिता का।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म लज्जा से। आवाजें हैं अलका याग्निक, ऋचा शर्मा, सोनू निगम की, शब्द रचना समीर की, संगीत रचना अनु मलिक की।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आपने सुना फिल्म लज्जा से। आवाजें थी अलका याग्निक, ऋचा शर्मा, सोनू निगम की। शब्द रचना समीर की थी, संगीत रचना अनु मलिक की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, अब समय हो चला है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित निखिल बैनर्जी का राग अहीर भैरव में सितार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बनर्जी का सितार पर बजाया राग अहीर भैरव। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दिन भर की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। समय मिला लीजिए, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कलाकार कार्यक्रम एक ऐसे कलाकार पर केंद्रित है जिसमें संगीत को नई ऊंचाइयां दी, या यूं कहें कि भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे पर जब जब सुरों के इंद्रधनुष ने अपने 7 रंगों की चमक बिखेरी, तब तब एक ऐसा नाम गूंजा है जिसने धड़कनों को संगीत में ढाल दिया। सुर लय और ताल के अनोखे शिल्पकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर, जी हां, जिन्हें दुनिया केवल लक्ष्मीकांत के नाम से जानती है, एक ऐसे कालजयी संगीतकार जिन्होंने भारतीय संगीत के कैनवास पर अपनी प्रतिभा के अमिट रंग बिखेरे हैं। वे केवल धुनों के रचयिता नहीं हैं, बल्कि वे आम इंसान के सुख दुख, प्यार मोहब्बत और विरह मिलन की भावनाओं को अपनी उंगलियों के पोरों से टटोलने वाले एक जादूगर थे। लक्ष्मीकांत की बनाई धुनों ने जहां शास्त्रीय संगीत की संजीदगी थी, वहीं लोक गीतों की माटी की सौंधी खुशबू भी रची बसी थी। लक्ष्मीकांत ने संगीत को महलों और दरबारों की ड्योढ़ी से निकालकर एक आम आदमी की चौखट तक पहुंचाया और अपने साथी प्यारे लाल के साथ मिलकर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल नाम की एक ऐसी अटूट संगीतमय विरासत की नींव रखी जिसकी गूंज आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में जीवित है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी ये महफिल यानी ये कार्यक्रम आज के कलाकार उस महान कलाकार की याद में है जिसने हिंदी सिनेमा को तानपुरा भी दिया और ढोलक की थाप पर थिरकने का एक अलग अंदाज भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुरों के सरताज लक्ष्मीकांत की। इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की एक ऐसी धुन से जिसने अपने समय में

दो रास्ते फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और इसकी खूबसूरत धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जी हाँ, हम इस कार्यक्रम में आज बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत की, लेकिन प्यारेलाल जो उनके साथी थे और संगीतमय जो जोड़ी थी, उस प्यारेलाल के बिना लक्ष्मीकांत का नाम भी अधूरा है। लक्ष्मीकांत का जन्म 3 नवंबर 1937 को एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था और जो बचपन का जीवन रहा काफी अभाव और बहुत ही संघर्षों के बीच रहा। बहुत छोटी उम्र में ही पिता का साया सिर से उठ गया और उस वजह से घर की जो जिम्मेदारी थी उसका बोझ लक्ष्मीकांत के नन्हे कंधों पर आ गया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पास संगीत की दौलत हो उसे दुनिया की कोई भी गरीबी डिगा नहीं सकते। लक्ष्मीकांत को बचपन से ही मैंडोलिन बजाने का शौक था और लक्ष्मीकांत ने उस्ताद हुसैन अली से इस साज को बजाना सीखा। अपनी पारिवारिक आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में शादियों और छोटे उत्सवों में मैंडोलिन बजाना शुरू किया। और लक्ष्मीकांत केवल मैंडोलिन ही नहीं बजाया करते थे, वो सारंगी भी बजा लिया करते थे। जब लक्ष्मीकांत 10 साल के थे तब उन्होंने लता मंगेशकर के कंसर्ट में, जो रेडियो क्लब कोलाबा में हुआ था, उसमें उन्होंने सारंगी बजाई और उनके सारंगी वादन से लता जी इतनी प्रभावित हुई कि संगीत कार्यक्रम के बाद उन्होंने लक्ष्मीकांत से बात की। और जब लक्ष्मीकांत से लता जी की बात हुई, बस यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आ गया और इस मुलाकात के बाद एक और मुलाकात एक ऐसे उदयमान कलाकार से हुई जो वायलिन बजाने में माहिर थे और उनका नाम था प्यारे लाल राम प्रसाद शर्मा, यानी प्यारे लाल। बस यहीं से नाम शुरू हुआ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, यानी दो जिस्म और एक जान। संगीत की दुनिया में अगर ये कहावत किसी पर सटीक बैठती है तो बस वो एक ही नाम है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, यानी LP। दोनों ने बाल कलाकार के रूप में काम करते हुए हाथ मिलाया। शुरुआत में दोनों ने उस दौर के महान संगीतकारों जैसे नौशाद, सचिन देव बर्मन, सी रामचंद्र के सहायक के रूप में काम किया। उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक और अपने गुरु का साथ मिला, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के साथ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनके साथ लंबे समय तक अरेंजर के रूप में काम किया और संगीत की बारीकियों को सीखा और समझा। ये साल 1963 की बात है, एक फिल्म बन रही थी पारस मणि, और पारस मणि फिल्म के संगीत का जो दायित्व था वो किसी तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिला, या यूं कहें कि इस जोड़ी की बतौर स्वतंत्र संगीतकार ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के गीत इतने लोकप्रिय हुए कि रातों रात ये जोड़ी, यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी, स्टार बन गई। आइए सुनते हैं पारसमणि फिल्म का एक बहुत ही सुपरहिट गीत।

श्रोताओं, लता मंगेशकर और कमल बारोट के स्वर में ये गीत जो आपने सुना, इसे हमने फिल्म पारसमणि से लिया था। और जैसा कि हमने बताया, सन 1963 में ये फिल्म आई थी और बतौर स्वतंत्र संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ये पहली फिल्म थी। और इस फिल्म के गीत इतने लोकप्रिय हुए कि कई गीत आज भी अमर हैं। लक्ष्मीकांत के संगीत की सबसे बड़ी खासियत थी कि अगर हम उनके गानों का ध्यान से सुने, एक विश्लेषण करें, तो हम पाते हैं कि उन्होंने जो एक सुधी श्रोता है या फिर एक आम सुनने वाला, संगीत को सुनने वाला, या यूं कहें कि जनता की सही नब्ज का पता करने वाले अगर कोई थे तो वो लक्ष्मीकांत थे। वो जानते थे कि कौन से धुन सीधे श्रोताओं के दिल पर असर करेगी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गानों में ढोलक का जो ठेका होता था, वो आज भी संगीत के छात्रों के लिए एक ककहरे की तरह है। फिल्म सरगम का संगीत हो या फिर उत्सव फिल्म के गीत में ढोलक की थाप पर पैर अपने आप थिरकने लगते थे। और मैंडोलिन का जादू, क्योंकि लक्ष्मीकांत खुद मैंडोलिन के उस्ताद थे, इसलिए उनके कई गानों में मैंडोलिन के बारीक और खूबसूरत टुकड़े यानी पीसेस सुनाई देते हैं। और यही जो कलाकारी थी, जो बारीकियां थी, यही किसी भी गीत को एक अलग ऊंचाई पर ले जाया करती थी। एक इसी ठेके और लय को महसूस करते हुए आइए सुनते हैं बॉबी फिल्म का एक सदाबहार गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने, और संगीतकार तो आप जानते ही हैं, जी हां, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

गीत सुनकर आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि इसमें ढोलक पर किस तरह से ठेके लगाए गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, जो संगीत जोड़ी थी उसमें लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत के संगीत की एक और खासियत थी, जैसा कि हमने आपसे कहा कि पारसमणि की सफलता के बाद सन 1964 में राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म आई थी दोस्ती, और इस फिल्म में कोई बड़ा स्टार तो नहीं था, एक दो दिव्यांग दोस्तों की कहानी थी, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और उनके संगीत ने इस फिल्म को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। मोहम्मद रफी की आवाज में गाए इसके सभी गीत लगभग हिट हुए थे, जिसमें चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे और राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है आज भी हम सबको याद हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें अपने जीवन का सबसे पहला पुरस्कार, यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जीवन का सबसे पहला पुरस्कार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का

पुरस्कार मिला और उन्होंने शंकर जयकिशन जैसी दिग्गज जोड़ियों के दौर में अपनी एक स्वतंत्र और मजबूत पहचान बनाई। लक्ष्मीकांत की प्रतिभा का कोई सानी नहीं था, उन्होंने हर तरह के गानों को संगीतबद्ध किया। शास्त्रीय संगीत के आधार पर बनी फिल्म उत्सव का एक गीत मन क्यों बहका रे बहका आज रात को, और इसके अलावा सत्यम शिवम सुंदरम का एक शीर्षक गीत, यह आपने सुने ही होंगे। इसके अलावा कैबरे और चुलबुले गीत भी उन्होंने संगीतबद्ध किए, जैसे फिल्म कारवा का पिया तू अब तो आजा या फिर इंतकाम का आ जाने जा, ये भी आपने सुने होंगे। अगर हम बात करें देशभक्ति फिल्मों की तो देशभक्ति गीत भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किए और धुनें ऐसी तैयार की कि जब भी कोई देश की बात होती है तो वो गीत अपने आप जुबान पर आ जाता है। जी हां, कर्मा फिल्म का गीत दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। और अगर सूफियाना और कव्वाली कलामों की अगर बात करें तो उन्होंने ऐसे गीतों को सूफियाना अंदाज में अमर कर दिया, जैसे अमर अकबर एंथनी फिल्म की वो कव्वाली पर्दा है पर्दा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किए और आज भी हम उनको हमेशा गुनगुनाते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ये जानती थी कि अभिनेता की ऑन स्क्रीन छवि के अनुसार संगीत को कैसे ढाला जाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राजेश खन्ना के रोमानियत भरे दौर के लिए आन मिलो सजना और दाग जैसी फिल्मों में संगीत दिया, तो दूसरी ओर अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन के दौर के लिए नसीब, कुली और अंधा कानून जैसी फिल्मों में तूफानी और जोशीला संगीत तैयार किया। और यही नहीं, महबूब की मेहंदी, सुहाग और प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्मों के लिए एक रूमानी संगीत भी तैयार किया।

श्रोताओं, 1970 और 1980 के दशक पूरी तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम रहे। उन्होंने अपने संगीत से यह साबित कर दिया कि उनका संगीत कभी पुराना नहीं हो सकता। 25 मई 1998 को लक्ष्मीकांत यानी संगीत का ये जगमगाता सितारा इस फानी दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया। लक्ष्मीकांत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बनाई धुनें, उनकी मेहनत और उनकी कला आज भी रेडियो की तरंगों पर, शादियों के पंडालों में और हमारे ईयरफोन के जरिए हमारी आत्मा में उतरते रहेंगे। लक्ष्मीकांत एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने संगीत को सिर्फ व्यवसाय नहीं अपनी जिंदगी बनाया। उन्होंने सिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों को अपनी साधना से बदला जा सकता है। जब तक दुनिया में सुर और ताल का अस्तित्व रहेगा, जब तक कोई आशिक अपनी महबूबा के लिए गुनगुनाएगा और जब तक ढोलक पर कोई थाप पड़ती रहेगी, तब तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर का नाम इस दुनिया में गूंजता रहेगा।

और आज के कलाकार कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक और किसी महान विभूति की कलामयी दास्तान के साथ। तब तक हमें अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार, और ये कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार लक्ष्मीकांत पर आधारित। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। समसामयिक विषयों पर आधारित इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नदियों के बारे में। आज का हमारा विषय है नदियों का संरक्षण है जरूरी। तो आप थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए कि नदियां क्या हैं, हमारे आसपास अगर कोई नदी बहती है तो आज उसका अस्तित्व कैसा है और हमें उसकी जरूरत

कितनी है, अगर हमें जरूरत है तो अपनी उस जरूरत को पूरी करने के लिए क्या नदी की भी कोई जरूरत है, उसकी भी कोई आवश्यकता है? और अगर नदी की कोई आवश्यकता है, कोई जरूरत है, तो उसे कौन पूरा करेगा? कहीं हम तो नहीं? अगर हम ही नदी की आवश्यकता को पूरा करने वाले हैं, तो फिर थोड़ा सा सोचिए कि हम नदी के लिए, जो हमारे आसपास बहती है, जो हमें जीवन देती है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? सोचिए और आइए सुनते हैं इस गीत को, जो हमें ये बता रहा है कि हमारा जीवन भी एक नदी की तरह है।

श्रोताओं, कल कल करती अविरल बहती नदियां, ये केवल पानी का बहाव नहीं बल्कि इस धरती की धमनियों में दौड़ता हुआ जीवन है। ये जीवन सदियों से सभ्यताओं को जन्मती और पालती आ रही हैं। हमारी नदियां, नदियां हमारी संस्कृति की जननी हैं और हमारे आध्यात्म का शिखर हैं। इस धरती के पर्यावरण का सबसे मजबूत आधार स्तंभ अगर कोई है तो केवल नदियां हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस नदी को हम पूजते हैं, मां कहते हैं, नदी को हम अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, आज आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़ में हमने उसी को यानी नदी को सबसे ज्यादा घायल कर दिया है। हमारी लापरवाही, औद्योगिक कचरे और शहरीकरण के विष ने इन जीवनदायिनी नदियों को दम तोड़ने वाले नालों में तब्दील कर दिया है। आज नदियों का संरक्षण कोई साधारण पर्यावरण का मुद्दा नहीं है बल्कि मानव अस्तित्व को बचाए रखने की सबसे बड़ी और एक अनिवार्य शर्त बन चुका है। अब क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर नदियां बचेंगी तो हमारा जीवन बचेगा, हमारा कल बचेगा, हमारी संस्कृति और हमारा जीवन भी इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह जाएगा अगर नदियां नहीं बचेंगी तो। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि दुनिया की तमाम बड़ी सभ्यताओं ने नदियों की गोद में ही आंखें खोली हैं, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, मिस्र की नील नदी की सभ्यता हो या फिर हमारी गंगा जमनी तहजीब। ये सब नदियों के किनारे ही इंसानों ने खेती करना सीखा, व्यापार बढ़ाया और नदियों के किनारे ही हमने आवास बनाए, बस्तियां बसाई। कहने को तो हमारे देश में नदियों को जो स्थान दिया गया है वो ईश्वर से कम नहीं है। हमने हर नदी को एक पावन नाम दिया, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। और ये केवल नदियां नहीं, ये हमारे सुख दुख की साक्षी हैं। मुंडन से लेकर अंतिम संस्कार तक हमारे जीवन का हर संस्कार इन नदियों के घाटों पर ही पूरा होता है। लेकिन विचार कीजिए कि जो नदी हमारे जीवन के हर मोड़ पर साथ निभाती है, क्या हम उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व निभा पा रहे हैं? अगर नहीं निभा पा रहे हैं तो ऐसे कौन से कारण हैं? आखिर क्या वजह है कि हम नदियों से दूर होते जा रहे हैं? ये जानते हुए भी कि नदियां हमारा जीवन है, अगर ये हमारे साथ रहेंगी तो हमारा कल बचेगा, जैसे हमारा आज है तो हम भविष्य की अगर बात करें तो हमारा भविष्य इन्हीं नदियों पर केंद्रित है, इन्हीं पर आधारित है। अगर ये रहेंगी तो हमारा भविष्य रहेगा, हमारा कल रहेगा।

जी हाँ, हमारे संग संग केवल गंगा की लहरें नहीं, बल्कि जहां भी कोई नदी है उसकी लहरें भी हमारे साथ हैं, हमारे जीवन के साथ हैं। लेकिन इन नदियों के साथ हम कितने हैं, ये कभी हमने विचार किया है? अगर नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि अगर आज नहीं विचार किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। जो नदी हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ है, हमारी भी जिम्मेदारी है उसके प्रति कुछ दायित्वों का निर्वहन करने की। आज हमारी नदियां नालों में तब्दील हो गई हैं और उनका जल इस तरह प्रदूषित हो चुका है कि न तो उसमें स्नान करने की इच्छा होती है, न आचमन करने का जी चाहता है। प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि कई नदियों का पानी अब बिल्कुल भी उपयोग में लाने लायक नहीं है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं हम ही हैं, और हमारे द्वारा जो बिना सोचे समझे विकास किया जा रहा है उसका भी कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव दिखाई देता है। औद्योगिक कचरा, फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला जहरीला रासायनिक दूषित पानी और केमिकल इस तरह के जो बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में बहे जा रहे हैं, ये नदियों को खराब कर रहे हैं, उनके जल को दूषित कर रहे हैं। जहां तक

शहरों के सीवेज की बात है तो बड़े बड़े जो शहर हैं उनके गंदे नाले और उन नालियों में बहता इंसानी मलमूत्र सीधे नदियों में जाकर गिरता है। आज नदियों के घाटों पर पानी की सतह पर जहां देखिए वहां प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और भी बहुत सारे ऐसे सामान जो प्लास्टिक से बने हुए हैं और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो जिनका अपघटन आसानी से नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें, वस्तुएं नदियों के आसपास, नदियों के किनारे हम फेंक देते हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण है नदियों के खराब होने का, उनके जल को दूषित करने का। अंधाधुंध रेत का जो खनन होता है, बालू का खनन होता है और नदियों के तल से जो अवैध रूप से हम रेत निकालते हैं, उसके कारण नदियों का जो एक प्राकृतिक प्रवाह है, जो धारा प्रवाह है नेचुरल, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और वो रुक जाता है और इसी वजह से कई नदियां सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं। हमारी नदियों में रहने वाले जो दुर्लभ मछलियां हैं, कछुए हैं और डॉल्फिन जैसी प्रजातियां हैं, वो आज विलुप्ति के कगार पर हैं। तो बस उसकी वजह यही है कि नदियों का जो पानी है वो जहरीला होता जा रहा है, यानी जो जलीय जीव जंतु हैं उनके लायक भी अब वो पानी नहीं रहा है। दिनों दिन भूजल स्तर नीचे जा रहा है। अब नदियां ही तो आसपास की जमीन को रिचार्ज करती थी, अब जब नदियों में ही पानी नहीं है, नदियां ही सूख रही हैं, तो फिर कुएं, हैंडपंप और जो बोरवेल हैं वो भी तो सूख ही जाएंगे ना। और इसके बाद जो पानी का संकट यानी जल संकट जो पैदा होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। उस संकट से फिर बीमारियां पैदा होंगी, हम लोग प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर होंगे, वही प्रदूषित पानी हमारी फसलों में जाएगा जो हमारे भोजन में, हमारे अन्न में जहर बनकर हमारे शरीर में जाएगा और फिर हमें बीमार करेगा और जो असाध्य या यूं कहें कि लाइलाज जो बीमारियां हैं, जैसे कैंसर आदि, इस तरह की बीमारियां हमें होने लगेंगी। आजकल भी हो रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण प्रदूषण ही है। गलतियां तो हमसे ही हुई हैं तो उन्हें सुधारना भी हमें ही होगा। नदियों के संरक्षण के लिए हमें व्यक्तिगत और सरकारी दोनों स्तरों पर बहुत अच्छे से मन लगाकर सोच बूझ के साथ में अच्छा युद्ध स्तर पर कोई काम करना होगा, तभी हम अपनी संस्कृति यानी जो हमारे जीवन की संस्कृतियां हैं, जो सभ्यता है जो नदियों के किनारे फलीभूत हुई है, उसे हम बचा सकते हैं।

श्रोताओं, आज हम नदियों की बात कर रहे हैं, उनके संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार तो हमें करना ही चाहिए, और आज बहुत ज़्यादा ये आवश्यक भी हो गया है। अगर हम कड़े कानूनों का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी नदियों को बचाते हैं, लेकिन हम कानून का पालन नहीं करते। सरकार कारखानों पर सख्ती करती है और आगे भी करनी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम उन कानूनों का, नियमों का पालन करें जो नदियों को दूषित होने से बचाते हैं और जो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति प्रेरित करते हैं या मजबूर करते हैं। मजबूरी नहीं सही, लेकिन हमें नदियों के संरक्षण के लिए वो सभी काम करने चाहिए जो नदियों के जीवन को, यानी हमारे जीवन को बचा सकते हैं। नदियों के किनारे वृक्षारोपण, नदियों के किनारे पर बड़े पैमाने पर ऐसा होना चाहिए, और पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, पानी के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती हैं। हमें अपनी पूजा पद्धति में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। मूर्तियों का विसर्जन, पूजा सामग्री

और जो प्लास्टिक है उसको नदियों में फेंकने के बजाय उनके लिए अलग से जो बनाए गए विशेष कुंड हैं उनमें ही उनका विसर्जन किया जाए और उन कुंडों का उपयोग किया जाए। अगर हम सोचते हैं कि पर्यावरण को या नदियों को बचाना सिर्फ सरकार या संस्थाओं का काम है तो ऐसा नहीं है। बदलाव हमेशा खुद से ही शुरू होता है। जब भी हम किसी नदी के किनारे पिकनिक मनाने जाएं, घूमने फिरने जाएं, तो ये संकल्प ले लें कि हम वहां एक भी टुकड़ा प्लास्टिक का या कूड़े कचरे का किसी भी तरह का कोई भी सामान वहां नहीं छोड़ेंगे। पानी की बर्बादी को रोकेंगे क्योंकि जो पानी यानी जो जल आज हमारे घर के नल से बह रहा है वो कभी किसी नदी का हिस्सा ही था। नदियां हमारी धरोहर हैं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हैं और जो हमारी आने वाली पीढ़ियों तक इन्हें जिसका तस पहुंचना चाहिए। यदि आज हमने अपनी जीवन वाहिनियों को नहीं बचाया तो आने वाला इतिहास हमें भी

हमारी धरोहर हैं, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हैं और जो हमारी आने वाली पीढ़ियों तक इन्हें जस का तस पहुंचना चाहिए। यदि आज हमने अपनी जीवन वाहिनियों को नहीं बचाया तो आने वाला इतिहास हमें भी कभी माफ नहीं करेगा।

0: जी हाँ, केवल गंगा नहीं, चाहे यमुना हो, सरस्वती हो, नर्मदा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, बेतवा हो, राप्ती हो, कोई भी नदी हो हमारे आसपास अगर बहती है, वो तो हमारे लिए उसका जल अमृत के समान ही है और वही हमारे लिए जीवनदायिनी है। नदियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। आज ही इस पर विचार करना शुरू कर दीजिए और अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिए। मैं शुरुआत खुद से कीजिए। और इसी के साथ आज का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। आज का विषय था नदियों का संरक्षण है जरूरी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।
1: डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं।
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी
1: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति

0: जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
0: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है?
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने इन फूलों के विषय में पढ़ी थी और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी,
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी,
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष हैं सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी,
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी,
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी,
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी,
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम। श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh, yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh, wow. So, here is a child like you who wants to go.

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
5: वीर जोरावर की
6: जय।
5: वीर जोरावर की
6: जय।
5: जय जयरापुर, जय भारत।
6: जय जयरापुर, जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जयरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब

0: और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
1: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
0: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
1: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
2: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
2: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
2: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
2: जी महाराज।
0: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
0: आइए हमारे दोस्त। तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
0: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
0: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
0: जी।
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
0: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
3: जी।
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
6: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
0: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
1: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
6: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
6: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनाम

0: विक्राम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
1: हुजूर आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
0: लेकिन जरा होशियारी से।
1: जो हुकुम सरकार।

0: money.
1: But how? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो.
0: ये क्या है?
1: You are under arrest.
0: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ. आओ सामने.
1: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी. फौजियों,
2: हुजूर,
1: बांधो इस बच्चे को जंजीर से.
2: जी.
3: हाँ. छोड़ो मुझे. हाथ मत लगाओ मुझे. मुझसे हाथ हटाओ. मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से.
1: शाबाश, शाबाश, सालार जंग. मैं खुश हुआ. तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा.
4: हुजूर.
0: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है. एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है. लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है. लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था.
1: फौजियों, ले चलो इसको.
3: छोड़ो मुझे. छोड़ो मुझे.
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए. उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया. उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए. तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े. और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े.
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया. लेकिन वो जितना ही सख्त था, उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था. उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी. वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे.
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी, और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा.
0: अप्पा, ये नहीं हो सकता.
7: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा.
0: ये नामुमकिन है.
7: वाय?
0: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते. हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे.
7: यह
0: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं. हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है.
7: तो नहीं मानोगे. देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें. ये सजा.
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा. हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए. हमने जो किया, हमें उस पर गर्व है. कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है. इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा. हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं.
7: एक्चुअली यू आर अ फूल.
5: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा. बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई.
6: काला पानी की सजा?

0: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
2: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
3: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। दिन भर की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी आगरा। 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गीत नई फिल्मों से। सभी सुनने वालों को विशेष कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। यह है कार्यक्रम का पहला गीत। इसे लिखा है जयदीप साहनी ने, संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी, फिल्म का नाम है अंधाधुंध, गायक कलाकार अमित त्रिवेदी।

आप सुन रहे थे जिंदा दिल फिल्म का गीत। इसे गाया था अमित त्रिवेदी ने, संगीतकार थे अमित त्रिवेदी, गीत के बोल लिखे थे जयदीप साहनी ने। आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल और मोहम्मद असलम की आवाजों में समीर की गीत रचना। संगीतकार है नदीम शमर, फिल्म का नाम है जिंदा दिल।

न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। आप सुन रहे थे जिंदा दिल फिल्म का गीत, श्रेया घोषाल और मोहम्मद असलम का गाया हुआ। गीत समीर का था, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। कार्यक्रम का अगला गीत एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: बजने दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: नए तराने कार्यक्रम का अगला गीत यारियां फिल्म से, तुलसी कुमार की आवाज है, मिथुन के बोल हैं, संगीत प्रीतम का है।

उसे गाया था तुलसी कुमार ने, नगमा निगार थे मिथुन, मौसीकार प्रीतम। आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने और हम आपको सुनवा रहे हैं गीत नई फिल्मों से। न तुम जानो न हम, इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गायक कलाकार हैं कमाल खां और स्नेहा पंत, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है राजेश रोशन का।

न तुम जानो न हम। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, गायक कलाकार थे कमाल खान और स्नेहा पंत। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं अखिल सचदेव और मनशील गुजराल की आवाजों में बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म का ये गाना। गीत और संगीत अखिल सचदेव का है। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया।

0: आप सुन रहे थे अखिल सचदेव और मनीषील गुजराल की आवाजों में। अखिल सचदेव की गीत रचना, संगीत अखिल सचदेव का था, फिल्म का नाम था बद्रीनाथ की दुल्हनिया। कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। और इसके साथ ही नए तरह ने कार्यक्रम समाप्त करने की विशेष कुमार शर्मा को अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, 1 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26

20 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, कुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: and rare earths. Union Home Minister Amit Shah today visited the Sanchu border outpost along the India-Pakistan international border in Rajasthan. He interacted with border security force personnel deployed in the area and lauded their dedication in safeguarding the nation's borders. During the visit, the Home Minister dedicated the Vibrant Villages Program 2 to border regions of the state. Former BJD Rajya Sabha MP Debashish Samantarai has joined the Bharatiya Janata Party BJP. He was inducted into the party in the presence of senior party leaders including BJP General Secretary Arun Singh and Odisha BJP President Manmohan Samal at the party headquarters in New Delhi. Tensions between the United States and Iran have escalated after U.S. forces carried out what Washington described as self-defense strikes in southern Iran, even as top Iranian officials held ceasefire talks in Doha. U.S. Central Command said the strikes targeted missile launch sites and Iranian boats allegedly attempting to lay mines near Bandar Abbas, which hosts Iran's main naval base. Benchmark domestic equity indices were trading with losses in the afternoon session today. The Sensex fell 162 points to 76,327, while the Nifty dipped 19 points to 24,013 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल प्रेसिडेंट हाउस में मुनक़िद नागरिक अलंकरण जलसे में साल 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से दो हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सरफराज किया गया। जाने माने फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनके ताउन के लिए बाद अज़मर्क पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। फिल्म अदाकार की अहलिया और लोकसभा रुक्न हेमा मालिनी ने यह अवार्ड हासिल किया। बजाने वाले डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। पद्म विभूषण गैर मामूली और खुसूसी खिदमत के लिए, पद्म भूषण खुसूसी खिदमत के लिए और पद्मश्री किसी भी शोबे में खुसूसी खिदमत के लिए दिया जाता है। साल 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्डों को मंजूरी दी है। बकिया पद्म अवार्ड फातेहीन को बाद में मुनक़िद होने वाले जलसे के दूसरे मरहले में अवार्ड से नवाजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निगम लखनऊ की 342 अवामी बहबूदी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। 413 करोड़ रुपए के लागत वाले इन प्रोजेक्टों की शुरुआत स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ से मुतालिक पुस्तिमक्का का इजरा भी किया। प्रोग्राम में वजीर आला ने अपने खिताब में कहा कि लखनऊ नगर निगम को सफाई रैंकिंग में मुल्क में तीसरा मकाम मिलना एक बड़ी हुसूलियाबी है। उन्होंने कहा कि हमें अब लखनऊ को अव्वल नंबर पर लाना है। वजीर आला ने कहा नगर निगम के साथ आवाम की जिम्मेदारी है कि वो लखनऊ को साफ और खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करें। वजीर आला ने कहा,
2: मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 17 की 17 नगर निगम की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा बोर्ड बना और उसी का परिणाम है कि नगर निगम ने इन 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए।
1: हुकूमत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की हमवार फराहमी यकीनी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मगरबी एशिया तनाज़ो पर कल नई दिल्ली में मुनक़िद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों को खत लिखकर 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को महफूज, हमवार और कामयाबी के साथ मुनक़िद करने की अपील की है। जनाब प्रधान ने पूरे मुल्क के सभी वज़राए आला, नायब गवर्नरों और हुकूमतों से इस मुतालिक तावुन तलब किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गांव पंचायतों की नई बॉडी तश्कील होने तक या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की मुद्दत के लिए आउटगोइंग गांव प्रधानों को गांव पंचायतों का इंतजामिया मुकर्रर किया है।

0: रियासत की गांव पंचायतों के प्रधानों की मुदतिकार आज खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम के मुताबिक सभी जिला मजिस्ट्रेटों को गांव पंचायतों में आउटगोइंग प्रधानों को इंतजामिया के तौर पर नामजद करने का हक दिया गया है। ये सभी कल से इंतजामिया के तौर पर कामकाज संभालेंगे। इन सभी को सिर्फ मामूल के मुताबिक और रोजाना के कामों को करने की इजाजत होगी और उन्हें कोई भी हिकमत अमली का फैसला करने की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत ने यह भी वाजे किया है कि अगर किसी भी हालत में कोई हिकमत अमली का फैसला जरूरी हो तो जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद ही यह फैसला किया जा सकता है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के लाखों लोग आज सऊदी अरब में हज करेंगे। 5 रोजा हज के पहले दिन कल आजमीन हज मिना के टेंट सिटी में जमा हुए। आजमीन हज आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक शदीद सड़क हादसे में और आस्थाना हलके के किलोमीटर 262 पर दिल्ली से गोरखपुर जा रही मुसाफिरों से भरी एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इस हादसे में 5 अफराद मौके पर ही जाबहक हो गए जबकि एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मकामी इंतजामिया ने फौरन मौके पर पहुंचकर राहत और रसानी का काम शुरू कर दिया। दरियस्ता उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आए सड़क हादसे में जानो माल के हुए नुकसान पर रंज का इजहार किया है। साथ ही मरने वालों के लवाहकीन के तई सब्र की दुआ की है। दरियसना गुजश्ता शब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पेश आए एक हादसे में कैची धाम जा रहे 4 अकीदतमंद जा बहक हो गए और 3 जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से टकरा गई। और कल पूरी रियासत में दिन भर की तेज धूप, शदीद गर्मी और लू के दरमियान रात में अचानक मौसम का मिजाज तब्दील हो गया। रियासत के गोरखपुर और अयोध्या समेत कई दीगर इजला में गुज़िश्ता शब तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को फिलहाल शदीद गर्मी से कुछ राहत दी। अयोध्या और जौनपुर में भी आज सुबह तेज हवाओं और बारिश से मौसम तब्दील होने की खबर है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दोपहर के 1:15 और 30 सेकंड हुए हैं। अब हमारी बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार सभी बहनों और श्रोताओं का कार्यक्रम घर संसार में बहुत बहुत स्वागत है। सोनिका शर्मा का अभिवादन स्वीकार करें। श्रोताओं, एक बार एक जंगल में बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहां आते और उस बगीचे में लगे सुंदर फूलों की तारीफ करते। वहीं एक गुलाब के पौधे पर लगा पत्ता रोज रोज लोगों को आते जाते और फूलों की तारीफ करते देखता। उसे लगता हो सकता है कोई एक दिन उसकी भी तारीफ करे, लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो वो काफ़ी हीन महसूस करने लगा। उसके अंदर कई तरह के विचार आने लगे कि सब लोग गुलाब और दूसरे फूलों की तारीफ करते नहीं थकते, पर कोई मुझको देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का ही नहीं है। कहाँ एक खूबसूरत फूल और कहाँ मैं एक पत्ता। इंतज़ार करते करते वो पत्ता काफ़ी उदास रहने लगा। अब एक दिन उस जंगल में बड़ी ज़ोर की हवा चली और देखते ही देखते उसने एक आंधी का रूप ले लिया। सारे बगीचे के पेड़ पौधे नष्ट होने लगे और देखते ही देखते सभी फूल ज़मीन पर गिरकर निढाल हो गए। अभी इसी बीच वो पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते एक तालाब में जा गिरा। अब उस पत्ते ने देखा कि उससे कुछ ही दूर एक चींटी हवा के झोंकों की वजह से तालाब में आ गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी अनेकों प्रयास करती हुई थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु तय लग रही थी। तभी तालाब में पड़े उस गुलाब के पत्ते ने उस चींटी को आवाज लगाई। अरे चींटी, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए उसने चींटी को अपने ऊपर बिठा लिया। चींटी किनारे पर पहुंचकर बड़ी खुश हुई और बोली, आज आपने मेरी जान बचाकर बड़ा उपकार किया है। सचमुच आप

महान हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये सुनकर वो पत्ता काफी भावुक हो गया और बोला, अरे धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ है, जिससे मैं आज तक अनजान था। आज मैं पहली बार अपने जीवन के मकसद और ताकत को पहचान पाया हूँ। तो श्रोताओं, ये कहानी हमें बताती है, जब समय मुश्किल हो और परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो, तब भी हमें खुद की काबिलियत पर यकीन रखना चाहिए और खुद को दूसरों से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि समय आने पर उस गुलाब के पत्ते के जैसे आपकी प्रतिभा और काबिलियत खुद ब खुद निकल आएगी। तो श्रोताओं, अब आपके पास ऐसे में दो सवाल होते हैं कि हम अपने अंदर की प्रतिभा को कैसे पहचानें, और दूसरा सवाल ये कि हम अपनी प्रतिभा को काबिलियत में कैसे बदलें। तो श्रोताओं, अपनी प्रतिभा को पहचानने का मतलब है कि हमारे अंदर किस काम को अच्छे से करने का हुनर प्राकृतिक तौर पर मौजूद है। वैसे हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास करने की प्रतिभा होती है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, पर अक्सर लोग अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए अगर तुम अपने अंदर की प्रतिभा पहचानना चाहते हो, तो तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। तुम्हें समझना होगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है और तुम उसे बिना थके लगातार कर सकते हो। आखिर वो कौन सा काम है जिसे करने से तुम्हें बेइंतहा खुशी मिलती है। तुम्हें ये समझना होगा कि भले ही मैं 100 काम जानता हूँ, पर ये काम ऐसा है जो मुझे दिल से करना पसंद है। यानी तुम उस काम को 100 बार भी लगातार करोगे और उसी जोश और खुशी के साथ कर सकते हो, तो वो तुम्हारे अंदर की प्रतिभा है। यानी कि ऐसा काम जिसे करने से तुम्हें थकावट के बजाय खुशी हो, बस वही तुम्हारे अंदर की प्रतिभा है। और अब जानते हैं कि हम अपनी प्रतिभा को काबिलियत में कैसे बदलें। असल में दोस्तों, किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर एक प्रतिभावान व्यक्ति मेहनती नहीं है, तो उसकी प्रतिभा का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि मेहनत के बल पर ही अपनी प्रतिभा को काबिलियत में तब्दील करता है। जैसे कोई बहुत अच्छा भागता है या बहुत अच्छा गाता है, तो यहाँ बात आती है उस काम को निखारने की, ताकि वो प्रतिभा उसकी काबिलियत में बदल सके। जैसे महान सचिन तेंदुलकर, जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उनसे बेहतर कोई नहीं खेलता था, यानी उनमें क्रिकेट की प्रतिभा थी। इसके बाद उन्होंने खुद पर विश्वास किया और रोज अभ्यास किया और उसको धीरे धीरे अपनी काबिलियत में बदला। इसी तरह लता मंगेशकर गाती थी और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर खुद को ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया। यानी आपका हुनर आपकी मेहनत के बिना बेकार है। तो अपने जीवन में कभी हताश और परेशान ना हो, अपने हुनर पर भरोसा करें और उसे मेहनत से निखारें और काबिल बने। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम ऐसी ही बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: आइए बहनों, अब सुनेंगे एक खास वार्ता। बच्चों से करें मित्रता का व्यवहार, और वार्ताकार होंगी नीलम यादव।
1: बच्चों से करें मित्रता का व्यवहार। यह सुनकर अपने बच्चों के प्रति हमारे मन में बहुत सकारात्मकता आती है, परंतु हर सोच के दो पहलू होते हैं। लेकिन जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ इन दोनों पहलुओं पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। मित्र बनाना आसान है, किंतु अभिभावक बनना बहुत मुश्किल। दोस्तों व मित्रों की अपनी सीमाएं होती हैं, किंतु माता पिता व बच्चों के मध्य जो सीमाएं होती हैं, वह ममता, प्यार व सम्मान पर टिकी होती हैं। जहां अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार की बात आती है, वहां मित्रता की परिभाषा में थोड़े से सुधार की आवश्यकता हो जाती है। बच्चों से मित्रवत व्यवहार का ठिकान उन्हें दिए जाने वाले ममता, प्यार, देखभाल व समय पर होना चाहिए, ना कि बौद्धिक रूप से परिपक्व दो मित्रों के बीच होने वाला व्यवहार। तेजी से बदलते दौर में बच्चे अपनी खेल कूद की दुनिया को भूलकर, अपने बचपन को पीछे छोड़ समय से पहले ही परिपक्व होते जा रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण के इस वैज्ञानिक युग ने बच्चों की मानसिकता पर बहुत गहरा असर डाला है। भाग दौड़ भरी जिंदगी एवं एकल परिवार ने भी बच्चों के बचपन की परिभाषा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मोबाइल, साइबर कैफे, इंटरनेट इत्यादि ने बच्चों के खेल के मैदान की जगह ले ली है। बच्चे अक्सर मोबाइल, इंटरनेट पर

0: उलझे हुए से देखे जाते हैं, जहाँ से उचित अनुचित हर प्रकार की सूचनाएं एकत्र होती हैं, जिसके कारण यह कहना मुश्किल हो जाता है कि बच्चों का स्वस्थ मानसिक विकास ही हो रहा है। दूसरी तरफ माता-पिता के पास समय का अभाव, ऐसे में बच्चों के पथ विमुख होने के आसार बढ़ जाते हैं। एक तरफ जहां बच्चों में जानने की लालसा विकसित होती है, वहीं दूसरी तरफ माता-पिता के पास अपने बच्चों को सुनने व समझने के लिए समय का अभाव होना या फिर माता-पिता अपने बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना जरूरी नहीं समझते। उन्हें लगता है कि बच्चों को हर बात जानना जरूरी नहीं। इस प्रकार आज के बदलते हुए परिवेश के जिज्ञासु बच्चे बातों को जानने के लिए दूसरे तरीके अपनाने में देर नहीं लगाते। इसलिए अब परिवर्तन के इस दौर में बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना अति आवश्यक हो गया है। माता पिता व बच्चों के मध्य मित्रता की एक स्वस्थ सीमा रेखा निर्धारित होनी चाहिए। अपने बच्चों की बातों को एक मित्र व अभिभावक की भांति प्यार, ममता व सम्मान के साथ सुने व सही तरीके से उनकी जिज्ञासा को शांत करें। बढ़ते बच्चों में उनकी उम्र के साथ साथ दुनिया की हर बात जानने की इच्छा होती है, इसलिए उन्हें गलत ठहरा कर अपने से दूर ना करें, बल्कि उन्हें सुने, समझें व समझाएं। अपने व बच्चों के बीच मित्रता का एक ऐसा मार्ग बनाएं जिसके सहारे बच्चा आप तक आने में कभी झिझक महसूस ना करे। उसे किसी और माध्यम से बातों को जानने की आवश्यकता ना पड़े। माता-पिता होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि बच्चों की मनःस्थिति को समझने के लिए उनके प्रति एक स्वस्थ मित्रता का व्यवहार हो, ताकि बच्चा अपनी परेशानी या मन की बात आसानी से आपको बता सके एवं रिश्तों की गरिमा को भी बनाए रखे। अतः परिवर्तन के इस दौर में बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करना अति आवश्यक हो गया है। नैतिक मूल्यों का दृढ़ता से पालन करते हुए बच्चों की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएं। आइए बोझिल होते रिश्ते के भार को एक आदर्श मित्रता के रूप में कायम करें, ताकि बच्चों का स्वस्थ एवं संतुलित विकास हो सके। आज के बदलते परिवेश के अनुसार अपने बच्चों को समझें व प्यार व ममता से उन्हें संवारें, ना कि उनके कोमल मन में उठने वाले सवालों को एक दायरे में संकुचित कर उनसे दूरियां बना लें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि एक उत्कृष्ट जीवन प्रणाली मनुष्य की विवेक बुद्धि से तभी निर्मित होनी संभव है जब लोग पारस्परिक सहयोग से मनोनुकूल कार्य करें। अतः सहयोग हर रिश्ते के पनपने के लिए पहली आवश्यकता होती है।
1: कार्यक्रम में अभी हमारी बहनों ने सुनी वार्ता बच्चों से करें मित्रता का व्यवहार, और वार्ताकार थी नीलम यादव। श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा, अभी आपसे मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

बहनों, अब बात करेंगे कार्यक्रम में आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। इसका जन्म लगभग 5000 साल पहले भारत में हुआ था। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति व्यक्ति के मन, शरीर, आत्मा और पर्यावरण के बीच संतुलन पर आधारित है। इसमें आहार, मालिश और जड़ी बूटियों से उपचार किया जाता है। आज के आधुनिक युग में बड़ी संख्या में लोग इसका

इस्तेमाल कर रहे हैं। आयुर्वेद को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। आयुर्वेद बताता है कि हर व्यक्ति का शरीर 3 दोषों से बना होता है, वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद आपके 3 दोषों में संतुलन बनाने में मदद करता है। जब दोष संतुलन से बाहर हो जाता है तो वो बीमारी बन जाता है। वात दोष यानी वायु का प्रभाव। वात में आपके लचीलेपन, मांसपेशियों और जोड़ों की गति, ब्लड फ्लो, आपके सांस लेने के तरीके को निर्धारित किया जाता है। पित्त के प्रभाव आपके पाचन, हार्मोन्स और चयापचय को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आयुर्वेद में जब आपका पित्त असंतुलित होता है तो आप जल्दी क्रोधित और उत्तेजित हो सकते हैं, जिससे सूजन, चकत्ते और एक्जिमा या यहाँ तक कि मुहासे भी हो सकते हैं। कफ वो तत्व होता है जो आपके सेल्स से लेकर आपकी मांसपेशियों और हड्डियों तक को सब कुछ एक साथ रखता है। कफ के असंतुलित होने पर थकान, वजन का बढ़ना और सूजन भी हो सकती है। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली पारंपरिक भारतीय चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई प्राचीन उपचार परंपराओं के पीछे बहुत सारा इतिहास और ज्ञान है। आयुर्वेद का लक्ष्य सिर्फ रोगों के लक्षणों का इलाज करना नहीं है, बल्कि रोग के मूल कारण को दूर करना है। इसमें व्यक्ति की जीवन शैली, खान पान और मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। ये व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने पर जोर देता है। आज के वक्त में जब जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ऐसे में आयुर्वेद का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसमें स्वस्थ जीवन शैली, आहार और उपचार विधियों के प्राकृतिक और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती हैं। आयुर्वेद की प्राचीन विधियों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर नई विधियां और प्रणालियां विकसित की जा रही हैं, जो आधुनिक समय में बीमारियों के उपचार में ज्यादा कारगर होंगी। इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे ये सुंदर सा गीत।

0: कार्यक्रम में अभी हमने अपने श्रोताओं को आयुर्वेद के बारे में कुछ जरूरी बातें बताई थी, और अब बात करेंगे अपने ही परिवार के बारे में कि किस तरह से हम परिवार के साथ रहकर अपने स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। श्रोताओं, असल में एक खुशहाल परिवार और सेहतमंद जिंदगी का क्या राज हो सकता है? जवाब सरल है, प्यार और रिश्ते। मतलब ना पैसा, ना रुतबा, ना ताकत, ना सफलता, सबसे बड़ी कुंजी है प्यार, परिवार और दोस्त। इसे सोशल फिटनेस भी कह सकते हैं। यानी रिश्तों को भी संभालना और समय देना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को फिट रखना। आजकल सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम अकेलापन महसूस करते हैं। अच्छे रिश्ते हमें तनाव से बचाते हैं और सेहत को मजबूत बनाते हैं। तो ये जरूरी है कि हफ्ते में कुछ घंटे हम अपनों के साथ बिताएं। रिश्ते हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में सिर्फ काम नहीं बल्कि प्यार और साथ भी जरूरी है। जब हम अपनों से बात करते हैं तो दिल हल्का होता है और जीवन आसान लगता है। अपनों के साथ समय बिताने से डिप्रेशन और एंजाइटी कोसों दूर रहते हैं। आमने सामने बात करने से भावनात्मक सहारा मिलता है जो जीवन की मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। और दोस्तों, रिसर्च भी बताती है कि अच्छे रिश्ते मानसिक बीमारियों को रोकते हैं। बच्चे भी परिवार में रहकर ही सीखते हैं कि कैसे प्रेम और देखभाल की जाती है, कैसे प्रेम किया जाता है। यह उन्हें भविष्य में अच्छे माता पिता बनने की तैयारी करवाता है। आखिर परिवार का साथ ही हमें चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। तो श्रोताओं, परिवार के साथ समय जरूर बिताएं, कॉल करें, और अब तो वीडियो कॉल का जमाना है। अगर आप अपनों से दूर हैं तो वीडियो कॉल पर जरूर बात करें, और सबसे जरूरी, घर के कामों में एक दूसरे की मदद जरूर करें, दोस्तों की मदद जरूर करें। इन छोटी छोटी चीजों से विश्वास बढ़ता है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। साथ मिलकर जन्मदिन मनाएं, त्योहार मनाएं, छोटे सेलिब्रेशन खुशियों को दुगना कर देते हैं। तो श्रोताओं, परिवार और दोस्त से जुड़े रहना एक छोटी लेकिन बहुत अच्छी आदत है जिसके बड़े फायदे हैं। ये हमें स्वस्थ, मजबूत और सुखी बनाते हैं। परिवार और रिश्ते ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं। इन्हें संभालें और जिंदगी को खूबसूरत बनाएं।
1: DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा, इस सेवा पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 10 चैनल, वो भी अपने टेलीविजन पर बिल्कुल फ्री। जी हाँ, DTH पर आप सुन सकते हैं विविध भारती के रंगारंग कार्यक्रम बिल्कुल मुफ्त, कहीं भी कभी भी। आकाशवाणी की DTH सेवा का लाभ उठाएं। DTH यानी डायरेक्ट टू होम।
0: बहनों, अगर आज के जमाने की बात की जाए तो आजकल चीज़ों का ओवर कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गया है। यानी कि हम बहुत उपभोगी हो गए हैं। जैसे किसी को एक कपड़े की ज़रूरत है तो वो चार कपड़े

और खरीद लेता है। ठीक इसी तरह प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ा है। साथ ही खान पान और कपड़ों के अलावा कई तरह के उपकरण भी हैं जिनकी ज़रूरत ना होने पर भी उन्हें सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। अब ऐसे कूड़े के पहाड़ खड़े हो रहे हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए इन सभी सामानों का रीयूज़ करना और रीसाइक्लिंग करना ज़रूरी हो गया है। अगर आप बाज़ार से कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप उसे किसी तरह रीयूज़ यानी दोबारा इस्तेमाल कर सकें, साथ ही बाद में रिसाइकिल भी जिसे किया जा सकता हो। जैसे अखबार मैगजीन पेपर बैग्स को रिसाइकिल कर सकते हैं, कार्डबोर्ड को भी रिसाइकिल कर सकते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी कंटेनर इन सबको भी रिसाइकिल किया जा सकता है, कांच का सामान और सिरेमिक से बनी हुई चीज़ों को आप खुद रिसाइकिल कर सकते हैं, कपड़ों को रिसाइकिल किया जा सकता है। साथ ही कोशिश करें कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही खरीदें। गाड़ी के टायर बैटरी को रिसाइकिल करने के लिए आप दे सकते हैं और फलों और सब्जियों के छिलकों से आप खाद बना सकते हैं। तो श्रोताओं इसी के साथ हम कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार, प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। दिन भर की भागदौड़ में कहीं भी रहिए, आकाशवाणी आगरा के संग रहिए और सुनते रहिए मनपसंद मनोरंजक खूबसूरत कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं ए हरिहरन। आइए सुनते हैं कुछ गजलें।

जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए। कलाम मुशीर झुंझुनवी का, आवाज़ ए हरिहरन की।

जब वो मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए। ये कलाम आप समाप्त कर रहे थे। कलाम था मुशीर झुंझुनवी का और गायक कलाकार थे ए हरिहरन। आइए सुनते हैं एक और गजल, कलाकार एक बार फिर ए हरिहरन। दाग दुनिया ने दिए, जख्म जमाने से मिले, हमको ये तोहफे तुम्हें दोस्त बनाने से मिले। कलाम कैफ भोपाली का।

ए हरिहरन की आवाज में आप सुन रहे थे गजल। गजलकार थे कैफ भोपाली। मतला था, दाग दुनिया ने दिए, जख्म जमाने से मिले, हमको ये तोहफे तुम्हें दोस्त बनाने से मिले। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आपको याद दिला दें, अपराह्न 2:45 पर आप सुनेंगे गीत पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। आज मंगलवार है, अपराह्न 3

0: markets. India and the US signed key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sancho border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
2: Will become even more important to the world.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के

0: क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि

0: पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड

0: ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान की गायी ठुमरी, राग मिश्र तिलक कामुद पर आधारित ठुमरी के बोल हैं, सैयारे बैरन रतियां कैसे आऊं।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान की गायी ठुमरी राग मिश्र तिलक कामोद पर। कार्यक्रम के अंत में आइए।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अजय पोहनकर का गाया राग मिश्र पहाड़ी। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, भूले बिसरे गीत। आवाज मुकेश की, फिल्म का नाम है देवर।

मुकेश की आवाज में देवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी रोशन ने। बैजू बावरा फिल्म का एक गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। नौशाद के संगीत निर्देशन में बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने।

लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी की गीत रचना आप सुन रहे थे नौशाद की धुन पर। फिल्म का नाम था बैजू बावरा। साथी फिल्म का एक गीत आइए सुनते हैं, तर्ज एक बार फिर नौशाद की है, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, आवाजें हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की।

0: साथी फिल्म का गीत आपने सुना। आवाजें थी मुकेश और सुमन कल्याणपुर की। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। इसके साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा, इस सेवा पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 10 चैनल, वो भी अपने टेलीविजन सेट पर बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, DTH पर आप सुन सकते हैं विविध भारती के रंगारंग कार्यक्रम बिल्कुल मुफ्त, कहीं भी कभी भी। आकाशवाणी की DTH सेवा का लाभ उठाएं। DTH यानी डायरेक्ट टू होम।
1: आकाशवाणी का ये DTH यानी डायरेक्ट टू होम

0: सेवा है।
1: डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सेवा जो रहे आपके साथ हर दम हर क्षण 24 घंटे दे आपको देश विदेश की जानकारी। आज की
0: करवाए भरपूर मनोरंजन भी।
2: दूरियां नजदीकियां बन गई।
1: देश के चाहे किसी भी कोने में रहे आप, न सताएगी आपको अपने राज्य की याद। डीटीएच के माध्यम से अपने राज्य के प्रादेशिक समाचार, गीत संगीत अपने ही राज्य के आकाशवाणी केंद्र से सीधे सुन पाएंगे आप।
3: बिलपुर में तो
0: कब कहा कैसे जुड़ पाएंगे अपने राज्य के आकाशवाणी केंद्र से आप, इसके लिए सुनते रहिए कार्यक्रमों की रूपरेखा समय समय पर।
4: 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, प्रादेशिक समाचार 7 बजे आकाशवाणी भोपाल से और 8:30 बजे आकाशवाणी पटना से।
1: वाह, एक ही स्थान पर बैठे बैठे आनंद, हर राज्य का हर भाषा का कमाल है केवल डीटीएच सेवा का।

0: अपने राज्य की याद डीटीएच के माध्यम से अपने राज्य के प्रादेशिक समाचार गीत संगीत अपने ही राज्य के आकाशवाणी केंद्र से सीधे सुन पाएंगे आप।
1: बिलपुर में तो
2: कब कहां कैसे जुड़ पाएंगे अपने राज्य के आकाशवाणी केंद्र से आप, इसके लिए सुनते रहिए कार्यक्रमों की रूपरेखा समय समय पर।
3: 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, प्रादेशिक समाचार 7 बजे आकाशवाणी भोपाल से और 8:30 बजे आकाशवाणी पटना से।
0: वाह, एक ही स्थान पर बैठे बैठे आनंद, हर राज्य का हर भाषा का कमाल है केवल डीटीएच सेवा का।
4: आकाशवाणी आगरा से अब प्रस्तुत है हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। संवादक हैं विशेषता शर्मा, प्रस्तुतकर्ता अनिंद्र सिंह। ये कार्यक्रम पूर्व में दिनांक 30 मार्च 2026 को प्रसारित किया जा चुका है। आइए सुनते हैं इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: हेलो मेरी पसंद। रात के ठीक 10 बज रहे हैं। घड़ी ने अभी अभी अपनी सुइयों से इत्मीनान से कहा है कि बस अब सब थाम लो। दिन भर की भाग दौड़, शोरगुल और जिम्मेदारियाँ, इन सब के बाद अब सब एक मीठी हल्की सी करवट लेकर सोने की तैयारी में हैं। जरा महसूस कीजिए बाहर की दुनिया को, जो अब खामोश है। खिड़की के पार चांद की एक नर्म सी किरण झांक रही होगी और हवा में कोई अनजानी सी सौंधी सी खुशबू तैर रही होगी। ये रात अपने साथ एक अजीब सी आत्मीयता लेकर आती है। एक ऐसा वक्त जब हम सबसे ज्यादा अपने करीब होते हैं, तभी तो हमने इस समय को चुना है आपके लिए, आपके एहसासों के लिए, आपके प्रेम के लिए। और इस खूबसूरत रात्रि को हमने नाम दिया है हेलो मेरी पसंद। हेलो
1: हेलो
0: हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रही हैं आप?
1: जी मैं शालिनी बोल रही हूँ।
0: शालिनी जी कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक, आप बताइए।
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शालिनी जी क्या करती हैं?
1: मैं जॉब करती हूँ टीचिंग।
0: बच्चों को पढ़ाना आपको पसंद है?
1: हाँ।
0: किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: मैं प्ले स्कूल में पढ़ाती हूँ।
0: छोटे छोटे बच्चों को?
1: जी
0: तो बड़ा मजा आता होगा छोटे छोटे बच्चों के साथ।
1: जी बहुत ज्यादा।
0: बड़ी अच्छी बात है। आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम आप सुनती हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: मैं सुनती हूँ घर संसार, रेडियो डॉक्टर।
0: तो आज किस गीत की फरमाइश आप करना चाहती हैं?
1: जी मैं ये सुनना चाहती हूँ, तो मेरे मूवी का सॉन्ग है तू ही हकीकत ख्वाब तू।
0: बिल्कुल शालिनी जी, हम आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: थैंक यू।

0: हमारे अगले कॉलर लाइन पे हैं, आइए देखते हैं कौन से हैं।
1: हेलो,
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं विनोद कुमार जैन न्यू आगरे से बोल रहा हूँ।
0: विनोद कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ।
0: क्या करते हैं?
1: मेरा बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है।
0: अच्छा,
1: इन्वर्टर वगैरह सोलर वगैरह लगाते हैं हम लोग।
0: अच्छा, तो आप हमारे जो श्रोता हैं उनको बताएंगे जरा कि अगर वो लोग सोलर पैनल्स लगवाते हैं तो किस तरह से लगवाए जाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है उसका?
1: ऐसा है, ये सोलर वगैरह छत पे लगाए जाते हैं। पहले टाइम में इन्वर्टर चलते थे
0: जी,
1: इन्वर्टर तो नीचे रखे जाते थे और एक बैटरी रखी जाती थी जिससे लाइट जाने पर जो बैटरी का काम करता था तो लाइट आपकी आ जाती थी। और सोलर है जो सोलर छत पे रखे जाते हैं, प्लेट्स होती है इसमें, जैसे ही धूप पड़ती है तो उससे वो बिजली बनाते हैं और बिजली बना के वो आपके नीचे घर में अप्लाई करते हैं। अगर आप चाहें तो बिना बैटरी के भी सोलर चला सकते हैं और अगर आप चाहें तो बैटरी में भर के भी उसको कर सकते हैं, तो आपका जो बिजली का बिल है बिल्कुल निल हो जाएगा आपका।
0: जी, यानी जो सौर ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तित कर देते हैं।
1: हाँ, परिवर्तित कर सकते हैं अपन।
0: तो इसके लिए अगर कोई लगवाना चाहता है तो सरकार की ओर से भी कोई सहायता दी जाती है?
1: हाँ हाँ, इसके लिए सरकार की ओर से काफी सहायता मिलती है, 40% or 50% सहायता मिल रही है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें आशा है हमें सुनने वाले जो भी श्रोता हैं वो इस बात से जरूर लाभान्वित होंगे। तो आज कौन से गीत की फरमाइश आप रख रहे हैं?
1: मेरे को लग जा गले सुनना है।
0: आपके साथ साथ इस गीत को और कौन सुनेगा?
1: ये मेरी वाइफ भी है।
0: नाम बता दीजिए।
1: रेनू जैन।
0: ठीक है, आप अपनी पत्नी के साथ सुनिए ये गीत।
1: जी जी

0: हमारे अगले श्रोता लाइन पर हैं।
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका परिचय?
1: मैं सतीश यादव, हरिद्वार उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
0: सतीश यादव जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया। मैं
0: क्या काम करते हैं आप?
1: जी मेरा और एक्चुअली एक छोटा सा मोटा काम है स्पाइस का, मसाले का।
0: किस तरह के मसाले, कौन कौन से मसाले ऐसे हैं जिनका काम करते हैं?
1: जैसे हमारा हल्दी, धनिया मिर्च हो गया, गरम मसाला, और भी कई सारे जो लोगों को कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी स्वादिष्ट वगैरह बना पाए।
0: तो मसाले का प्रोडक्शन भी करते हैं आप, मसाले बनाते हैं?
1: प्रोडक्शन है मैम।
0: अच्छा, तो मिलावट तो नहीं करते हैं?
1: नहीं नहीं नहीं
0: पूरे प्योर शुद्ध मसाले आप बेचते हैं?
1: जी जी जी मकसद ही कंपनी का ये है कि शुद्ध लोगों तक पहुंचे। आजकल का जो टाइम है वो मिलावट का है
0: जी,
1: तो हमारी कंपनी का मकसद है कि वो ज्यादा से ज्यादा शुद्ध लोगों को स्पाइस प्रोवाइड करवाए।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। सतीश जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति मसाले खरीदता है और अगर उसको शुद्धता और अशुद्धता की जाँच करनी है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे घर में ही पता लगाया जा सके कि मसाले शुद्ध हैं या नहीं, या उनमें कोई मिलावट है? कोई तरीका अगर आप बताना चाहें।
1: जी जैसे हल्दी है, हल्दी का पता लग सकता है। उसको गिलास में डालिए, फिर डाल के उसको आप घोल लीजिए। जो उसके अंदर जो सबसे नीचे जो कण रह जाएंगे, ऊपर पानी में तो घुलेंगे नहीं वो
0: जी।
1: अगर मिलावट का कुछ होगा तो या तो ऊपर आ जाएंगे सबसे वो, या फिर नीचे की तरफ चले जाएंगे। अगर वो नीचे की तरफ गए हैं तो उसको आप दोबारा से फोड़ कर उसको देख सकते हैं किसी तरह से कि ये हल्दी का है या कुछ और है, तो उसको पता चल जाता है वहाँ पे।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई है। हमें आशा है हमें सुनने वाले सभी श्रोता इसको अपना कर देखेंगे और जांच करने में सफल रहेंगे। आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: साजन मूवी का है
0: जी।
1: जीए तो जीए कहते हैं।
0: बिल्कुल सतीश जी, हम आपकी फरमाइश पर ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। लीजिए सुनिए।
1: थैंक यू।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: हमारे अगले श्रोता लाइन पर हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी, धन्यवाद
0: आपका परिचय?
1: जी। ग्राम लालाल से बात कर रहा हूँ, नरेंद्र।
0: नरेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आप अपना बताइए।
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या करते हैं नरेंद्र जी?
1: जी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, कपड़े की कंपनी है, और खेती बाड़ी चल रही है, गेहूँ की कटाई चल रही है।
0: मंडी में अगर गेहूं बेचा जाए तो इस वक्त क्या भाव है गेहूं का?
1: 2,500 के लगभग चल रहा है, 2,400-2,500।
0: अच्छा, नरेंद्र जी, आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: जी सुनते हैं, कई सालों से सुन रहे हैं, 98 से सुन रहे हैं।
0: कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनना पसंद करते हैं?
1: जी, मजदूर मंडल है, युवाणी है, फिल्म संगीत का जितने भी कार्यक्रम आते हैं सब सुनते हैं, ग्राम में लोग भी।
0: तो हमारे यहाँ से जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उसमें हम बहुत सारी कोशिश करते हैं कि जानकारी आप लोगों तक पहुँचा सके, तो क्या उन जानकारियों का कोई लाभ आपको मिलता है?
1: जी बिल्कुल, क्यों नहीं, उनका लाभ मिलता है। और युवाणी में तो जब मैं पढ़ाई करता था तो उसको सुनते थे हम, और जैसे ग्रामीण अंचल के होता है वो सुनते हैं उसको, तो उसको भी अच्छा लगता है।
0: जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: जी वो सुना दे, बड़े घर की बेटी का, तेरी पायल बजी जहाँ, वो वाला।
0: बिल्कुल नरेंद्र जी, हम आपकी फरमाइश पर आपको गीत जरूर सुनवाएंगे। आपके साथ साथ और कौन सुनेगा इस गीत को?
1: हमारे सभी घर वाले सुनेंगे, और
0: नाम
1: दोस्त
0: बता
1: हैं
0: दीजिए।
1: हमारे, मेरे भाई हैं दसमोहन जी, और शिवम, गोपाल, प्रशांत, और मेरे एक मित्र है सौरभ लवानिया।
0: ठीक है नरेंद्र जी, आपकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।
1: ठीक, ओके, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैम, मैं प्रदीप यादव बोल रहा हूँ।
0: प्रदीप जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मध्य प्रदेश में गुना जिला है, वहाँ से बोल रहा हूँ मैम।
0: कैसे हैं आप?
1: बेहतर
0: क्या करते हैं?
1: मैडम, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्लिनिक है
0: जी
1: और अभी क्लिनिक पर ही हूँ, पर आपका ये जो समय है, ये क्लिनिक समय में ही मुझे चक्कर के आपके प्रोग्राम की काफी तारीफ सुनी थी,
0: जी
1: तो इस वजह से मैंने की फरमाइश के लिहाज से मैंने की एक बार प्रयास किया। पहला प्रयास है मेरा।
0: तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में, क्योंकि आपका पहला प्रयास है और हमें आशा है कि
1: जी
0: आगे भी आप ये प्रयास करते रहेंगे बार बार।
1: जी
0: तो आज कौन सी गीत की फरमाइश है आपकी?
1: मेरी फरमाइश है, मेरी जंग का सुना दीजिए।
0: मेरी जंग फिल्म का कौन सा गीत? गीत के बोल बता दीजिए।
1: जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है।
0: ठीक है, आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं हम आपको ये गीत।

0: हमारे अगले श्रोता लाइन पर हैं, आइए देखते हैं कौन से हैं। हेलो
1: हेलो। थैंक
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: यू मैडम।
0: कौन बोल रही हैं?
1: मैडम डॉक्टर योगेश यादव बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं योगेश जी आप?
1: बढ़िया मैडम।
0: किस चीज के डॉक्टर हैं आप?
1: मैं प्रोफेसर हूँ,
0: क्या सब्जेक्ट है आपका?
1: एनिमल साइंस।
0: कहाँ पढ़ाते हैं आप?
1: मैं चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कानपुर है वहाँ पर।
0: तो जैसे अगर किसी को प्रोफेसर बनना हो, हमें सुनने वाले बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिनके ऐसे सपने होंगे कि वो प्रोफेसर बने, तो क्या रहता है तरीका?
1: यूजी, यूजी के बाद पीजी, पीजी के बाद नेट का एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है, या फिर डॉक्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आयोग से वैकेंसीज निकलती हैं और रिटेन एग्जाम होता है, उसका इंटरव्यू होता है, उस मेरिट के आधार पर अगर आपका चयन हो जाता है तो आप प्रोफेसर।
0: जी, तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: मैं सुनना चाहता हूँ चूड़ी नहीं है मेरा दिल है।
0: किशोर कुमार की आवाज में है ये गीत,
1: थैंक
0: लीजिए सुनिए।
1: यू।

साथियों, वक्त की रेत उंगलियों से फिसलती जा रही है, तो अब वक्त हो चला है यादों की पोटली बांधने का और सपनों की वादियों में उतर जाने का। मैं विशेषता शर्मा अब आपसे अनुमति चाहती हूँ इस वादे के साथ कि अगले सोमवार रात 10 बजे फिर हमारी मुलाकात इसी मोड़ पर होगी। अपनी रूह में इन सुरीले लम्हों को संजो कर

0: रखिएगा, अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि।
1: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का रेडियो फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया गया। आपसे बात कर रही थी विशेषता शर्मा, प्रस्तुतकर्ता थे अनिंद्र सिंह। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। दोपहर के 3:30 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 आपकी सेवा में इन्हीं मीटरों पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, प्रतीक्षा कीजिए।

0: विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।

वैष्णवी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका

0: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
0: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
2: Will become even more important to the world.
1: क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे के प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चर्चा क्वाड सहयोग के चार मुख्य स्तंभों पर केंद्रित रही, जिनमें समुद्री और सीमा पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियां, मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद रोधी प्रयास क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि बल ने न केवल सीमा की दृढ़ता से रक्षा की बल्कि सीमावर्ती जिलों के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। उन्होंने सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलकर एक चार स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया। श्री शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ग्रिड की मदद से सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकेगा। इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चूंकि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है, उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की उन पहलों का जिक्र किया है जिनसे देश भर के लोगों को विशेष रूप से नारी शक्ति, युवाओं और किसानों को लाभ पहुंचा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। संध्या के 5:05 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनते हैं हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। साथ ही आपको जानकारी देंगे कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। श्रोताओं, हमारी इसी सभा में आज रात 9:30 पर कार्यक्रम मनी टॉक मंथन, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 10 बजे कार्यक्रम खेल दर्पण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। 10:30 पर आप सुनेंगे।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार रहेंगे आचार्य गोस्वामी। अब से थोड़ी देर बाद 5:10 पर आप सुनेंगे भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युववाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 आज के आकर्षण रहेंगे। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन विषय पर चर्चा होगी। आज का सवाल होगा अतुलनीय भारत क्रम रहेगा। हेल्थ प्लस क्रम में आप सुनेंगे हीट वेव में क्या करें। इसी कार्यक्रम में वार्ता प्रसारित की जाएगी हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लक्षण पैरोकार काजी। वार्ताकार होंगी गुंजन तिवारी। ग्रामीणों कार्यक्रम में शाम 6:00 सुनिएगा चर्चा स्वस्थ मिट्टी संपन्न किसान। धान की उन्नतशील खेती कैसे करें विषय पर भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। सौरभ उपाध्याय से विषय पर भेंट करेंगे लोकेंद्र पाठक। इसी कार्यक्रम में क्रम रहेगा नई खोज, मौसम की जानकारी, मंडी भाव और लोकगीत। श्रमिक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा मजदूर मंडल शाम 6:30 पर। इसमें स्वस्थ श्रमिक समृद्ध राष्ट्र विषय पर चर्चा होगी। पुनीता चतुर्वेदी की वार्ता प्रसारित की जाएगी सौर ऊर्जा का प्रभाव। आज का प्रश्न होगा ज्ञान सागर सेहत टिप्स और फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आप सुनेंगे डॉ शेफाली चतुर्वेदी की वार्ता। काजी नजरुल इस्लाम अद्भुत व्यक्तित्व। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश संध्या 7:31 पर। देशभक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे भारत भारती रात्रि 8:00 और चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा 8:30 पर। ये थे हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम।

और अब एक नजर कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:25 पर चिंतन में गुरु नानक देव के विचार प्रसारित किए जाएंगे। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे हर रोज की तरह 6:35 पर और 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में संजय वर्मा की वार्ता होगी कृषि क्षेत्रों के लिए बैक ऊर्जा का उपयोग। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 7:10 पर सुनेगा डॉक्टर यादराम शर्मा की वार्ता जल चिकित्सा। दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम होगा आसपास कल प्रातः 7:31 पर। 9:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे रविन्द्र कुमार शर्मा के गाए लोकगीत। पूर्वाहन 11:30 पर आप सुनेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कल का विषय रहेगा बकरीद के उपलक्ष्य में ईद उल अजहा। बहनों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा घर संसार दिन में 1:15 पर। इसमें सकारात्मक सोच से बढ़ाएं रचनात्मकता विषय पर चर्चा होगी। मेरी माटी मेरा देश क्रम में आप सुनेंगे नेहरू स्मृति दिवस विषय पर जानकारी। मुझे कुछ कहना है क्रम में यूपीआई धोखाधड़ी से बचें जानकारी दी जाएगी। कहानी होगी बूढ़ा बरगद, कहानीकार रहेंगी अर्चना मित्तल। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 5:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या।

लो मैं आ गया। इस फिल्म का भजन आपने सुना उदित नारायण नूतन और साथियों के सुर में। देव कोहली की इस भक्ति रचना को संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने। अब हम आपको सुनवा रहे हैं गीत गाता चल फिल्म से चौपाइयां, जो पारंपरिक हैं। आवाजें हैं जसपाल सिंह और साथियों की, संगीत रविन्द्र जैन का है।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। आइए सुनते हैं दशहरा फिल्म का ये भक्ति गीत, जिसे लिखा है प्रदीप ने, आवाज भी प्रदीप की ही है और संगीत एन दत्ता का।

आप सुन रहे थे दशहरा फिल्म का ये भक्ति गीत, जिसे गाया और लिखा था प्रदीप ने, संगीत एंटट्टा का था। आइए अब सुनते हैं ये आरती।

पूरब और पश्चिम, इस फिल्म की ये पारंपरिक आरती आपने सुनी महेंद्र कपूर, ब्रिजभूषण, श्याम चित्तर और साथियों के स्वर में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। इस आरती से पहले आपने दशहरा, गीत गाता चल और लो में आ गया फिल्मों के भक्ति गीत सुने। आवाजें थी उदित नारायण, नूतन, जसपाल सिंह और प्रदीप की। संगीत आनंद राज आनंद, रविंद्र जैन और एन दत्ता के थी। इसके साथ ही भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:30 हुए हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

दिनों बाद हमारी बातें हो रही हैं। बहुत दिनों बाद मैं आप सभी से बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और इस तपतपाती गर्मी में खुद को पचा रहे हैं। अब जानते हैं दोस्तों, गर्मी कितनी बढ़ गई है, तो इस गर्मी के मौसम में अपना ध्यान रखें, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। अब आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपनी सेहत को लेकर कितने फिक्रमंद रहते हैं, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सेहत सिर्फ हमारे खान पान या कसरत तक ही सीमित नहीं है। हमारी सेहत जुड़ी है हमारे आसपास के जानवरों, जंगलों और पूरे पर्यावरण से। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के क्रांतिकारी विजन पर, नेशनल वन हेल्थ मिशन। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको देना होगा मेरे इस सवाल का जवाब। तो दोस्तों बताइए, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? आप सोचिए सवाल का जवाब और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको जवाब देंगे कार्यक्रम के अंत में। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि नेशनल वन हेल्थ मिशन है क्या। हम सभी ने जाना था, COVID-19 के दौर ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया। हमने देखा कि कैसे एक बीमारी दुनिया भर में फैल सकती है। और वन हेल्थ मिशन का मतलब बहुत सरल है, ये इस विचार पर आधारित है कि इंसानों की सेहत, जानवरों की सेहत और पर्यावरण की सेहत, ये तीनों एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। अगर इनमें से एक भी बीमार होता है तो पूरा सिस्टम टकमगा जाता है। नेशनल वन हेल्थ मिशन का उद्देश्य इसी तालमेल को सुधारना है, ताकि हम आने वाले किसी भी महामारी का सामना मजबूती से कर सकें। अब जानते हैं दोस्तों, ये मिशन युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये मिशन सिर्फ अस्पतालों के लिए नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए है। इस मिशन के जरिए आपके लिए करियर के नए रास्ते खुल सकते हैं। ये मिशन टेक्नोलॉजी और साइंस का संगम है। अगर आप बायोलॉजी, डेटा साइंस या AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रुचि रखते हैं, तो ये क्षेत्र आपके लिए गेम चेंजर है। सरकार अब AI इनेबल्ड टूल्स बना रही है, ताकि बीमारियों का पहले ही पता लगाया जा सके। क्या पता आने वाला कोई बड़ा हेल्थ टेक स्टार्टअप आपकी ही सोच से शुरू हो। हम आज जिस क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, उससे बीमारियां नए नए इलाकों में फैल रही हैं। इस मिशन को समझने का मतलब है प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना। एक जागरूक युवा के तौर पर आप समझ पाएंगे कि कैसे पशुओं का टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन और जंगलों के संरक्षण का सीधा असर शहर में बैठे आपकी सेहत पर पड़ता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक इस्तेमाल से अब बीमारियां ठीक होने में वक्त लग रहा है, जिसे हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR भी कहते हैं। ये मिशन इस समस्या पर लगाम लगाने के लिए भी काम कर रहा है। आप अगली बार डॉक्टर की सलाह लेने के बिना एंटीबायोटिक लेने से पहले कम से कम दो बार जरूर सोचिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपने वन हेल्थ मिशन में अपना मान लो योगदान दे दिया। अब बात करते हैं मिशन के मुख्य स्तंभों के बारे में। ये मिशन 13 से ज़्यादा सरकारी मंत्रालयों को एक साथ लाता है। ये सिर्फ डॉक्टरों का काम नहीं, इसमें वेटनरी डॉक्टर्स, पर्यावरण वैज्ञानिक और डेटा एनालिस्ट भी शामिल हैं। इसका मुख्य फोकस ये है कि प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन से हटकर रोकथाम यानी प्रिवेंशन की ओर बढ़ना। बीमारी के आने का इंतजार मत करो, उसे आने से पहले ही रोक दो। तो साथियों, नेशनल वन हेल्थ मिशन हमें यही सिखाता है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं। हम एक ऐसी कड़ी में बंधे हैं जहां स्वस्थ पशु और स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ भारत की नींव रखते हैं। आप सभी युवाओं से मैं कहना चाहूंगी कि इस मिशन के बारे में पढ़ें, सरकार की वन हेल्थ डैशबोर्ड वेबसाइट देखें और इनोवेशन की दिशा में सोचें। हमारा देश आज एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जहां हम बीमारी के इलाज से कहीं आगे बीमारी की खात्मे की क्षमता रखते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें, लेकिन अपने आसपास के पर्यावरण को भी अपना ही हिस्सा मानें। अब दोस्तों, वैसे बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हो गया है आपको संगीत की दुनिया में ले जाने का और ये प्यारा सा गीत सुनवाने का।

दोस्तों, जैसे आज हमने वन हेल्थ मिशन की बात की थी, जहां सब कुछ आपस में जुड़ा है, ठीक वैसे ही महान कवि काजी नसरुल इस्लाम ने भी बरसों पहले अपनी रचनाओं से यही कहा था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सौहार्द का पाठ पढ़ाया और

0: सिखाया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी सोच का मूल आधार भी यही था, समग्रता, यानी हम सब एक हैं। आइए उनके बारे में और जानते हैं एक वार्ता के द्वारा, जिसका विषय है हिंदू मुस्लिम सौहार्द के विलक्षण पैरोकार काजी नसरुल इस्लाम, और वार्ताकार हैं गुंजन तिवारी।
1: दोस्तों, जब भी समाज में नफरत और विभाजन की बातें होती हैं, तब कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व याद आते हैं जिन्होंने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। काजी नजरुल इस्लाम उन्हीं महान लोगों में से एक थे। वे केवल कवि नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आवाज थे जिसने धर्म, जाति और संप्रदाय की दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया। काजी नजरुल इस्लाम का जन्म 24 मई 1899 को भारत के आसनसोल क्षेत्र के चुरुलिया गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता, लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा और साहित्य के प्रति अपना प्रेम कभी कम नहीं होने दिया। बचपन से ही उन्हें कविता, संगीत और नाटक में रुचि थी। वे मस्जिद में अजान भी देते थे और लोक नाटकों में भाग भी लेते थे। यही कारण था कि उनके भीतर बचपन से ही धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान विकसित हो गया। दोस्तों, यह वही समय था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। समाज कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा था। धार्मिक भेदभाव और सामाजिक असमानता लोगों को बांट रही थी। ऐसे कठिन दौर में नजरुल इस्लाम ने अपनी लेखनी को समाज सुधार का माध्यम बनाया। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध कविता विद्रोही ने उन्हें एक नई पहचान दी, लेकिन उनका विद्रोह किसी धर्म के खिलाफ नहीं था। उनका विद्रोह अन्याय, अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ था। उन्होंने अपनी कविताओं में गरीबों, मजदूरों और शोषित लोगों की आवाज उठाई। वे चाहते थे कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि कोई धर्म दूसरे धर्म से बड़ा है। उनके शब्दों में एक आग थी, लेकिन वह आग नफरत की नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष की थी। काजी नजरुल इस्लाम की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के प्रति समान सम्मान। उन्होंने अपनी रचनाओं में इस्लामी सूफी परंपरा के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं और भारतीय संस्कृति का सुंदर वर्णन किया। उनकी कविताओं में कभी भगवान शिव का उल्लेख मिलता है तो कभी अल्लाह और पैगंबर की महिमा। वे मानते थे कि सभी धर्म इंसान को प्रेम और सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, इसलिए धर्म के नाम पर लड़ाई करना सबसे बड़ी भूल है। वे कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग समुदाय नहीं बल्कि एक ही देश की दो आंखें हैं। अगर दोनों साथ रहेंगे तभी समाज और राष्ट्र मजबूत बनेगा। दोस्तों, नजरुल इस्लाम की रचनाओं में अद्भुत सांस्कृतिक समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने इस्लामी गीत भी लिखे और भक्ति गीत भी। उन्होंने गजलें भी लिखी और श्यामा संगीत भी रचा। उनकी रचनाओं को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे भारत की विविध संस्कृति एक साथ बोल रही हो। उनके गीतों में मंदिर की घंटियों की ध्वनि भी सुनाई देती है और मस्जिद की अजान की पुकार भी। यही कारण है कि उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। काजी नजरुल इस्लाम केवल साहित्यकार नहीं थे बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनकी कविताओं और लेखों ने अंग्रेजी शासन की नींव को चुनौती दी। उन्होंने अपने लेखों में अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध किया। उनकी पत्रिका धूमकेतु अंग्रेज सरकार को इतनी खतरनाक लगी कि उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल में भी उनका साहस कम नहीं हुआ। उन्होंने वहां भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भूख हड़ताल की और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी यह बहादुरी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। काजी नजरुल इस्लाम का सबसे बड़ा संदेश यही था कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। वे कहते थे कि

0: अगर व्यक्ति के दिल में प्रेम और दया नहीं है तो उसका धर्म केवल दिखावा है। आज दुनिया में धर्म के नाम पर कई तरह के विवाद देखने को मिलते हैं। लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। ऐसे समय में नजरुल इस्लाम के विचार हमें सही रास्ता दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत सबको जोड़ती है। दोस्तों, आज का समाज तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन कई बार हम मानवीय मूल्यों को भूल जाते हैं। सोशल मीडिया और राजनीति के कारण कई बार समाज में नफरत फैलती है। ऐसे समय में काजी नजरुल इस्लाम का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि धर्म का उद्देश्य प्रेम फैलाना है। समाज की ताकत उनकी एकता में होती है। विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम उनके विचारों को अपनाएं तो समाज में शांति और भाईचारा मजबूत हो सकता है। आज के युवाओं के लिए काजी नजरुल इस्लाम का जीवन बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज को जोड़ने के लिए किया। आज युवाओं को भी चाहिए कि वे नफरत से दूर रहें और प्रेम, सम्मान और समानता की भावना को अपनाएं। देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी धर्मों और समुदायों के लोग मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, काजी नजरुल इस्लाम केवल एक कवि नहीं थे बल्कि मानवता की आवाज थे। उन्होंने अपने जीवन और साहित्य के माध्यम से यह सिद्ध किया कि प्रेम और भाईचारा ही सबसे बड़ी ताकत है। आज हमें जरूरत है कि हम उनके विचारों को केवल पढ़े ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी उतारें। हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां धर्म के नाम पर नफरत नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान हो।
1: दोस्तों, अभी हमने जाना काजी नजरुल इस्लाम साहब ने हमें जो सामंजस्य और सौहार्द का रास्ता दिखाया, वही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और उनकी कविताएं हमें नफरत की दीवारें गिराकर एक होने की ताकत देती हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम एक और जरूरी बात करने वाले हैं जो ना केवल हमारे आपसी रिश्तों को बल्कि हमारी सेहत को भी झुलसा रही है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हीट वेव यानी लू की। हम जानते हैं इन दिनों पारा भाई आसमान छू रहा है। जब सूरज आग बरसाता है तो सिर्फ इंसान ही नहीं, हमारे बेजुबान जानवर और पर्यावरण का भी बहुत बुरा हाल होता है। वन हेल्थ मिशन हमें यही सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर पर्यावरण तपेगा तो हम सब तड़पेंगे। अब जानते हैं कि भीषण गर्मी में खुद को और अपने आसपास के माहौल को कैसे सुरक्षित रखें। दोस्तों, सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें। सबसे जरूरी है हाइड्रेशन। जब बाहर का तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार हो तो प्यास लगने का इंतजार ना करें। नींबू पानी, नारियल पानी या फिर बस सादा पानी अपने पास हमेशा रखें। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। अगर बहुत जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें। हल्के सूती कपड़े पहने जो पसीने को सोख सके। हल्का भोजन लें, मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये कुदरत के वो तोहफे हैं जो हमें अंदर से ठंडा रखते हैं। अगर आपको चक्कर आए, बहुत तेज सरदर्द हो या घबराहट महसूस हो तो तुरंत किसी ठंडी जगह पर बैठें और ठंडे पानी की पट्टियां रखें। ये दोस्तों हीट स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं, इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब जब हम वन हेल्थ की बात कर रहे थे तो इस गर्मी में क्या आपने कभी उन मूख पशुओं के बारे में सोचा है जो कंक्रीट की सड़कों पर घूम रहे हैं? अपनी बालकनी या छत पर एक कटोरे में पानी भरकर जरूर रखें, चिड़ियों के लिए दाना डालें। वन हेल्थ का मतलब यही है कि हम एक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अगर पक्षी स्वस्थ होंगे तो हमारा पर्यावरण बेहतर रहेगा। अक्सर हम गर्मी से बचने के लिए सिर्फ अपनी एसी या ठंडे कमरों की फिक्र करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा वातावरण छोड़ रहे हैं जहां उन्हें इतनी भीषण गर्मी का सामना न करना पड़े? ये हीट वेव सिर्फ एक मौसम का बदलाव नहीं है, ये एक चेतावनी है। पर्यावरण विज्ञान कहता है कि अगर हम हरियाली बचाएंगे, जल संरक्षण करेंगे और जानवरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे तो प्रकृति का ये असंतुलन धीरे धीरे कम होगा। आज का युवा

0: यानी आप और मैं, अगर छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे कि अपने घर के बाहर पौधा लगाना या पानी की बर्बादी रोकना, तो हम बड़े बदलाव की नींव रख सकते हैं। याद रखिए, हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम प्रकृति का ही विस्तार हैं। हम जब पेड़ लगाते हैं या किसी प्यासे जीव के लिए पानी रखते हैं, तो हम असल में अपनी ही आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित हेल्थ कवच तैयार कर रहे होते हैं। ये वन हेल्थ मिशन सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में बसना चाहिए। तो अगली बार आप जब गर्मी से परेशान हो, तो सिर्फ शिकायत ना करें, बल्कि ये भी सोचें कि आज हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो कल के पर्यावरण को थोड़ा और ठंडा और खुशनुमा बना दे। दोस्तों, ये चिलचिलाती गर्मी भी बीत जाएगी, लेकिन इस दौरान हमें संयम और इंसानियत दोनों बनाए रखने की जरूरत है। जैसे काजी नसरुल इस्लाम ने हमें समानता और प्यार का संदेश दिया, वैसे ही इस तपती गर्मी में एक दूसरे के प्रति हमें संवेदना दिखानी चाहिए। कोई प्यासा ना रहे, कोई बेहाल ना रहे। अब दोस्तों, आगे हम सैर करेंगे एक खास जगह की और बताएंगे कुछ मुख्य बातें, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, आज हम इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक ऐसी जगह की सैर पर चलेंगे जहां की दीवारों में सदियों के राज दफन हैं। अगर आप भारत के पूर्वी तट पर मौजूद ओडिशा के कटक शहर में कदम रखेंगे, तो महानदी के तट पर एक विशाल किला आपका स्वागत करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक बाराबती किला की। बाराबती किला का नाम सुनते ही इतिहास की कई परतें खुल जाती हैं। महानदी के तट पर स्थित ये किला न केवल एक सैन्यगढ़ था, बल्कि एक कलिंग साम्राज्य की शक्ति और वैभव का अटूट प्रतीक रहा है। क्या आप जानते हैं, इसका निर्माण मुख्य रूप से 14वीं शताब्दी के दौरान गंग वंश के राजा अनंग भीमदेव के शासनकाल में हुआ था। इस किले ने समय के कितने थपेड़े झेले हैं, गंगा राजाओं से लेकर गजपति शासकों तक और फिर मुगलों और अंग्रेजों के काल तक। ये किला सदियों तक सत्ता का केंद्र रहा। आज भले ही सिर्फ यहाँ कुछ पत्थरों के अवशेष और विशाल नींव ही बाकी बची है, लेकिन अगर आप वहां शांति से खड़े हों, तो आपको उन योद्धाओं की आहट आज भी महसूस होगी जिन्होंने इस किले की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, बाराबती किला हमें ये सिखाता है कि समय के साथ जो कुछ भी हमने खोया है, उसमें भी एक सीख छिपी है। हम अपनी संस्कृति को भूल कर आधुनिकता की अंधी दौड़ में तो भाग रहे हैं, लेकिन हमारी जड़ें आज भी इन्हीं मिट्टी की दीवारों में सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले, इस ऐतिहासिक गौरव को अपनी आंखों से देखने जरूर जाइएगा। महानदी की लहरें और बाराबती किला की खामोश दीवारें आपको वह सुनाएंगी जो शायद किसी किताब में ना लिखा हो। इतिहास के प्रति अपना नजरिया बदलिए, क्योंकि जो अपनी विरासत का सम्मान करता है, वही सही मायने में आगे बढ़ता है। अब दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंत में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

दोस्तों, गीत के बाद वक्त हो गया है आपसे पूछे गए सवाल का जवाब देने का। तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। दोस्तों, आपसे बात करते करते वक्त खैर पता ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है अभी तो बात शुरू हुई थी। लेकिन दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे और जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गर्मी में अपने आप को बचा कर रखिए। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। अब कार्यक्रम सुनेंगे ग्राम्य लोक।

नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम ग्रामीणलोक में। और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी रेडियो सखी शोभना। किसान साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ खेती का नहीं बल्कि हमारे जीवन, हमारी आने वाली पीढ़ियों और हमारे गांव की खुशहाली का विषय है। जी हाँ किसान साथियों, आज हम और आप बात करेंगे स्वस्थ मिट्टी और संपन्न किसान की। तो साथियों, जैसे इंसान का शरीर होता है, वो स्वस्थ रहेगा तभी वह मजबूत और ताकतवर रहेगा। वैसे ही अगर हमारे खेत की मिट्टी स्वस्थ रहेगी तभी हमारी फसल अच्छी होगी और किसान खुशहाल रहेगा। मिट्टी सिर्फ धूल या फिर

मजबूत और ताकतवर रहेगा। वैसे ही अगर हमारे खेत की मिट्टी स्वस्थ रहेगी तभी हमारी फसल अच्छी होगी और किसान खुशहाल रहेगा। मिट्टी सिर्फ धूल या फिर जमीन नहीं है, बल्कि यही हमारी खेती की असली ताकत भी है। अगर मिट्टी की सेहत अच्छी होगी तो कम मेहनत और कम खर्च में भी अच्छी पैदावार मिलेगी। लेकिन अगर मिट्टी कमजोर हो गई तो खेती का खर्च तो बढ़ता जाएगा, साथ ही जो उत्पादन है ना आपका वो भी घटता जाएगा। किसान भाइयों, पहले के समय में हमारे बुजुर्ग खेती को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि धरती माता की सेवा मानते थे। वे खेतों में गोबर की खाद डालते थे, फसल बदल बदल कर बोते थे और मिट्टी को आराम भी देते थे। इसी कारण पहले मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती थी, पानी भी ज्यादा समय तक टिकता था और फसलें भी अच्छी होती थीं। लेकिन आज के समय में जल्दी ज्यादा उत्पादन लेने की होड़ में हम रासायनिक खाद और दवाइयों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। शुरुआत में फायदा जरूर दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की जो ताकत है ना वो कम होने लगती है। आज हालत ये है कि खाद और दवाई का खर्च बढ़ता जा रहा है, लेकिन पैदावार पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है। कई किसान भाई कहते भी हैं, पहले कम खाद में ज्यादा फसल हो जाती थी, अब ज्यादा खर्च के बाद भी उतना फायदा नहीं होता है। तो साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी मिट्टी की बिगड़ती हुई सेहत। जब मिट्टी बीमार होने लगती है तो खेत की मिट्टी सख्त हो जाती है, पानी जल्दी सूख जाता है, फसल पीली पड़ने लगती है, ज्यादा खाद डालनी पड़ती है और उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगता है। अब सवाल उठता है कि मिट्टी को स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना होगा। गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद मिट्टी को ताकत देती है। इनसे मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व बने रहते हैं और जमीन मुलायम रहती है। दूसरी जरूरी बात कि मिट्टी की जांच है। जैसे इंसान बीमारी में डॉक्टर से जांच करवाता है, वैसे ही खेत की मिट्टी की जांच भी बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कम है और कितनी खाद की जरूरत है। इससे किसान का खर्च भी बचता है और फसल भी अच्छी होती है। किसान साथियों, हमें फसल चक्र भी अपनाना चाहिए। हर बार एक ही फसल बोने से मिट्टी कमजोर हो जाती है। अगर गेहूं के बाद आप दालें या फिर दूसरी फसल बोई जाए तो मिट्टी को फिर से ताकत मिलती है। पानी का सही उपयोग भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरूरत से ज्यादा पानी खेत और मिट्टी दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए सही समय पर और जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। किसान साथियों, मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे जीव और केंचुए हमारे खेत के सच्चे साथी होते हैं। वे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, लेकिन ज्यादा रासायनिक दवाइयों के कारण ये खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमें सोच समझकर दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा, फसल की गुणवत्ता अच्छी होगी और किसान आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। और सबसे जरूरी बात, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उपजाऊ और अच्छी जमीन मिलेगी। अंत में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि मिट्टी का रखो ध्यान, तभी खुशहाल होगा किसान और स्वस्थ मिट्टी की यही पहचान कम खर्च और बढ़िया उत्पादन। तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई मिट्टी की सेहत की, पर आज का जो समय है ना उसमें खेती में नई तकनीक और उन्नत तरीकों को अपनाना भी बहुत जरूरी हो गया है, ताकि कम लागत में ज्यादा और अच्छी पैदावार हासिल की जा सके। इन्हीं जरूरी जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए अब समय है हमारी भेंटवार्ता का, जिसका विषय है धान की उन्नतशील खेती कैसे करें। इस विशेष बातचीत में वार्ताकार हैं सौरभ उपाध्याय और उनसे बातचीत करेंगे लोकेंद्र पाठक। तो आइए किसान साथियों, सुनते हैं ये महत्वपूर्ण भेंट वार्ता और जानते हैं कि धान की खेती में कौन कौन से उन्नत तरीके अपनाकर हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी की सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं।

0: साथियों, आज हमारे साथ केरावली कस्बे के भवनपुरा गांव के प्रगतिशील किसान सौरभ उपाध्याय जी हैं। सौरभ जी ने कृषि में मृदा विज्ञान से परास्नातक किया है। सौरभ जी, हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है। राम राम।
1: राम राम जी।
0: सौरभ जी, इस वर्ष मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार मानसून लगभग 7-8 दिन पहले ही आने की संभावना है, तो हमारे किसान साथियों ने आने वाले मौसम में फसल लेने के लिए क्या-क्या तैयारी शुरू कर दी है?
1: जी, जैसा कि मौसम विभाग की जानकारी प्राप्त हुई है, किसानों को मानसून जल्दी आ रहा है। किसान अपने खेती में जुट चुका है, अपने खरपतवार का नियंत्रण कर रहा है जो कि अभी इस समय उगा हुआ है उसके खेत में। साथ ही उन्नतशील किस्में अपनी फसल में, जैसे बाजरा है तो बाजरे की उन्नतशील किस्में तलाश रहा है, या धान है तो धान के लिए उन्नतशील किस्में, मक्का है तो मक्का के लिए उन्नतशील किस्में तलाशना उसने शुरू कर दिया है। साथ ही बहुत सारी कृंतन क्रिया जैसे जुताई, निराई, गुड़ाई, ये सारी चीजों में किसान पूरी तरीके से लग गया है।
0: आगरा और आगरा के आसपास के कुछ क्षेत्रों में धान की भी खेती की जाती है। धान की उन्नत खेती करने के लिए हमें क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए?
1: आगरा के क्षेत्र फतेहपुर सीकरी जहाँ से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ही बड़ा रकबा है जहाँ पर धान की फसल करी जा रही है। धान की उन्नतशील फसल के लिए आपको सबसे पहले उन्नतशील बीज चयनित करना चाहिए अपनी खेत दशा के अनुसार। यानी खेत दशा आपकी नीचे है, मतलब आमतौर पर आपके खेत थोड़ा सा धरासल से थोड़ी नीचाई में है, तो उस हिसाब से ज्यादा जल मांग वाली किस्म आपको चयन करनी चाहिए। आपकी ऊंचाई पे जहाँ पानी का भराव कम रह पाता है तो कम जल मांग वाली फसल आपको वहां पर लेनी है। ऐसी स्थिति में आपको उन्नतशील बीज अपने खेत दशा के अनुसार लेनी है। जैसे उन्नतशील किस्मों में बताना चाहूंगा, सुगंधी 5 है, सुगंधी 2 है, 1509 है, 1692 है, 1718 है, पूसा बासमती है, ये सारी किस्में हैं धान की उन्नतशील किस्में हैं।
0: सौरभ जी, धान की उन्नत खेती करने के लिए हमें धान की स्वस्थ पौध, जिसे नर्सरी भी कहते हैं, उसे तैयार करना होता है, तो हमें नर्सरी किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है कि नर्सरी पर बहुत ही कम किसान साथी हैं जो ये जानते हैं कि नर्सरी को वास्तविक तौर पर कैसे किया जाता है। आमतौर पर किसान क्या करते हैं, खेत में गए, मेड़बंदी करी, उल्टा सीधा धान फेंका और घर आ गए, फिर उसको अगले दिन पानी देते हैं, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से बर्निंग इफेक्ट आता है। मैं ये सलाह करता हूँ कि आप किसान तौर पर, किसान नजरिए से देखा जाए तो 4 फीट चौड़ाई और 10-12 फीट लंबाई की क्यारियां काटनी चाहिए, जिससे आप उसमें खरपतवार का नियंत्रण अच्छे से कर पाएंगे। आप स्प्रे करना चाहें स्प्रे, और जब आप उखाड़ेंगे जब नर्सरी को, तो आप उखाड़ने में भी आपको आसानी रहेगी, दूसरा खाद देने में, पानी देने में, ये सारी चीजों में भी आपको बड़ी आसानी रहेगी। तो नर्सरी बनाने के लिए आप बेड की जो चौड़ाई लंबाई है उसको सुनिश्चित करें 4 फीट ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई और 10 से 12 फीट उसकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई, और एक समान, उसके अंदर किसी भी प्रकार का ढलान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही सपाट होनी चाहिए, जिससे धान का बीज एक समान जमे। जब पानी दें तो आपका जहाँ ढलान होता है वहाँ पानी ज़्यादा हो जाता है, फिर अधिक तापमान से जब पानी गर्म होता है उससे क्या होता है कि आपका जो अंकुरित बीज है वो भी मारा जाता है।
0: जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है, यानी जब हमारी पौध तैयार हो जाती है, तो क्या धान की खेती करने के लिए खेत को कुछ विशेष रूप से तैयार करना होता है? यानी खेत की तैयारी भी हमें करनी चाहिए?
1: जी बिल्कुल, खेत की तैयारी में देखा जाता है आमतौर पर कि ज्यादातर किसान 1-2 जुताई करके उसकी रुपाई करवा देते हैं। इसके लिए आप कम से कम 3 से 4 जुताई मिट्टी पलट हल्की, जिसे हम लोग हैरो बोलते हैं, उसकी करवानी चाहिए। उसके बाद आपको 2 जुताई या 3 जुताई कल्टीवेटर की, और फिर एक समान पाटा लगा के उसमें किसी भी प्रकार का ढलान नहीं होना चाहिए। धान के लिए सुनिश्चित करें कि ढलान आपके खेत में नहीं पाया जाना चाहिए। आजकल तो कंप्यूटर वाले माजे भी चल चुके हैं, तो किसान भी उसका भी इस्तेमाल करके फायदा ले सकते हैं।
0: सौरभ जी, धान की खेती में रोपाई का बहुत महत्व है, तो रोपाई हमें किस प्रकार से करनी चाहिए?
1: आज अगर रोपाई करनी है तो 1 दिन पूर्व आप उसमें लगभग पानी थोड़ी देर के लिए खड़ा करें, ज्यादा पानी खड़ा नहीं करें। ज्यादा पानी खड़ा करेंगे तो आपको कीच की शिकायत बनेगी। आप क्या करें, आपको रोपाई करनी है तो रोपाई के 8 से 10 घंटे पहले आप उसमें पानी भरें, बहुत ज्यादा पानी नहीं भरें, और फिर उसके बाद आप दोबारा उसमें पानी भरें, जिससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी नीचे तक नम होगी, ज्यादा गहराई तक नम होगी, और उसके अंदर रुपाई करने में भी आपको आसानी रहेगी। रुपाई के लिए एक चीज का किसान साथी विशेष ध्यान दें कि पौधे से पौधे की दूरी एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी एक समान सुनिश्चित करें।
0: बहुत अच्छी बात बताई रोपाई से जुड़ी हुई आपने। इसी के साथ अब हमें आप ये बताइए कि जब रोपाई हो जाती है तो हमें खाद

0: प्रबंधन करना चाहिए? खाद प्रबंधन हमें किस प्रकार से करना चाहिए?
1: जी, खाद्य प्रबंधन से पूर्व एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ना चाहूँगा, जब आप रुपाई से भी पूर्व जब आपने खेत की तैयारी करी थी उस समय में आपको मिट्टी जांच करनी चाहिए। मिट्टी जांच से आपको आपके खेत के अंदर कितनी मात्रा में खाद डालना है वहाँ पे आपको रिपोर्ट मिलेगी। जो रिपोर्ट आपको वहाँ पे प्राप्त हुई है उस हिसाब से आप अपना जो है रसायन का
0: बिल्कुल सही बात
1: नियंत्रण
0: बताई
1: करें।
0: सौरभ जी आपने। और वैसे भी मिट्टी की जांच तो सरकार के द्वारा निशुल्क करवाई जाती है
1: जी
0: और सभी प्रगतिशील किसान आज के समय में मिट्टी की जांच करवा रहे हैं।
1: हाँ, और एक बात, किसान साथी क्या समझते हैं कि एक साल मैंने क्या किया, इस वर्ष मैंने 1 कट्टे का खाद लगाया है, अगले वर्ष उसको दोहरी कर देते हैं, यानी 2 बार दुगना लगाते हैं उसको। 1 कट्टे को किसान सोचता है अगले साल 2 कट्टे से दुगनी पैदा आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान नियंत्रित रूप से ही अपना खाद का इस्तेमाल करें, जितने भी परामर्श है वही इस्तेमाल करें। आप रिजल्ट हमारे आमतौर पर किसान, मैं भी एक किसान हूँ, किसानों के बीच बैठता हूँ तो आमतौर पर पता चलता है कि मैंने तो फलानी चीज दी थी, बातें में धान कारो पर वो, आमतौर पर किसान ऐसे ही बोलता है। तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट का मतलब धान का काला पड़ना नहीं है, रिजल्ट का मतलब उसका अनुवांशिक विकास है।
0: यानी मिट्टी की जांच के अनुसार खाद प्रबंधन करें, अति खाद या अल्प खाद ना करें कि आप खाद बहुत आवज हो गई या खाद हमने कम
1: कम
0: डाल
1: डाली
0: दी, ऐसा ना हो। सौरभ जी इसी के साथ आप ये समझाइए कि हमारी जो फसल बढ़ रही है तो बढ़ती हुई फसल में कीट लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, उनका प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए? और जैविक और रासायनिक दोनों ही तरीके हमें समझाइए कि दोनों में क्या अंतर है, क्या हम जैविक में प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से हम रासायनिक खाद का प्रयोग करें।
1: जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारा नुकसान यानी कीट प्रबंधन के लिए, रोग प्रबंधन के लिए जब हमारा नुकसान आर्थिक हानि की स्तर तक पहुंच जाए, तब उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ती है रासायनिक खादों की। आर्थिक क्षति स्तर से यदि हमारा स्तर कम है तब आप जैविक दवाओं के ऊपर जा सकते हैं। जैविक दवाओं में जैसे कीट के लिए आप ब्यूवेरिया वेशियाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन कीटनाशी है, मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। रोग प्रबंधन के लिए जैविक में बात करें तो ट्राइकोडर्मा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सीडोमोनास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी दवाओं का आप जैविक में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने घर पे बनाई हुई जैसे आग से बनाई हुई दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी दवाएं आप जैविक में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आप रासायनिक की तौर पर जाएं तो आप बाजार से जाके आप रसायन आमतौर पर मिल जाते हैं, आप अच्छे कंपनियों के अच्छे उत्पादों का एक पक्के बिल के साथ लेके आए, उनको इस्तेमाल करवाएं।
0: धान की खेती पानी की खेती, जल की खेती मानी जाती है, यानी कि सिंचाई धान की खेती में बहुत आवश्यक है। तो धान की खेती में हमें सिंचाई में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: जी, आमतौर पर किसान मानते हैं कि धान जल की खेती है, पानी की खेती है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ लेकिन पूर्ण तरीके से सहमत नहीं हूँ। किसान आमतौर पर क्या करते हैं कि अपने फसल में लगातार पानी खड़ा रखते हैं, जिससे उसमें कीचड़ की समस्या बनती है और उसके अंदर जड़ों का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो मैं यही उनको बताना चाहूँगा कि जल मांग के हिसाब से आप जल आपूर्ति करें, आप अनावश्यक पानी ना दें जिससे कीचड़ के हालात बनते हैं। धान पानी की खेती है, कीचड़ की खेती नहीं है, इस चीज़ को गांठ बांध लें, अपने जहन में डाल लें कि आप ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, आप एक सीमित मात्रा में पानी दें।
0: सौरभ जी जब फसल तैयार हो जाती है तो हमें कटाई मड़ाई और भंडारण करना होता है, तो फसल जो हम धान की ले रहे हैं उसमें हम किस प्रकार से कटाई करें, मड़ाई करें और भंडारण कैसे करें, इसे समझाइए।
1: जी, कटाई से पूर्व ये सुनिश्चित करें कि आपने पानी कब दिया है। अगर आपको कटाई अगले 10 दिन में करनी है तो आप 15 से 20 दिन पहले पानी का देना बंद करें, जिससे क्या होगा कि फसल आपकी पकने लग जाएगी, उसके बाद आप उसमें कटाई करें। कटाई करने के बाद आप उसको जमीन पर रखें, उससे क्या होगा उसमें सूखेगी वो, उसमें अत्यधिक मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अत्यधिक उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, या आपका फसल जो आपने निकाला है वो सड़ने जैसा महसूस ना हो। उसके बाद आप उसको भंडारण से पूर्व ये जरूर सुनिश्चित करें, आप उसको एक किसी पॉलीशीट पर या किसी फर्श पर सुखा कर ही

0: उसको भंडारण करें जिससे उसकी नमी कम हो जाए और आपका धान लंबे समय तक भंडारण हो सके।
1: सौरभ जी, खेती में पराली एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। पूरे देश में इस समय पराली पे प्रतिबंध है, तो आप हमें ये बताइए कि धान की खेती में हमें पराली प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए?
0: जी, आमतौर पर किसान अपने खेत में ही पराली को जलाकर उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा, पराली जैसा खाद आपके घर में जो गाय गोबर है उससे भी बढ़िया है हमारी पराली का खाद। तो आप पराली को किसी गड्ढे के अंदर डालें, उसके अंदर थोड़ा सा जो है गोबर और अन्य जैविक चीज़ें जैसे लकड़ियाँ, टहनियाँ आदि चीज़ों के साथ उसको आप डालेंगे तो आने वाले साल में आपके लिए बेहतर से बेहतरीन आपको खाद आपको उपलब्ध होगा। उसके अलावा आप पराली के लिए अपने गाय भैंसों के लिए चारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो पराली के लिए गवर्नमेंट भी हमारी बायोडीजल प्लांट खोल रही है, पराली आप बायोडीजल प्लांट में भी दे सकते हैं, तो पराली भी एक तरीके से एक आय का स्रोत अब बन चुकी है।
1: धान की खेती से जुड़ी हुई आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, तमाम जानकारियाँ दी, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम।
2: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसका विषय था धान की उन्नतशील खेती कैसे करें। वार्ताकार थे सौरभ उपाध्याय, से आप सुन रहे थे लोकेंद्र पाठक की बातचीत। तो किसान साथियों, इस समय हो गया है एक अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल, पर कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि नई खोज कर रही है आपका इंतजार।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: किसान साथियों, अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रामीण लोक में, और मैं हूं आज की आपकी हम सफर शोभना। भाइयों, बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में तेजी से लोकप्रिय हो रही एक नई तकनीक, एग्रीकल्चर ड्रोन तकनीक के बारे में। ये तकनीक खेती को आसान, कम खर्चीला और अधिक लाभकारी बनाने में मदद कर रही है। तो क्या है एग्रीकल्चर ड्रोन? ड्रोन एक छोटा उड़ने वाला उपकरण होता है जिसे रिमोट या फिर मोबाइल ऐप की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। खेती में इसका उपयोग खेतों में दवा छिड़काव, खाद का वितरण, फसल की निगरानी और खेतों की मैपिंग के लिए किया जाता है। इससे होता क्या है? इससे होता यह है किसान साथियों कि समय की बचत होती है। जहां एक किसान को कई घंटे लगते हैं, वहीं ड्रोन कुछ ही मिनटों में पूरे खेत में छिड़काव कर देता है। मजदूरों पर निर्भरता कम होती है और दवाइयों की बर्बादी भी कम होती है। सटीक छिड़काव होता है। ड्रोन केवल आवश्यक स्थान पर ही दवा या फिर खाद डालता है जिससे फसल को सही मात्रा मिलती है। स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें तो किसान को जहरीले कीटनाशकों के सीधे संपर्क में नहीं आना पड़ता। फसल की निगरानी हो जाती है। कैमरे और सेंसर की मदद से फसल की बीमारी हो, पानी की कमी हो या पोषक तत्वों की स्थिति का भी आप पता लगा सकते हैं। भारत में अब कई राज्यों में किसान ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। सरकार भी कृषि ड्रोन खरीदने पर सब्सिडी प्रदान कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र और कई संस्थाएं किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण भी दे रही है। अब बात करते हैं कि भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो साथियों, आने वाले समय में ड्रोन तकनीक खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। इससे उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी और किसानों की आय में सुधार होगा। तो किसान साथियों, अब तक जो बात समझ में आई वो हमें ये समझ में आई कि ड्रोन जो तकनीक है ना, वो आधुनिक खेती की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि किसान नई तकनीकों को अपनाए तो खेती अधिक वैज्ञानिक, सुरक्षित और लाभकारी बन सकती है। तो किसान साथियों, अगर अभी तक आपने भी ड्रोन को नहीं अपनाया है तो आप अपनी खेती में अपनी फसलों के लिए ड्रोन को अपना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस पखवाड़े की, यानी कि मई के अंतिम सप्ताह के अगले 15 दिनों में किसान भाई क्या करें। तो भाई, किसान भाई वर्षा ऋतु की फसलों की तैयारी शुरू कर सकते हैं।

0: इस समय उद्यान और कृषि विभाग द्वारा नर्सरी और धान की तैयारी पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। अब नर्सरी की तैयारी आपको करनी कैसे है? तो किसान साथियों, ऊंची एवं भुरभुरी क्यारियां तैयार कर लें आप। गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। टमाटर, मिर्च, बैगन, इन सारी सब्जियों के बीज आप बो सकते हैं। हल्की सिंचाई करें, नमी को बनाए रखें। धान की तैयारी के लिए आपको क्या करना है? धान की नर्सरी के लिए खेत की सफाई और जुताई करें। उन्नत और प्रमाणित बीज का चयन करें। बीज उपचार करते ही बुवाई करें ताकि रोगों से बचाव हो सके। नर्सरी में पानी की उचित व्यवस्था रखें। खेतों में मेड़ों की मरम्मत और जल संचयन की तैयारी भी कर लें। आपको इससे लाभ क्या क्या होगा? स्वस्थ पौधे और मजबूत धान की नर्सरी तैयार हो जाएगी आपकी। समय पर रोपाई हो जाएगी। फसल उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इस प्रकार इस पखवाड़े में नर्सरी और धान की तैयारी करना आने वाले खरीफ सीजन के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले 15 दिनों के लिए अपनी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। और किसान साथियों, आइए अब बात करते हैं मौसम की। तो मौसम आप देख ही रहे हैं कि आगरा में मौसम बहुत गर्म हो रहा है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 44 से 46 डिग्री तक जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 30 से 33 डिग्री रहने की संभावना है। तेज धूप और लू चल सकती है और गर्म हवा तो चल ही रही है। तो आपको करना क्या है? खेत में काम सुबह जल्दी या फिर शाम को कर लें। सब्जियों, नर्सरी, नई फसलों में हल्की सिंचाई को बनाए रखें। पशुओं को छांव और ठंडा पानी जरूर दें। दोपहर में दवा कीटनाशक का छिड़काव ना करें तो अच्छा है। तेज गर्मी के कारण हमारे जो किसान हैं वो नुकसान हो सकता है उन्हें, तो उसके लिए नींबू पानी या फिर आप छाछ लेते रहे। किसान साथियों, बस यही है कि जो गर्मी है, जो लू है, उसमें सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। और हम नहीं चाहते कि हमारे किसान बीमार पड़े, क्योंकि वही तो हमारे अन्नदाता हैं। और जब वो स्वस्थ रहेंगे तो हम तो स्वस्थ रहेंगे ही। किसान साथियों, चलिए अब हो चला है आपको लेकर चलने का मनोरंजन की दुनिया में। पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद ही आपको सुनवाएंगे हनुमंत का ये प्यारा सा लोकगीत।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

किसान साथियों, इस प्यारे से लोकगीत के बाद ही समय ने हमें इशारा कर दिया है आपसे विदा लेने का। तो कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी शोभना को। राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्य लोक, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्रमिक श्रोताओं के लिए कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपकी रेडियो सखी मनीषा अरोरा का स्नेह भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग काम से लौट आए होंगे, हाथ मुंह भी धो लिया होगा, है ना? थकान, हाँ थकान महसूस हो रही होगी, है ना? तो फिर कोई बात नहीं, चाय की चुस्की लीजिए आराम से बैठकर और हमारा पूरा कार्यक्रम सुनिए। साथियों, आज का हमारा कार्यक्रम थोड़ा खास है क्योंकि आज बातों में होगा अपना

जानकारी में भी लगेगा मिर्च मसाले के साथ तड़का, और साथ में होंगी ऐसी ऐसी बातें जो सीधे आपके दिल को छुएंगी, और तो और ढेर सारा मनोरंजन भी होगा। तो फिर कहीं पर भी मत जाइएगा, आज हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। अच्छा साथियों, आपने कभी गौर किया है कि जब हमारे मोबाइल की बैटरी 20% रह जाती है तो हम क्या करते हैं? चार्जर ढूंढते हैं, है ना, ताकि मोबाइल बंद ना हो जाए, और फौरन जैसे ही चार्जर मिलता है उसे चार्ज करने पर लगा देते हैं, है ना। लेकिन हमारे शरीर की बैटरी कब खत्म होने लगती है ये हम समझ ही नहीं पाते। थकान सी हो रही है, कमजोरी भी लग रही है, नींद भी पूरी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलो अभी तो बहुत काम पड़ा है, पहले जल्दी जल्दी से काम निपटा लें, बाद में आराम कर लेंगे, है ना। यही शब्द होते हैं ना हमारे, क्योंकि अगर हमने ये काम अभी नहीं किया ना तो मालिक हमें काम से बाहर निकाल देगा और किसी और को रख लेगा। यही सोचते हैं ना आप लोग, भाई सुबह सूरज निकलते ही काम शुरू, फिर दिन भर घर की जिम्मेदारियां, मेहनत, और फिर इन सब के बीच छूट जाती है तो क्या, अपनी सेहत, वो सबसे पीछे। लेकिन साथियों एक बात याद रखिए, एक मशीन भी जो होती है ना वो बिना देखभाल के खराब हो जाती है। फिर हमारा शरीर क्या है, एक आखिर इंसानी शरीर है, अगर वही बीमार पड़ जाए तो घर की मुस्कान भी कहीं खो जाती है। इसीलिए काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समय पर खाना खाइए, भरपूर पानी पीजिए, अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो सिर और कान को ढककर निकलें, और हाँ अगर थोड़ा सा आराम करने का मन कर रहा है तो कर लीजिए ना, इसमें शर्म मत करिए, क्योंकि साथियों काम की चिंता में अपनी सेहत को आप पीछे छोड़ देते हैं। इसे पीछे ना छोड़िए, क्योंकि कभी कभी छोटी सी लापरवाही बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। स्वस्थ शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर शरीर मजबूत रहेगा तो आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे और अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगे, सीधी सी बात है। पर सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन भी अपना स्वस्थ रखिए, चिंता से दूर रहिए। अगर आपके दिमाग में कोई अवसाद है, कोई दुख परेशानी है तो उसे दूर भगाइए, और यह सोचिए कि हाँ जो भी चीज है सब ठीक हो जाएगी, और उसे अपने पास फटकने भी मत दीजिए। कभी कभी परिवार के साथ बैठकर बातें कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि खुश मन इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। याद रखिए श्रमिक स्वस्थ तो तभी होगा जब वो अपना सेहत का ध्यान रखेगा, और तब उसका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, और जब परिवार सुरक्षित रहेगा तो हर परिवार सुरक्षित रहेंगे और खुश भी, तभी हमारा राष्ट्र सच में समृद्ध बन पाएगा। तो आइए आज से ही ठान लें कि काम के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान भी पूरी जिम्मेदारी से रखेंगे। तो साथियों काम की भागदौड़ के बीच अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मुस्कुराना मत भूलिए, क्योंकि खुश मन और स्वस्थ तन यही तो जिंदगी की असली ताकत होती है। तो फिर इसी प्यारी सी मुस्कान के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

साथियों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बातें की आपकी सेहत की, कि किस तरह आप अपना ध्यान रखकर स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन साथियों, जानते हैं कभी कभी कुछ विटामिन्स की कमी से भी शरीर में बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होती है। आपको बस उन विटामिन्स का नाम बताना है। यही है हमारा आज का प्रश्न। जी हाँ, जब तक आप सोचिए तब तक हम आपको बताते हैं राष्ट्रीय सॉरी डे के बारे में, जिसे आज के दिन ही ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। दरअसल हुआ यूं कि ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने 1900 से 1970 तक जो आदिवासी बच्चे थे उनको जबरदस्ती उनके माँ बाप से छीना और उन्हें सरकारी घरों में भेज दिया, या कुछ ऐसे घरों में भेजा जो गोरे परिवार थे। उन्हें स्टोलन जनरेशंस यानी चुराई हुई पीढ़ियां कहते हैं। फिर 26 मई यानी आज के दिन 1998 में पहली बार सॉरी डे मनाकर सरकार ने उन परिवारों से माफी मांग ली जिनके बच्चों को उन्होंने सरकारी घरों में भेज दिया था। वैसे साथियों, ये सॉरी डे हमें यही सिखाता है कि जब ताकतवर लोग कमजोर का हक छीनते हैं, जैसे आज भी कई ठेकेदार ऐसे हैं जो मजदूरों का पैसा मार लेते हैं, उनकी मजदूरी कम कर देते हैं, तो उन्हें भी मनाना चाहिए ये सॉरी डे।

0: इसका मतलब है गलती मानो और सुधार कर लो। और फिर सॉरी बोलने से रिश्ते तो सुधरते ही हैं। गलती अगर किसी से भी हो जाए, चाहे वो मालिक हो या मजदूर हो, सॉरी बोल देना चाहिए, जिससे रिश्ते तो मजबूत होते ही हैं, समाज भी मजबूत होता है। ना ही बात बढ़ती है, ना ही संबंध खराब होते हैं। अगर खराब होती है तो हमारी एक या दो दिन पुरानी सब्जी, जी हाँ, जिसे आप फ्रिज में बाहर रख देते हैं, फ्रिज से, जी हाँ, फिर उसे खाने लायक नहीं माना जाता, क्योंकि गर्मी इतनी तेज हो गई है कि ताजा खाना बनाएं और ताजा ही खाएं। और अरे भाई, बाकी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा ब्रेक।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: हाँ तो साथियों, हम ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बातें कर रहे थे कि ताजा बनाएं और ताजा ही खाएं, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है और ऊपर से धूप भी इतनी तेज हो गई है कि थोड़ी देर बाहर निकलते ही प्यास लगने लगती है, थकान और कमजोरी होने लग जाती है। खासकर हमारे जो मेहनती भाई बहन हैं, जो दिन भर धूप में काम करते हैं, उन्हें गर्मी से बचने के लिए खान पान का खास ध्यान रखना जरूरी है। तो साथियों, ऐसे मौसम में एक देसी और बहुत फायदेमंद चीज होती है, सत्तू। जी हाँ, सत्तू सिर्फ पेट भरने वाला नहीं है, बल्कि शरीर को ठंडक भी देता है और ताकत भी देता है, और एक ऐसा पारंपरिक पेय माना जाता है जिसे भुने चने या जौ से बनाया जाता है। इसको पानी में घोलकर पीने से एक तो शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ गर्मी में भी हमें राहत मिलती है। साथियों, गर्मी में शरीर से पसीने के जरिए पानी और जरूरी पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे में जो सत्तू होता है वो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता और हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने में भी मदद करता है। यही कारण है गांव में आज भी लोग गर्मियों में सत्तू का खूब इस्तेमाल करते हैं। श्रमिक साथियों, सत्तू पीने के कई फायदे होते हैं। एक तो हमने आपको बता ही दिया कि इससे शरीर को ताकत मिलती है, साथ ही साथ पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है। इससे जल्दी थकान महसूस नहीं होती और जो लोग धूप में मेहनत का काम करते हैं, उनके लिए सत्तू तो बहुत फायदेमंद माना जाता है। अगर इसमें आप थोड़ा सा नींबू, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें तो वाह, क्या कहने, इसका स्वाद तो बढ़ ही जाता है, साथ ही शरीर को और ज्यादा ताजगी मिलती है। लेकिन साथियों, ध्यान रखें, सत्तू को हमेशा साफ पानी में ही बनाएं, गंदा पुराना पानी ना हो, और ज्यादा देर तक रखा हुआ सत्तू ना पिएं। तो आइए, इस गर्मी में विदेशी ड्रिंक्स की जगह देसी और सेहतमंद सत्तू को अपनाएं, क्योंकि हमारी पुरानी देसी चीजें ही कई बार हमारी सेहत की सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: साथियों, गर्मी की बात हो रही है तो तेज धूप की बात तो होनी ही होनी है ना भाई। जहां पर तेज धूप होगी वहां हम क्या करते हैं, हम सूरज देवता से नाराज हो जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं ये जो सूरज देवता होते हैं वो अपना कहीं प्रभाव भी डालते हैं। कैसे, कब, कहां? अरे भाई, इतने सारे सवाल। ठीक है, सबके जवाब मिलेंगे, वो भी एक एक करके। सूरज से हमें मिलती है सौर ऊर्जा। जी हाँ, सूरज से जो किरणें निकलती हैं उन्हें इकट्ठा करके सौर ऊर्जा बनाई जाती है। भाई, इससे आगे हम नहीं बताएंगे।

0: आप खुद ही सुन लीजिए पुनीता चतुर्वेदी से इस वार्ता से, जिसका नाम है सौर ऊर्जा का प्रभाव।
1: किसी भी कार्य को करने की शारीरिक क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए मनुष्य को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा विकास का मुख्य आधार है। पर्याप्त ऊर्जा के बिना किसी भी राज्य अथवा देश का चहुंमुखी विकास संभव नहीं है। औद्योगिक विकास, कृषि, सिंचाई, यातायात व संचार ही नहीं बल्कि हमारी आधुनिक जीवन पद्धति ही ऊर्जा पर निर्भर होती जा रही है। ये ऊर्जा मनुष्यों व जीव जंतुओं को भोजन से प्राप्त होती है। वाहनों व कारखानों को ऊर्जा पेट्रोल, डीजल, विद्युत व कोयला से प्राप्त होती है। ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं। पृथ्वी का खनिज भंडार कभी न कभी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मानव विकास की प्रगति के लिए आवश्यक है कि ऊर्जा प्राप्ति के दूसरे तरीकों की खोज की जाए। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए ऊर्जा के अन्य विकल्पों की खोज की जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों द्वारा निर्मित ऊर्जा जैसे सूर्य की रोशनी, वायु व भूगर्भीय ताप को वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं। इसके अंतर्गत सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे ऊष्मा व प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा द्वारा सौर चालित चूल्हे पर बिना किसी खर्चे के भोजन बनाया जा सकता है। सौर ऊर्जा मुख्यतया भोजन पकाने, पानी गर्म करने, फसलों को सुखाने, बिजली के निर्माण व समुद्री जल को वाष्पित करने के लिए प्रयोग की जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा बड़े बड़े सौर पैनल बनाए गए हैं जो बड़े उद्योगों के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं। इससे वाहन भी चलाए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा प्रकाश व गर्मी प्राप्त करने जैसे साधारण कार्यों के लिए आसानी से प्राप्त हो जाती है। सौर ऊर्जा तब तक कार्य करेगी जब तक सूर्य अपनी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचा रहा है। सौर ऊर्जा के निर्माण में किसी भी प्रकार का जल एवं वायु प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इसके जलने से कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती। सौर ऊर्जा का उत्पादन लाभकारी है व पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सक्षम है। ग्रामीण ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सौर ऊर्जा के उपयोग बहुत किफायती हैं व उनका तेजी से विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। भारत के भूमि क्षेत्र में अधिकांश भागों में 4 से 7 किलोवाट प्रति घंटे प्रति वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन क्षमता से सूर्य की किरणें भारत की धरती को छूती हैं। इसलिए सौर विकिरण को सौर तापीय एवं सौर फोटोवोल्टिक दोनों में परिवर्तित करने की प्रौद्योगिकी को भारत में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जा रहा है। सौर शक्ति विद्युत पैदा करने की क्षमता प्रदान करती है व क्षमता को तेजी से बढ़ाने में सहायता करती है। विद्युत की अन्य आवश्यकताओं व ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गर्म व ठंडा करने के कार्य में ये लाभदायक है। सौर ऊर्जा पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं डालती बल्कि पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि विद्युत अथवा ताप के उत्पादन में इससे कोई उत्सर्जन नहीं होता। ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सौर सभी स्रोतों में सबसे सुरक्षित स्रोत है। ये प्रचुरता में उपलब्ध है। सैद्धांतिक रूप से कुल आपतित सौर ऊर्जा का छोटा सा अंश भी यदि प्रभावी तरीके से प्रयोग किया जा सके तो यह समूचे देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। देश में ऊर्जा से वंचित आबादी की भारी संख्या को देखते हुए ऊर्जा के अपेक्षाकृत प्रचुर संसाधनों का देश हित में यथासंभव दोहन किया जाना चाहिए। ऊर्जा के अभाव के कारण देश में डीजल आधारित विद्युत का उपयोग बढ़ रहा है जो कि महंगा भी है व प्रदूषणकारी भी है। इस परिस्थिति में सौर ऊर्जा का प्रयोग आवश्यक है एवं व्यावहारिक रूप से संभव भी है। देश की हमेशा से चली आ रही ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग बेहद लाभकारी है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां रिन्यूएबल एनर्जी की प्रचुर संभावनाएं हैं। भारत में विश्व के अन्य देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन दर काफी कम है। देश का अधिकांश क्षेत्र विपुल और सौर किरणों से नहाया हुआ है। यहां वर्ष में 300 दिन सौर ऊर्जा उपलब्ध रहती है। माना जा रहा है कि सौर ऊर्जा का भविष्य बहुत उज्ज्वल व प्रभावी है। अनुमान है कि वर्ष 2040 तक विश्व की कुल ऊर्जा की खपत का 5% भाग सिर्फ सौर ऊर्जा पूरा करेगी। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। दुनिया में बिजली की सालाना खपत की 10,000 गुना अधिक बिजली सूर्य की किरणों से पैदा की जा सकती है। सौर ऊर्जा के प्रभावों के अंतर्गत सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स के सूक्ष्म पैनलों से इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की बैटरियां धूप के 100वें प्रकाश कण में भी चार्ज की जा सकती हैं। सूक्ष्म पैनल द्वारा सूर्य की धरती पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता के केवल 100वें भाग से ही लगभग 5 वोल्ट पर 100 माइक्रोवाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लगे इस सूक्ष्म सौर पैनल को खिड़की से बाहर रखने से घड़ी की बैटरी को बाहरी स्रोत से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेटर की बैटरी के लिए भी ये सौर पैनल प्रभावी है।

0: सौर ऊर्जा में विश्व को परिवर्तित करने की क्षमता है। जहां जीवाश्मों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, वहीं सौर ऊर्जा से इस प्रकार की कोई जहरीली गैस उत्पन्न नहीं होती। सूर्य द्वारा प्रवाहित ग्रीन हाउस गैस किसी भी प्रकार नुकसानदायक नहीं होती। जहां विद्युत ऊर्जा के निर्माण में जल की आवश्यकता होती है, वहीं सौर ऊर्जा के निर्माण में जल आवश्यक नहीं होता। कुछ सौर तापीय सिस्टम्स में जल की आवश्यकता पड़ती है, पर यह जल पुनः उपयोग करने योग्य होता है। सौर थर्मल तकनीकियों द्वारा बिजली के उत्पादन में किसी प्रकार का ठोस कचरा उत्पन्न नहीं होता। इसमें किसी ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए प्रदूषण का खतरा नहीं होता। ये पुनर्निर्माण करने योग्य स्रोत है, क्योंकि सूर्य द्वारा पृथ्वी को अनवरत ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार अपने वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्याप्त वित्तीय संसाधनों को एक साथ जुटाकर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने व देश के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए ऊर्जा के प्रचुर स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग की प्रवृत्ति का विकास करना है, जो जनमानस व प्रकृति के लिए भी बहुत लाभदायक है।
1: साथियों, अभी पुनीता चतुर्वेदी जानकारी दे रही थी सौर ऊर्जा का प्रभाव इस विषय पर। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस ऊर्जा के क्या क्या फायदे होते हैं। साथियों, वैसे फायदे की बात हो रही हो और मनोरंजन ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर चलिए इस गीत की तरफ।

साथियों, हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि किन विटामिन्स की कमी से अत्यधिक थकान और कमजोरी लगती है। तो इसका जवाब है विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। जो विटामिन B12 होता है वो दूध, दही, पनीर, अंडे और मछली में पाया जाता है, और विटामिन डी मिलता है हमें सुबह की धूप से और मशरूम में भी पाया जाता है। विटामिन सी होता है नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद और टमाटर में। तो इन सभी चीजों का सेवन करें ताकि आप थकान से और कमजोरी को टाटा बाय बाय कर सके। वैसे टाटा बाय बाय करने का टाइम अब हमारा भी हो चला है, तो इसी के साथ अपनी रेडियो साथी मनीषा अरोरा को मजदूर मंडल कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी श्रमिक श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं, थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जहां सीमा पार से आने वाले खतरे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं देश के भीतर ऐसे खतरों में मदद करने वाले आंतरिक तत्वों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें

शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, समुद्री निगरानी को मजबूत करने और गतिविधियों की एक साझा तस्वीर तैयार करने की पहल पर सहमति जताई। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर

0: जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
1: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
2: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
1: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के चार प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी और अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीधे फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता से दूसरा क्वालिफायर खेलना होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. The Senate has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today informed that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as a member secretary in the committee. Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day speech from Red Fort last year had announced about the high-level committee on demographic change. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country. He said strict legal action should be taken against those involved. Mr. Shah stressed that since drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Yong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jayashankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. Dr. Jayashankar emphasized that Indo-Pacific region must remain a driver for global growth and stability. He said that as maritime democracies, pluralistic societies and market economies, quad nations share the responsibility towards

0: the free and open Indo-Pacific.
1: Over the past several months, our officials have advanced collaboration across key Quad priorities, including maritime security, critical technologies, economic resilience, and HADR. We have seen encouraging progress on many initiatives. As maritime democracies, pluralistic societies, and market economies, we share a responsibility towards a free and open Indo-Pacific. The region must remain a driver of global growth and stability.
0: In a statement, U.S. Secretary of State Marco Rubio said the United States will be hosting Quad partners later this year for a fuel security forum to further expand this. In his joint press statement, Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi emphasized the importance of diplomatic efforts in ensuring free and safe navigation in the Strait of Hormuz, as well as bringing stability to West Asia. Australian Foreign Minister Penny Yong said Quad has announced the strongest ever commitment from the Quad to the Pacific through the Quad ports of the future partnership. The Quad Foreign Ministers meeting joint statement said the Quad nations discussed the situation in West Asia and reaffirmed support for ongoing diplomatic efforts and hope for lasting peace in the region. Addressing a press conference after the conclusion of the meeting, Additional Secretary of the Minister of External Affairs K. Nagarajan Naidu said the meeting reaffirmed the Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific. Mr. Naidu said foreign ministers strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The government has revised the minimum assured procurement price MAAPP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. The revised MAAPP has been done on the request of the state governments, which has come into effect from today. President Draupadi Murmu arrived in Sikkim today on a three-day visit. She visited the Orchidarium and the Namgyal Institute of Tibetology. Governor Om Prakash Mathur, Chief Minister Prem Singh Tamang, and other dignitaries welcomed the President at the Orchidarium. Tomorrow, the President will visit Nathula Pass and will also attend the convocation of the Sikkim University. On the last day of her visit, he will present the President of India's Police Kala Medal to the Sikkim Police. In IPL cricket, Gujarat Titans won the toss and elected to field against Royal Challengers Bengaluru in the qualifier 1 in Dharamshala. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। संध्या के 7:10 हुए हैं। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता। गाजी नजरुल इस्लाम एक अद्भुत व्यक्तित्व। वार्ताकार हैं डॉक्टर शफाली चतुर्वेदी।
3: मैं सारी मानवता के लिए आया हूँ उजाले की तरह। कृष्ण भक्त कहते हैं कृष्ण हिंदुओं के हैं। मोहम्मद के अनुयायी बताते हैं कि वे सिर्फ मुसलमानों के हैं। इसी तरह ईसा मसीह पर ईसाई हक जमाते हैं। कृष्ण मोहम्मद ईसा मसीह को राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया है, यही सब समस्याओं की जड़ है। लोग उजाले के लिए शोर नहीं मचा रहे, बल्कि मालिकाना हक पर लड़ रहे हैं। ये विचार धार्मिक कट्टरता को धता बताने वाले मशहूर कवि, लेखक, संगीतकार काजी नजरुल इस्लाम के हैं। विद्रोही कवि के नाम से प्रसिद्ध काजी नजरुल इस्लाम को भारत और बांग्लादेश में बेहद सम्मान हासिल है। वे बांग्लादेश के राष्ट्रकवि थे। आपका जन्म भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश के वर्धमान जिले में आसनसोल के पास चुरुलिया गांव में 24 मई 1899 को निर्धन मुस्लिम परिवार में हुआ। नजरुल ने कई नाटक लिखे जो हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित थे, जैसे शकुनी का वध, युधिष्ठिर का गीत और दाता कर्ण। 1917 में नजरुल ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए। आपकी बंगाल रेजिमेंट में भर्ती हुई और कराची तैनाती मिली। नाटक छोड़ वे फौज में क्यों गए? इस सवाल का जवाब उन्होंने ही दिया कि एक रोमांच की तलाश और दूसरे उस वक्त की राजनीति में दिलचस्पी। कराची कैंट में उनके पास ज्यादा काम नहीं था। उन्होंने रेजिमेंट के मौलवी से फारसी सीखी, फिर इस जुबान के महान साहित्यकारों रूमी और उमर खयाम को पढ़ा। सन 1919 में उनकी पहली गद्य की किताब प्रकाश में आई, जिसका शीर्षक था एक आवारा की जिंदगी। कुछ ही समय के बाद उनकी पहली कविता मुक्ति भी छपी। आप मूलतः बांग्ला में लिखते थे,

हिंदी और अंग्रेजी में उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ। 1922 में काजी की एक कविता विद्रोही बिजली नाम की एक पत्रिका में प्रकाशित हुई, जो बहुत लोकप्रिय हुई। प्रसंगवश, मैं विद्रोही, मैं चिर अधीर, मैं शास्ति शांति का नाश, त्रास में क्रांति रूप में, रणकामी चिर सजग वीर में, महाविश्व के महाकाश का वृक्ष तोड़ में, रवि शशि उपग्रह पीछे नक्षत्र छोड़ में, महर लोक स्वर लोक भेद शत कोटि लोक पहुंचा। इस मूल बांग्ला में इसे हम इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। इसका बंगला से हिंदी अनुवाद हिंदी के सुप्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर राम विलास शर्मा द्वारा किया गया। इस कविता में आग है और इसके माध्यम से काजी नजरूल ने जिंदगी के हर पहलू में हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है। शीघ्र ही यह कविता अंग्रेजी राज का विरोध कर रहे क्रांतिकारियों का प्रेरक गीत बन गई। इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ, तभी से आप विद्रोही कवि के नाम से विख्यात हुए। कुछ ही दिनों बाद नजरूल ने धूमकेतु नाम से एक पत्रिका निकाली। इसके सितंबर 1922 के अंक में उनकी एक कविता छपी, नाम था आनंद का आगमन। इसके तेवर भी बर्तानिया हुकूमत को बागी लगे। पुलिस ने पत्रिका के दफ्तर पर छापा मारा और नजरूल गिरफ्तार हो गए। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तथा माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें 1.5 साल की सजा सुनाई गई। जेल में भी वे साहित्य रचते रहे। क्रांति के प्रति उनका यह रुख देख गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपना नाटक बसंता नजरूल को समर्पित किया। नजरूल ने भी जेल से एक कविता लिख गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता जताई। आपने न सिर्फ इस्लामिक मान्यताओं को मूल में रख कर रचनाएं की, बल्कि भजन कीर्तन और श्यामा संगीत भी रचा। दुर्गा माँ की भक्ति में गाए जाने वाले श्यामा संगीत को समृद्ध करने में नजरूल की प्रमुख भूमिका है। कृष्ण पर लिखे उनके भजन खूब मशहूर हुए। एक भजन का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। अगर तुम राधा होते श्याम, मेरी तरह बस आठों पहर तुम रटते श्याम का नाम, बन फूल की माला निराली, बन जाती नागन काली, कृष्ण भक्ति की भीख मांगते आते लाखों जन्म। श्रृंगार एवं प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। सावन की रात में गर स्मरण तुम आए, बाहर तूफान बहे नयनों से बार झरे, भूल जाना स्मृति मम निशीत स्वप्न सम, आंचल में गुथी माला फेंक देना पथ पर। प्रेम रूपी नदी में जब ज्वार आता है तो प्रेमी विकल हो उठता है, तथा यत्र तत्र सर्वत्र अपने प्रेमास्पद की उपस्थिति की कल्पना करते हुए कह उठता है, नदी में ज्वार आया पर तुम आए कहाँ, खिड़की दरवाजा खुला है पर तुम दिखे कहाँ, पेड़ों की डालियों पर मुझे देख कोयल कूके, आज भी तुम दिखे नहीं, आखिर तुम हो कहाँ, आखिर तुम हो कहाँ। अरे अभागो चुप हो जाओ, देखते नहीं वह स्वराज्य चला आ रहा है, देखते नहीं वह स्वराज्य चला आ रहा है। काजी नजरुल इस्लाम उत्सव धर्मी थे। कहा जाता है कि बंगाल और बांग्लादेश में उनके लिखे इस गीत के बिना ईद पूरी नहीं मानी जाती। ओ हमोन रमजानेर ओई रोजार, शेषे एलो खुशीर ईद तुई, अपना के लाज अपना के आज, बिलिये देशोन आसमाने तागीद। अर्थात ओ मन, रमजान के बाद रोजे के बाद आई है मुबारक ईद, तुम अपने अपने बैर भूलो और सुनो ऊपर वाले का संदेश। नजरूल ने लगभग 3000 गीतों की सृष्टि की तथा अधिकांश को स्वर भी दिया। आज उनके गीतों को नजरूल संगीत या नजरूल गीत नाम से जाना जाता है। प्रेम का गजल गान उनकी विशिष्ट रचना है। विद्रोही, अग्निवीणा, भंगार गान

0: एवं विशेर वांशी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहीं उनकी 29 अगस्त 1976 में मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद ढाका विश्वविद्यालय के परिसर में आपको दफन कर दिया गया। मस्जिद की बगल में उसके साये में ही उनका सफ़र शुरू हुआ था और वहीं पर ख़त्म। लेकिन कलमगारों का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। उनका लिखा उनके शरीर के मिट्टी होने के बाद भी बना रहता है। नजरूल का बचपन में तुक्कू मियाँ जो नाम पड़ा तो जीवन भर उस दुख ने उनका साथ नहीं छोड़ा।
1: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर इसे सेवा सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष बताया। पेश है एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन वर्षों में गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता बना, अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में बदला और जन भागीदारी ने विकास को जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल, डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की त्रिवेणी विकसित भारत 2047 की दिशा को नई गति दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
4: प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों

0: के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान कल से पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम में महापौर के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का पैसा जनहित में ही खर्च होगा, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, प्रेरणा है। श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश में 3रा स्थान मिला, इसे पहले स्थान पर लाना है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों और नगर निगम ने पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना।
2: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में नगर निगम में आयोजित मेयर के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के नए सदन हॉल का लोकार्पण किया, साथ ही नगर निगम के नए लोगों का अनावरण और पिछले 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित विशेष पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लाभ सीधे आम आदमी को मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी अस्पतालों में इलाज, जांच, दवाओं और आपात सेवाओं की गुणवत्ता लगातार बेहतर होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्थान बढ़ाना नहीं बल्कि प्रदेश को प्रशिक्षित चिकित्सक, विशेषज्ञ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेडिकल संस्थानों में आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ फैकल्टी और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में आयुष पद्धतियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए संस्थागत और सुरक्षित प्रसव व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज गोंडा से नकहा जंगल गोंडा डालीगंज पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन नकहा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक चलेगी। वहीं पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन का विस्तार शाहजहांपुर तक कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज चौथे बड़े मंगल के अवसर पर हनुमान मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बड़े मंगलवार के अवसर पर लखनऊ स्थित हजरतगंज के प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के निकट आयोजित भंडारे में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित श्री राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आज विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान श्री राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराकर विशेष श्रृंगार करने के साथ ही 56 भोग लगाए गए।

0: प्रदेश में आगामी बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में मेरठ में पर्व को लेकर प्रशासन ने व्यापक कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी वीके सिंह ने सभी से अपील की है कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।
1: हम लोग जो परंपरा विगत वर्ष थी उसी का अनुपालन करेंगे और शांति समिति की बैठक में हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। बाकी जो नागरिक सुविधाएं हैं, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, फायर की व्यवस्था हो, ये सब व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। विद्युत की आपूर्ति भी हमने विद्युत विभाग को कहा है कि प्रातः सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक अनुरत विद्युत की सप्लाई हो। और
0: प्रदेश में आज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। वहीं एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है। कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो प्रदेश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में आ रही गर्म और शुष्क पछुआ हवाओं के कारण प्रदेश में आज और कल लू की चेतावनी जारी की है। विभाग ने बताया है कि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते 28 मई से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आज 12 वर्ष पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित है दौर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त। अगले 6 महीने तक मौजूदा प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में नगर निगम की 413 करोड़ रुपए की 342 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, डबल इंजन सरकार ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों को माना परिवार। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 10 की मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुर्घटना पर शोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जब सुबह सुबह हम घर से निकल रहे थे तो अचानक तेज हवा के एक झोंके ने चेहरे पर कुछ सूखे पत्ते और थोड़ी सी धूल की बौछार कर दी। उस धूल में जो सौंधी सी महक थी उसने हमें एक पल के लिए वहीं रोक दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सिर्फ धूल नहीं थी दोस्तों, वो इस मुल्क की तासीर थी, हमारी अपनी माटी की खुशबू थी। हम अक्सर बड़े बड़े शहरों की चकाचौंध में ये भूल जाते हैं कि हमारा वजूद, हमारी रगों में दौड़ता खून और हमारे आंगन की रौनक सब इसी मिट्टी की देन है। आज का हमारा ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि एक पुकार है अपनी जड़ों की ओर लौटने की, उन वीर बलिदानियों को नमन करने की जिनकी वजह से आज हम सब अपनी इस माटी पर गर्व से खड़े हैं।

0: दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: तो श्रोताओं, हम बात कर रहे थे अपने देश भारत और उसकी माटी के विषय में कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा। साथियों, भारत के बारे में यानी हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि यहां पर हर कोस पर पानी और हर चार कोस पर बानी यानी कि भाषा बोली बदल जाती है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है मिट्टी के प्रति हमारी श्रद्धा। हमारे त्योहारों को ही देख लीजिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे लगभग हर बड़े पर्व का केंद्र बिंदु ये माटी ही है? जब पंजाब में सोना उगलती फसलों के बीच वैसाखी का ढोल बजता है या असम में बिहू के गीत गूंजते हैं, तो ये सीधे तौर पर इसी धरती माँ का आभार होता है। हमारे मेले सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होते, बल्कि वे मिट्टी की कला के प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच हैं। चाहे वो राजस्थान के पुष्कर मेले की धूल हो या बंगाल के पौष मेले की टेराकोटा कला, हर जगह कुम्हार की उंगलियां इसी चाक पर मिट्टी को नया जीवन देती नजर आती हैं। दीपावली का वो छोटा सा मिट्टी

0: का दिया हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, अंधेरा दूर करने के लिए हमें वापस मिट्टी के उसी छोटे से पात्र की शरण में जाना पड़ता है। ये हमारे देश की मिट्टी ही है जो अमीर और गरीब दोनों को एक ही धरातल पर जोड़कर रखती है, जो अन्य कहीं भी देखने को नहीं मिलती।
1: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूं।

तो श्रोताओं, ये तड़प थी उस भारतीय नौजवान की जो अपने भारत की मिट्टी को छोड़कर दूर जा चुका है। आपने इस गीत के माध्यम से जो जो खासियत सुनी अपने देश की, क्या वो कहीं और भी है? जवाब होगा नहीं। श्रोताओं, आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जब देश के कोने कोने से अमृत कलश में मिट्टी इकट्ठा कर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ले जाई जाती है, तो वो एक जादुई दृश्य होता है। सोचिए, उस कलश में कश्मीर के केसर के खेतों की मिट्टी भी है और कन्याकुमारी के तटों की रेत भी। उसमें उस जवान के गांव की भी मिट्टी है जो सीमा पर पहरा दे रहा है, और उस किसान के खेत की भी जो अन्नदाता है। ये मिट्टी अब केवल भूगोल नहीं रही, ये हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अलग अलग प्रांतों के हो सकते हैं, लेकिन हमारा मूल तत्व एक ही है, भारतीयता। दोस्तों, अपनी माटी का कर्जा उतारना तो मुश्किल है, लेकिन उसका सम्मान करना हमारे हाथ में है। इस बार जब आप अपने घर में कोई त्योहार मनाएं या किसी स्थानीय मेले में जाएं, तो वहां की मिट्टी से बनी किसी चीज को घर जरूर लाएं। उन हाथों का सहारा बनें जो इस माटी को रूप देते हैं। अपनी विरासत को सहेजें और अपने बच्चों को बताएं कि ये देश केवल नक्शे पर खिंची लकीरें नहीं है, ये जीवित माटी है जो हमारी माँ है।

0: और श्रोताओ, इसके साथ ही कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश संपन्न करने की अपनी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा को अनुमति दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का ये देशभक्ति परक गीत, जिसे आवाज दी है मुकेश ने, बोल शैलेंद्र के और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: आप सुन रहे थे जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का ये भक्ति गीत, देशभक्ति पर गीत मुकेश की आवाज में।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: कार्यक्रम की अगली देशभक्ति परक रचना हमने लिए है आंखें फिल्म से, बोल साहिर लुधियानवी के, संगीत रवि का और आवाज मोहम्मद रफी की है।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं देशभक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती। आइए सुनते हैं नया दौर फिल्म का ये देशभक्ति परक गीत, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत ओपी नैयर का है, आवाजें हैं मोहम्मद रफी, बलवीर और साथियों की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आइए सुनते हैं सिकंदर आजम फिल्म का ये देशभक्ति पर गीत, जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और साथियों ने। रचना राजेंद्र कृष्ण की है, संगीत हंसराज बहल का।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमराज फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है महेंद्र कपूर ने। साहिर लुधियानवी के गीत को संगीत दिया है रवि ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं काबुलीवाला फिल्म का ये देशभक्ति पर गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीत सलील चौधरी का, आवाज मन्ना डे की।

काबुलीवाला फिल्म का ये देशभक्ति पर गीत आपने सुना मन्ना डे की आवाज में। इसे लिखा था गुलजार ने, संगीत सलिल चौधरी का था। इसके साथ ही देशभक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं पहचान फिल्म के गीत से, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज मुकेश और सुमन कल्याणपुर की है।

0: पहचान फिल्म का गीत आपने सुना, मुकेश और शुभमन कल्याणपुर की आवाजों में। गीत रचना इंदिवर की थी, संगीत शंकर जयकिशन का।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: उधार का सिंदूर, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और मुकेश की। राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं बेटी बेटे फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। शैलेंद्र के गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से चित्रपट संगीत के अंतर्गत बेटी बेटे फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की

0: रोजी रोटी छीन रहे हैं।
1: ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
5: Economic resilience should be promoted.
6: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
5: Undertake more exchanges as we intend to do.
3: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
7: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
8: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
7: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
3: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2000

0: 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
2: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Red Fort last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश

0: के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं।
1: ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं,
0: ये बर्दाश्त नहीं होगा।
1: ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu P.S.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निजाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्रमोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मरकजी वजीरे दाखला अमित शाह ने आज बताया कि इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश भाग प्रभाकर नौलेकर करेंगे। मर्दुमशुमारी के कमिश्नर के साथ साथ साबिक IAS अफसर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, साबिक IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉक्टर शमिका रवि को कमेटी के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुल्की एक कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात गैर कुदरती आबादियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली एक संजीदा मामला है जो न सिर्फ इकतदार आला बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ्फुज़ के लिए भी एक संजीदा मामला है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यह आला सतही कमेटी पूरे भारत में होने वाली आबादियाती तब्दीली का जामे तौर पर जायजा लेगी, जो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर गैर फितरी वजूहात के बायस हो रही है। ये कमेटी मजहब और समाजी कम्युनिटीज की सतहों पर होने वाली गैर मामूली आबादी की मुंतकली के तौर तरीकों का भी जायजा लेगी और इसके लिए एक मनसूबाबंद और मुकर्रर वक्त में हासिल होने वाले हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता साल लाल किले से यौम आज़ादी की अपनी तकरीर में आबादियाती तब्दीली से मुतालिक आला सतही कमेटी के बारे में ऐलान किया था।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश

0: सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: ये कमेटी एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर जरूरी हुआ तो इस कमेटी की मुद्दतकार में 6 महीने तक की तौसी की जा सकती है। आकाशवाणी से विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि हुकूमत ड्रोन्स के जरिए मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग को खत्म करने की गरज से आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर एंटी ड्रोन निजाम नसब कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि सरहद पार से उभरने वाले खतरात तो अहमियत के हामिल हैं ही, अलबत्ता मुल्क के अंदर इस तरह के खतरात की मदद करने वाले अंदरूनी अनासिर पर भी इतनी ही तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के रोल की आज ये कहते हुए सताइश की है कि फोर्स ने न सिर्फ मजबूती के साथ सरहद की हिफाजत की है बल्कि सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद किए हैं। उन्होंने सरहदी सलामती को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की खातिर बीएसएफ, फौज, इंतजामिया और मुस्तैद शहरियों पर मुश्तमिल एक 4 सतही ग्रिड कायम करने पर जोर दिया। जनाब शाह आज राजस्थान के बीकानेर के नजदीक बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर प्रहारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस 4 सतही ग्रिड से सरहदी हिस्से में दरपेश खतरात से पूरी ताकत के साथ निपटा जा सकेगा। क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि क्वाड ममालिक ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया और खित्ते में देरपा अमन कायम करने के सिलसिले में जारी सिफारती कोशिशों की हिमायत करने का इरादा किया। क्वाड ममालिक ने आबनाए हुरमुज और बहरे अहमर के रास्ते जहाज रानी के हकूक, आज़ादी, सलामती और आलमी तजारत के बिला रुकावट जारी रहने के ताल्लुक से बैन अलाक़वामी कवानीन की पाबंदी की अहमियत को दोहराया, जिसकी अक्कासी अक़वामे मुत्तहिदा के समंदर के कानून से मुतालिक कन्वेंशन में होती है। मीटिंग के अख्ताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी के नागराज नायडू ने कहा कि मीटिंग में आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल के सिलसिले में क्वाड के अहद को दोहराया गया है। आज क्वाड ममालिक ने भारत बहरुल काहिल बहरी निगरानी के सिलसिले में इश्तराक का भी आगाज किया, जिसका मकसद बहरी सलामती के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब नायडू ने कहा कि वज़राए खारजा ने सरहद पार दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुश्तरका बयान में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रोजा दौरे पर आज सिक्किम पहुंची हैं। उन्होंने तैप्तोलोगी के ऑर्किडोरियम और नामग्याल इदारे का दौरा किया। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने सदर जमहूरिया का खैरमकदम किया। कल सदर जमहूरिया नाथुला पास जाएंगी और सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। नजरसानी शुदा MAPP रियासी सरकारों की दरखास्त पर की गई है। इसका इतलाक आज से होगा। इस सिलसिले में सार्फीन के उमूर, खुराक और अवामी निजाम तकसीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में सार्फीन के उमूर के महकमे और भारत की कौमी जरी कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड नेफेड और भारत की कौमी कोऑपरेटिव सार्फीन की फेडरेशन NCCF के हुकाम के साथ एक मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि ये मीटिंग मियारी प्याज के जखीरों की मुआसिर खरीदारी की राह हमवार करने और किसानों को बेहतर आमदनी हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए की गई थी। शाहराहों और नकलो हमल के वजीर नितिन गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हासिल शुदा रिपोर्टों पर मबनी कौमी शाहराहों

0: के प्रोजेक्टों के मेयार और देखरेख की पेशरफ्त का जायजा लिया, जिसमें पंजाब में 4,000 किलोमीटर से ज्यादा और दिल्ली और हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा शाहराहों का इहाता किया गया है। नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्टों के जमीनी कामकाज को तेज करने की जरूरत और काम को वक्त पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने तमाम प्रोजेक्टों वाले हिस्सों पर मानसून की पेशगी तैयारी के इकदाम करने के लिए भी हुक्काम को हिदायत दी। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि 2036 तक खेलों की मेजबानी की भारत की दावेदारी को जहन में रखते हुए आइंदा ओलंपिक्स खेलों में योगा आसन को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि आइंदा माह की 4 से 8 तारीख तक अहमदाबाद पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो मुल्क के सेहत के सिलसिले में इस रवायती तरीक़ेकार को खेलों के आलमी डिसिप्लिन के तौर पर कायम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि योगा आसन से मुल्क की सॉफ्ट पावर की अक्कासी होती है और ये दुनिया भर में जिस्मानी तंदुरुस्ती, जहनी सेहत और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के एक अहम वसीले के तौर पर उभर रहा है।
1: 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप का आयोजन भारत में अहमदाबाद में हो रहा है। 75 से अधिक देश के 500 से अधिक एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
0: उन्होंने कहा कि तकरीबन 75 मुल्कों ने योगा आसन चैंपियनशिप के लिए इंदराज कराया है और दुनिया भर से 5,000 से ज्यादा शुरका के हिस्से में हिस्सा लेने का इम्कान है। तकरीब के दौरान वजीर मौसूफ ने पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप 2026 के लिए मास्कट, जर्सी और चैंपियनशिप फिल्म का भी आगाज किया। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन हज अहम तरीन मनासिक हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब के मैदान अरफात में जमा हुए। तमाम आजमीन हज सफ़ेद अहराम बांधे हुए थे, जिन्होंने खुतबे हज की समात की और मस्जिद निबरा में एक साथ जुहर और असर की नमाज अदा की। अब तमाम हुज्जाज कराम मुजदलफा के लिए रवाना होंगे और एक साथ मगरिब और ईशा की नमाज अदा करेंगे। हुज्जाज कराम रमी जमरात के लिए कंकरियाँ भी इकट्ठा करेंगे। वो मुजदलफा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। इसके बाद वो कल सुबह मीना वापस पहुंचेंगे, जहां वो कुर्बानी का फरीजा अंजाम देंगे और रमी जमरात करेंगे। इस साल 1,75,000 से ज्यादा भारतीय हुज्जाज कराम फरीज हज अदा कर रहे हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान गर्मी में तेजी आने की भी पेशगोई की है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के मुश्तरक बयान में जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके से मुतालिक बेबुनियाद हवालों को वाजे तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इन बेबुनियाद हवालों से मुतालिक मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मुतालिका फरीकैन के लिए भारत का मौकफ कतई, वाजह और अच्छी तरह जाना पहचाना है। उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तर्जुमान ने कहा कि सूरत हाल पर तबसरा करने का किसी भी दूसरे मुल्क को कोई हक नहीं है। आज वियतनाम के दनांग में 23 साल तक की उम्र की कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों ने अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला बरकरार रखा और मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के 2, चांदी के 2 और कांसे का एक तमगा जीता। 65 किलोग्राम जुमरे में मोहित कुमार ने किर्गिस्तान के खिलाड़ी को 12-4 से हराकर सोने का तमगा जीता। 79 किलोग्राम के जुमरे में चंद्रमोहन ने भी कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी के साथ एक सनसनीखेज मुकाबले में उसे 7-6 से शिकस्त दी। इस दौरान 92 किलोग्राम के जुमरे में पुनीत कुमार ने चांदी का तमगा जीता। 125 किलोग्राम के जुमरे में भी भारत को चांदी का तमगा मिला। बैडमिंटन में आज ओलंपिक में 2 बार तमगा हासिल करने वाली PV सिंधु और भारतीय मर्दों

एक डबल की जोड़ी सत्विक सैराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन के 16वीं राउंड में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी को 21-17 और 21-18 से हराकर टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खास खबरें एक बार और। मरकज ने दरअंदाजी और दिगर वजूहात के बायस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निजाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। भारत में पोषण से स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में हाल ही में सेहत मिशन की शुरुआत हुई और आज हम सेहत मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम सेहत मिशन पर दो विशेषज्ञों से विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप महानिदेशक डॉक्टर डीके यादव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर प्रियंका बंसल। तो हाल ही में लॉन्च हुए सेहत मिशन पर हम बात करने के लिए अब सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर डीके यादव, फसल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद।
0: साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत का पूरा फुल फॉर्म है और इसमें जो हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम किस तरह से खेती के जरिए, फसलों के जरिए सेहत में पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं सेहत मिशन में खेती के रोल को और किस तरह से इसमें आपकी भूमिका है?
1: सेहत मिशन का जिस तरह से आपने भी जो इलाबोरेट करके बताया कि साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप जानते हैं भली भांति जो हमारा भोजन का जितना भी सप्लाई है उसमें कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और हम विभिन्न खाद्य फसलों में, जो बागवानी फसलों में किस्मों का विकास करते हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा बनती है, तो उनके द्वारा किस तरह से हम हमारे हेल्थ को सुधार सकें, किस तरह से आम जन का जो स्वास्थ्य संबंधित बहुत सी, जैसे हम बात करें कुपोषण की समस्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, तो एक बड़ी भारी, ताकि भारत में पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है, तो उस समस्या को कृषि के द्वारा किस तरह से हम एक तरह से उसको एड्रेस करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पोषण कार्यक्रमों के द्वारा और जिस तरह का सेहत पर जो आम जन के असर पड़ता है तो उससे देश को काफी, जो जीडीपी में काफी नुकसान होता है, और उस नुकसान को किस तरह से कम करें और जो भी हमारे आम जन है, चाहे वो खेतिहर मजदूर है चाहे किसान है, सभी को कहीं ना कहीं इम्बेलेंस न्यूट्रिएंट्स की वजह से, कुपोषण की वजह से उनकी जो क्षमता है या बीमारी पकड़ने की जिस तरह की एक टेंडेंसी रहती है वो अधिक रहती है। तो इस मिशन का मेन मुद्दा यही है कि जैसे जो कृषि में हमने जिस तरह से पोषण युक्त विभिन्न किस्में उत्पन्न की, उन किस्मों को किस तरह से हम आमजन तक ले जाएं और उसको ले जाने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सेहत मिशन के द्वारा जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, तो उन दोनों का जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, तो उसमें एक तरह से हमने चार पांच मुद्दे उसमें रखे हैं, जिसमें एक जो मुख्य मुद्दा है, इसमें एक कंपोनेंट है कि पौधों और पशुओं से मिलने वाले बायोफोर्टिफाइड प्रोडक्ट का स्वास्थ्य पर असर। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि

0: हमारा जो बायो फोर्टिफिकेशन का कार्य सिर्फ फसलों में ही नहीं है, जैसे खाद्य फसलों और बागवानी में, उसमें हम पशुओं में, मछलियों में भी उस पर कार्य कर रहे हैं, और उससे किस तरह से हमारे दिन प्रतिदिन के भोजन में जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, तो उसके लिए इसमें अध्ययन हम आईसीएमआर के साथ मिलकर करेंगे। तो उसमें जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य होगा कि किस तरह से ज्यादा बायो फोर्टिफाइड किस्में पैदा करें और इन किस्मों को किस तरह से हम आम जन तक जो हमारी फूड चेन में ले जाएं। उसके बाद जो आईसीएमआर का जो मेन मुद्दा, जो उनके रिसर्च के कंपोनेंट रहेंगे, उसमें एक बायो अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है कि आपने किसी किस्म में आपने कहा कि वे जो प्रोटीन है वो 12% है, गेहूं में जैसे हम कहते हैं 12.5% है, और आमतौर पर जो गेहूं में प्रोटीन 8 से 9% होता है, तो 12.5% की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है कि भाई वो जो भी कंज्यूमर उसको खाता है उसका एक्चुअल में अवेलेबिलिटी उसको कितनी होती है, उस तरह की स्टडी हमारे सिस्टम से हम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से बायोमार्कर का रिस्पॉन्स क्या आता है और उसका ओवरऑल हेल्थ पर उनके नतीजे जो आते हैं उनका मूल्यांकन कैसे करें कि आपका नॉर्मल भोजन करता है और उसमें जो बायो फोर्टिफाइड जो भोजन करता है तो उससे कितना उसके हेल्थ पर उसका असर पड़ता है, उसकी स्टडीज हम आईसीएमआर के साथ मिलकर साइंटिफिक तरीके से करेंगे।
1: जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन सी किस्में या फसलें हैं जिन पर काम हो रहा है जिससे कि ज्यादा मात्रा में पोषण मिल सकता है, और बायो फोर्टिफाइड फसलों के उन किस्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, और खासतौर पर किसान उन फसलों को पैदा करने की ओर प्रोत्साहित हों इस बारे में भी क्या कुछ आईसीएआर की तरफ से कुछ काम हो रहा है?
0: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये प्रश्न पूछा। अभी हम हाल में जो है 16 खाद्यान्न फसलों में और 16 ही बागवानी फसलों में बायो फोर्टिफिकेशन पर कार्य कर रहे हैं, तो जो उसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन जिन फसलों में जैसे जो आमतौर पर जितने भी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन, जिंक है, और कुछ एक में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं उनको भी रिमूव करने का, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक हमने पिछले जो 11 वर्षों में 203 बायो फोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया, जिसमें जैसे मैंने बताया 16 खाद्य फसलों की 187 किस्में हैं, जिसमें चावल की 16 किस्में हैं, गेहूं की 70 हैं, जौ की 1 है, मक्का की 43 हाइब्रिड्स हैं, बाजरा के 18 हाइब्रिड्स हैं, रागी के 4 हैं, कुटकी की 2 किस्में हैं, कंगनी की 1 है और मसूर की 2 तथा चना और फावाबीन की 1-1 किस्म है।
1: अंत में थोड़ा सा ये भी बताएं कि किसानों तक इनके बीजों को पहुंचाने के लिए, किसान इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित हो, इस मामले में क्या कुछ किया जा रहा है?
0: इस मामले में हमने निश्चित रूप से पिछले ये मान लिए आपके 8-9 वर्षों में काफी प्रयास किए। तो बीज का जब किसान तक बीज जाता है तो उसकी पहली श्रेणी होती है प्रजनक बीज का उत्पादन, जो कि हमें विभिन्न राज्यों से और सीड प्रोडक्शन की एजेंसी से उसको आईसीआर में प्राप्त होता है मिनिस्ट्री के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो उनको हम जितनी बायो फोर्टिफाइड किस्में हैं, जब हम इसका स्टेट का सीड रोलिंग प्लान बनाते हैं, जो ब्रीडर सीड के लिए जब डिस्कशन होता है स्टेट्स की सीड एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर और जितने भी जो बीज उत्पादक होते हैं, पब्लिक एनजीओ है, पब्लिक सेक्टर टेकिंग है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं और हमारा एक यही प्रयास रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बायो फोर्टिफाइड किस्मों के इंडेंट दें ब्रीड सीड उत्पादन के लिए। उसके अलावा जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, उसमें भी एनएफएसएम में भी जो बायो फोर्टिफाइड किस्मों के लिए एक विशेष उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक घटक रखा गया है, ताकि किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा उसका बीज पहुंचे। फार्मर्स के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी दूरदर्शन के द्वारा, रेडियो के माध्यम से और हमारे केवीके जो काम करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, कृषि विश्वविद्यालय, आईसीआर के इंस्टीट्यूट, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बायो फोर्टिफाइड किस्मों के बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें और उनका बीज पैदा कर किसानों तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल, तो आईसीएमआर और आईसीएआर की जो ये संयुक्त पहल है हेल्थ की, कि पोषण के जरिए हम अपने स्वास्थ्य को मजबूत करें देश भर में, तो इस पहल के हमें निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में वो सकारात्मक नतीजे जरूर दिखेंगे, जिस तरह से अभी हमने डॉक्टर डीके यादव के साथ चर्चा की कि किस तरह से बायो फोर्टिफाइड फसलों के जरिए हमारे शरीर तक पोषण को पहुंचाने का काम अब तेजी से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीके यादव, आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को सेहत मिशन के जो एग्रीकल्चर का पहलू है, खेती का पहलू है, उसके बारे में विस्तार से बताया।
0: धन्यवाद।
1: हम बात करने जा रहे हैं इस सेहत मिशन पर डॉक्टर प्रियंका बंसल के साथ। डॉक्टर प्रियंका बंसल आईसीएमआर में सीनियर साइंटिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर प्रियंका बंसल। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सेहत

0: में प्रिवेंटिव हेल्थ पर ज्यादा फोकस किया गया है कि बीमारी से पहले ही देश इतना स्वस्थ हो जाए कि पूर्ण पोषण के जरिए गंभीर बीमारियों तक हम ना पहुंचे। तो कैसे आप देखती हैं इस मिशन के मकसद को?
1: आपने बिल्कुल सही बोला है कि सेहत मिशन पे हम प्रिवेंटिव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि लोग जहाँ बीमार होने से पहले ही हम किस तरीके से उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन के तरीके में हम चेंजेस ला पाएं जो उनको हेल्थ की तरफ ले जाए। तो अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो जो ये सेहत मिशन है इसकी सोच बहुत सरल है, जो कहती है कि जैसा भोजन वैसा मन और वैसा तन। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के लिए जो हमारे देश के लोग हैं, हम उनकी थाली को अधिक पौष्टिक कैसे बना पाएं। तो जो हम खाना खाते हैं हम उसी खाने को, उनको कुछ अलग से नहीं करना पड़े, मगर हम उसी खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषण तत्व हैं, उसको कैसे बढ़ा पाएं। और इसी सोच के साथ ये सेहत मिशन स्टार्ट किया गया है, एक संयुक्त राष्ट्र का मिशन है जिसमें ICAR जो है वो अपने बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स और अपनी फसलें बनाएंगे जिनमें पोषक तत्व ज्यादा है, और उन्हीं चीजों को हम, उनका जो वैज्ञानिक प्रमाण है कि उनका स्वास्थ्य पे लाभ क्या होता है, वो ICMR टेस्ट करेगा, और जिससे कि हमारे को पता चले कि कौन सा खाना, कौन सी क्रॉप, कौन सा इनोवेशन जो एग्रीकल्चर में हुआ है, हम उसको बेहतर हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं।
0: जी डॉक्टर प्रियंका बंसल, कुपोषण के हमारे सामने पहले बड़े आंकड़े आते रहे थे और अब सरकार के पोषण अभियान पहल और तमाम पहलों के जरिए कुपोषण को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। सेहत मिशन भारत में कुपोषण को खत्म करने में किस तरह से भूमिका निभाएगा, और साथ ही जो देश में हम सभी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, इस तरह की समस्या को दूर करने में भी सेहत मिशन की किस तरह से भूमिका होने वाली है?
1: सरकार के जितने भी उन्होंने प्रयत्न करे हैं उससे हम धीरे धीरे कुपोषण के अगेंस्ट लड़ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं और उसको कम कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी एक सच बात है कि हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, ये सब बढ़ रहा है। तो इन्हीं चीजों के लिए ये सेहत मिशन बना है। जैसे मैंने बोला कि इसमें हम क्या करेंगे, जो पोषक फसलें हैं, बेहतर आहार प्रणालियां हैं, इन सबको हम टेस्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनको हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से कैसे शामिल कर सकते हैं। जो हमारे देश में इतने राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चाहे वो कुपोषण को लेकर है, अनीमिया को लेकर है, उनमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं फूड से रिलेटेड, जो कि सेहत हमें बताएगा और इससे हम अनीमिया, कुपोषण और गैर संचारी रोगों की रोकथाम में हमें मदद मिलेगी। तो सरल शब्दों में स्वस्थ खेत से स्वस्थ भारत हमारा मिशन है।
0: जी, तो जो स्वास्थ्य के मानक है, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में सेहत मिशन के जरिए उसमें हम सुधार देख पाएंगे, जिससे कि सूक्ष्म पोषण लोगों तक जब इस मिशन के जरिए पहुंचेगा तो क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है भविष्य में?
1: मुझे पक्का यकीन है कि इस मिशन से और इससे जो हम डेवलप कर पाएंगे फसलें या मॉडल, हम किस तरीके से फार्मर्स की हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, किसान भाइयों की हम हेल्थ पे भी इस मिशन के अंडर काम कर रहे हैं, तो इससे जो मुझे लगता है कि एक तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जिसकी आपने भी बात की थी, चाहे वो आयरन हो, विटामिन डी है, कैल्शियम है, जिसमें हमारे देश में कई लोगों में कमी पाई जाती है, हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। और अनीमिया या जो भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं वो हमें उस तरीके से दिखती नहीं है, मगर वो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी, हमारा जो डेली का रहना सहना, काम, इन सबको इफेक्ट करता है, उसको कम करता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हम ये मानते हैं कि इस मिशन से हम उसको रोक पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे डेफिशिएंसी को। दूसरा, कुपोषण को हम इससे देख पाएंगे। और तीसरा जो हमारा बड़ा एक इसमें हम जो देख रहे हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को, हम इसमें इस तरीके का देख रहे हैं कि क्या कोई फसल ऐसी है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे आपका जो खून में शुगर की मात्रा है वो पता चलती है, वो आपकी कम रेज हो उसको खाने से, या फिर आपका जो रक्तचाप है वो कम हो उस चीज को खाने के लिए। तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमारे देश में अभी बढ़ते हुए की तरफ है, वो हम किस तरीके से कम कर पाए।
0: हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी ICAR के उप महानिदेशक, जिन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से फसलों के जरिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाएगा। हम ICMR की भूमिका के भी बारे में थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि तकनीक के स्तर पर या चिकित्सा के स्तर पर ICMR की क्या भूमिका होने वाली है इस मिशन में।
1: देखिए जैसे कि आपको यादव सर ने बताया

0: कि ICAR ने क्रॉप्स बनाए हैं, फसलें बनाई हैं जो कि नॉर्मल फसलों से ज्यादा पौष्टिक हैं, मगर उनका जो हमारे देश में और हमारे देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है उसमें वो नहीं आ पाए हैं अभी तक। उसका रीजन ये है कि उसके साथ वैज्ञानिक प्रमाण नहीं जुड़ पाया है कि इसका स्वास्थ्य में लाभ क्या है, कि फसल तो बन गई मगर उनको लोगों को खिलाकर उसका जो असर देखना है कि क्या असर हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, कुपोषण पे, वो हमारे पास अभी सीमित है। तो इस मिशन में ICMR का रोल है वो वैज्ञानिक प्रमाण को निकालना, उसको एविडेंस को जनरेट करना कि इसका स्वास्थ्य लाभ क्या है। तो हमारी जो भूमिका है, क्योंकि ICMR का जो रोल है वो यही है कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का एविडेंस जनरेट करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कितना खाना चाहिए, ये हम सेहत में इसी उस पे चलेंगे।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका बंसल, आप कार्यक्रम में जुड़ी।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल News on AIR Official और हमारे मोबाइल ऐप News on AIR पर भी सुन सकते हैं।

0: आप सुनिए कार्यक्रम खेल दर्पण, प्रस्तुति आकाशवाणी प्रयागराज की है।
1: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं अभय कांत तिवारी स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम खेल दर्पण में। आज के अंक में आप सुनेंगे अर्जुन पुरस्कार विजेता जिम्नास्ट आशीष कुमार से सुंदरम तिवारी की भेंटवार्ता और हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत और अंत में सुनेंगे इस सप्ताह के खेल समाचार।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं सुंदरम तिवारी और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न केवल प्रयागराज बल्कि भारत को भी स्वयं पर गर्व करने के कई अवसर दिए हैं। प्रयागराज के जाने माने अर्जुन अवार्डी जिम्नास्ट श्री आशीष कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में।
4: धन्यवाद।
3: आशीष जी, एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। एक जो आम माता पिता है वो अपने बच्चों से ये बात कहते हैं एक उम्र में, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने इस कहावत को झुठला दिया। कितना मुश्किल था ये डिसाइड करना या कितना आसान था आपको अपने माता पिता को कन्विंस करना कि मैं एक खेल को अपने प्रोफेशन के तौर पे चुनूंगा? कैसे आपने कन्विंस किया था अपने माता पिता को?
4: देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर खेल का अपना अलग नेचर होता है, अपनी अलग प्रतिक्रिया होती है। जहाँ तक बात है जिम्नास्टिक की, तो जिम्नास्टिक्स में क्या है कि बच्चों की जो प्रशिक्षण है वो बहुत कम उम्र से स्टार्ट होती है। तो बच्चों का जो ट्रेनिंग है, जो एक्चुअल एज है जिम्नास्टिक में, वो 4 साल मानी गई है। अच्छा, उसके पीछे भी कारण है क्योंकि हमारे गेम में क्या है, स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके शरीर का लचीलापन, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। 50% स्ट्रेंथ, 50% फ्लेक्सिबिलिटी, ये होना बहुत जरूरी है।
3: अच्छा,
4: तो जब बच्चा छोटा होता है, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है क्योंकि अभी उनकी शरीर विकसित हो रही है, हड्डियां लचीली हैं। आपने देखा होगा कि मटका होता है जब बनता है, हाँ। तो वो आपके हाथ में होता है, आप उसको जिस शेप में ढालेंगे वो ढल जाएगा। तो जिम्नास्टिक को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इसीलिए कहा जाता है कि जिम्नास्टिक्स में जो बच्चा ढल जाता है वो कोई भी गेम हो वो अच्छा ही करेगा। इसीलिए आप देखिए कई ऐसी कंट्रीज, स्पेशली चाइना, जहाँ पे जिम्नास्टिक कंपलसरी है
3: जी।
4: कि बच्चों को पहले 5 साल जिम्नास्टिक करानी ही करानी है।
3: आपके केस में किसने निर्णय लिया? आपने निर्णय लिया कि मुझे खेलना है, या आपके फादर मदर जो आपके पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजूंगा?
4: ऐसा था कि मैं 4 साल का था, मेरे फादर रेलवेज में थे, वो गाजियाबाद पोस्टेड थे।
3: अच्छा।
4: उनको तो पता भी नहीं था कि मेरा एडमिशन हुआ है। 1992 में नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जिम्नास्टिक का सेंटर जो बॉयज के अंदर है वो खुला, तो वहां से ये शुरुआत हुई। मेरे भाई ने मेरा एडमिशन कराया जिम्नास्टिक हॉल में
3: जी।
4: और मेरे फादर को नहीं पता था, मेरे फादर को बहुत बाद में पता चला कि मैं जिम्नास्टिक जाता हूं। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत है जिम्नास्टिक की।
3: क्या बात है। जिम्नास्टिक में आपने जैसे बताया कि मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है,

0: लचीलापन, फुर्ती
1: जी
0: जरूरी होती हैं। 2006 सूरत जो पहला पदक शायद आपको मिला, पहली
1: जी
0: सफलता जब किसी न्यूज़पेपर ने आपका नाम शायद पहली बार छापा, एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, थोड़ा सा उस मूवमेंट के बारे में हमें बताएं जब पहली बार आपको लगा कि आप आशीष कुमार से एक सेलिब्रिटी आशीष कुमार के रूप में परिवर्तित हो गए।
1: ये 2006 मेरा सीनियर का पहला कंपटीशन था,
0: अच्छा,
1: और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो मैंने 2006 में खेला था, एक्चुअल में मेरी जो एज थी
0: जी
1: उस टाइम

0: और बहुत लोगों को पता ही नहीं कि जो मैंने 2006 में खेला था, एक्चुअल में मेरी जो एज थी
1: जी
0: उस टाइम पे जूनियर की थी,
1: अच्छा
0: बट मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बेटर थी, इम्प्रूव्ड थी, तो मुझे सीनियर खिलाया गया। और 2006 एशियन चैंपियनशिप से मेरा पहला सीनियर में जो कंपटीशन था वो कॉमनवेल्थ गेम्स का था।
1: अच्छा
0: वहां से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि क्या होता है जब आप खेलते हैं तो आपको पता चलता है अरे ये इतना बड़े लेवल का कंपटीशन है। फिर 2006 एशियाई चैंपियनशिप जो सूरत में हुई थी,
1: जी
0: भारत के पास इससे पहले सीनियर एशियन कैटेगरी में कोई भी मेडल नहीं था। हम वहां गए, ट्रेनिंग की, और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि वहां पे फ्लोर एक्सरसाइज जिसपे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था
1: हाँ
0: 2006 में, ये हुआ। और 2008 ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट भी आया हुआ था जिसने 2008 में गोल्ड लिया है फ्लोर पे।
1: अच्छा
0: तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बट सबसे अच्छी चीज नर्वस नहीं था, एक एंजाइटी थी, डर था। और जब मैं फाइनल में पहुंचा, इंडिया से अकेले मैं ही फाइनल में पहुंचा था,
1: जी
0: और फ्लोर इवेंट मेरा बेस्ट इवेंट उस पे था। इंडिया क्राउड, मैंने पहली बार देखा कि इंडिया में जिम्नास्टिक का कॉम्पिटिशन हो रहा है, और मोर देन आई थिंक 3 to 4 thousand पब्लिक उस स्टेडियम में थी। और बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट था इंडिया में। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इंडिया में इतना बड़ा कंपटीशन खेलने का।
1: अच्छा
0: जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की एंग्जाइटी को कंट्रोल करके, और जब मेरा मेडल आया तो वो मतलब बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मेरे लिए एक्सपीरियंस था। एज कम थी तो मुझे इन सब चीजों का मतलब नहीं पता था कि पहला मेडल जो जीतता है तो कैसा फील होता है। बस मेरे लिए था कि मैंने मेडल जीत लिया, मैं बहुत खुश था, क्योंकि कम एज में बच्चों का माइंड दूसरे तरीके से काम करता
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल
0: अब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार कंट्री का पहला मेडल एशियन चैंपियनशिप में सीनियर में एक बहुत बड़ी बात होती है।
1: निश्चित रूप से बड़ी बात
0: जी
1: होती है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल, फिर 2010 का ही ज्वांग खेल, 2011 का ढाका दक्षिण मध्य एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, और फिर 2011 में एक भारत का जो सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जब मिला आपको, वो क्षण कैसा था?
0: देखिए, अर्जुन पुरस्कार जिस समय मिला, अब उसको मेरा बैड लक कह लीजिए, जिस टाइम पे अर्जुन पुरस्कार मिलना था उस समय हम लोग लंदन में कैंप कर रहे थे, क्योंकि
1: अच्छा
0: उसी साल ओलंपिक से क्वालिफिकेशन होने थे जापान में। और सेम टाइम पे ही, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं,
1: जी
0: राष्ट्रपति भवन में मिलता है, तो मेरे लिए एक बड़ा ही चैलेंज उस समय आया, क्योंकि मेरी पूरी टिकट्स बुक थी इंडिया आने की। अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि जिस डेट में ये पुरस्कार वितरण होने थे उसी डेट के एक दो दिन गैप में वर्ल्ड कप होने थे
1: अच्छा
0: बेल्जियम में। मेरे लिए चैलेंज ये था कि अगर मैं इंडिया ट्रेवल करता हूं तो देखिए, आप इतनी दूर से इंडिया ट्रेवल करेंगे, एक दिन आपको लेने में लगेगा, और फिर सेम डे आपको वहीं से डायरेक्ट बेल्जियम जाना पड़ता, तो मेरा बीच का जो ट्रेनिंग था वो छूटता,
1: अच्छा
0: आपको वहां पर ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता।
1: जी
0: तो उस टाइम पे मैंने कंपटीशन को सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे लिए उस समय वो जरूरी था। वो मेरा एक सेक्रीफाइस था जिसको मैं मिस करता, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑनर लेना अपने आप में एक ऑनर की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन जैसा मैंने बोला, उस टाइम पे मैं एज अ प्लेयर, तो मेरे लिए डिसीजन ये था कि ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जाके हमारा आगे के ओलंपिक्स के रास्ते खुलेंगे। तो वहां पे मैं उसमें नहीं गया था। फिर इंडिया आने के बाद उस समय जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे अजय माकन, उनके थ्रू मैंने अपना अवार्ड लिया, बट उनसे भी वो अवार्ड लेना मेरे लिए बड़ा प्रेस्टीजियस था, क्योंकि
1: जी
0: जब छोटा था तो मैं सुनता था कॉमनवेल्थ मेडल, अर्जुन अवार्ड, मतलब लगता था कि ये वाकई बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है जब आपके पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास बहुत उपलब्धियां हैं, तो आप जब उसको देखते हैं ना, तो कई बार अगर आपको लगता है मैं कैपेबल हूं, तो आप उस चीज को फील कर पाते हैं कि जब वो
1: बिल्कुल
0: चीज हमारे नाम से जुड़ती है तो आपको वो 100 करोड़ जनता से ना अलग कर देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद जब आप प्रयागराज आए, जो मित्र थे, माता पिता, उनकी प्रक्रियाएं कैसी रहीं?
0: क्या होता है नॉर्मली अपने जिम्नास्टिक में, जब कोई मेडल लेता है तो लोग जाते हैं,
1: जी
0: एक नॉर्मल भीड़ होती है। हम ट्रेन से आ रहे थे, मैं थे, मेरे फादर, मदर और डॉक्टर यूके मिश्रा,
1: जी
0: हम सब साथ में ही ट्रेन से वापसी कर रहे थे। और मुझे लगा कि बड़ा मेडल है, लोग होंगे, बट लिटरली जब ट्रेन जंक्शन पे लगने लगी, आप सोचिए मुझे 300 मीटर दूर से ही ना ढोल नगाड़े की आवाज आने लगे,
1: क्या बात
0: तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, मुझे लगा लग रहा लोग आए हैं। बट लिटरली जब मैंने इंटर किया, मुझे इतना क्राउड दिखा, इतना क्राउड, मुझे लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही भीड़ है, मतलब एक्सेप्शनल क्राउड, पूरा स्टेशन भरा हुआ था।
1: जी
0: मैं अपना पैर स्टेशन पे रख ही नहीं पाया, निकलते ही गोदी में लेके मुझे मिश्रा सर को, जो मेरे कोच थे, डीके राठौर, माले पे माला, और कोई भीड़ से निकल के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, यंग्स बच्चे जो नए ज्वाइन किए हुए थे, और स्टेशन पे बाकी लोग, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं उनको नहीं पता, लेकिन जब उनको भी पता चल रहा था तो वो भी क्राउड में सम्मिलित हो रहे थे,
1: जी
0: वो भी

0: देखना चाह रहे थे कि भाई पहला मेडल जिसने लिया है कौन है, तो वो मेरे लिए मेरे लाइफ टाइम का एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है।
1: आपकी इस अचीवमेंट से हटके अब आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते आपका जो ज्यादातर समय होगा वो निश्चित रूप से आप अपनी प्रैक्टिस पे देते होंगे। एकेडमिक्स जो आपकी एजुकेशन थी वो कैसे आप उसमें एजुकेशन और अपनी प्रैक्टिस में बैलेंस बनाते थे?
0: जिमनास्टिक्स में जैसे मैंने बताया, मैं नर्सरी में था जिस समय मैंने ज्वाइन किया, मैं 4 साल का था। तो क्या होता है, नर्सरी प्रेप ये फिर भी मैनेजेबल होती है स्टडी। जब 2013 में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला टूलिट पीटर कप हंगरी बुडापेस्ट में, उसको खेलने के बाद क्या होता है, अंडर 14 जब आप खेलने लगते हैं तो आपका ट्रेनिंग बर्डन बढ़ने लगता है। और जिमनास्टिक्स में हम लोगों की सुबह की ट्रेनिंग 4 बजे से होती है, शाम को भी, मतलब एक दिन में 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग होती थी। 2013 के बाद मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं कई बार ऐसा भी होता था कि हफ्ते में 2 दिन ही स्कूल जाता था। बट इंटरनेशनल खेलने के बाद मैं आपको बताऊं, मैं नर्सरी से लेके 8 तक राजापुर में एक स्कूल है, वहां की प्रिंसिपल ने मुझे काफी सपोर्ट किया उस टाइम पे। और फिर देखिए 2013 अगर आप देखेंगे तो काफी बैक की बात है। फिर स्कूल्स को क्या रहता है ना, उनको एक्सपेक्टेशंस कम होती है कि स्कूल से कोई बच्चा निकल के यहां तक जा सकता है, वो भी जिम्नास्टिक जैसे स्पोर्ट्स में, क्योंकि जिम्नास्टिक्स को उस समय उतनी वो नाम नहीं मिला
1: हाँ,
0: था,
1: उतनी पॉपुलरिटी
0: हाँ
1: नहीं थी इंडिया
0: पॉपुलरिटी
1: में।
0: नहीं थी। लेकिन जब मैं खेल के आया, वहां से मैंने लगभग 5 मेडल जीते थे, तो स्कूल्स वाले काफी सपोर्ट करते थे और
1: कुल मिला के तालमेल बन गया
0: तालमेल बन
1: बन
0: गया।
1: गया। आशीष जी, एक सीनियर प्लेयर के रूप में आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं?
0: जो यंग बच्चे हैं,
1: जी
0: स्पेशली 4 से लेके 10 साल 12 साल तक के
1: जी
0: बच्चे, उनको डेफिनेटली स्पोर्ट्स में आना चाहिए। क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसमें डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो रहा है।
1: अच्छा
0: अभी गवर्नमेंट ने, अब देखिए खेलो इंडिया स्कीम्स है,
1: जी, मैं ये बात पूछना ही चाह रहा था कि जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों में तो जो व्यावसायिक तौर पे जो प्रोफेशनल स्टेडियम भी हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पर तो संभवतः हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गवर्नमेंट से ही होती हैं, तो
0: हाँ
1: उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, ये भी मैं
0: देखिए,
1: पूछना चाह
0: मैं
1: रहा था।
0: उनके लिए स्पेशली आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा ऑब्जर्व रहा है, बड़े शहरों की उपेक्षा छोटे शहरों में टैलेंट बहुत ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है पेरेंट्स को अवेयर होने की। देखिए क्या होता है, बच्चा छोटा है, 4 साल का बच्चा, उसको क्या पता क्या करना है। आपको पता है बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसे वो पता है, लेकिन अब पेरेंट्स को भी अवेयर होना है कि नहीं, बच्चे को मुझे एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में डालना है, जिमनास्टिक में डाल दीजिए, बैडमिंटन में डाल दीजिए।
1: तो ये बेसिकली माता पिता की जिम्मेदारी है कि
0: जी
1: वो डिसाइड करे कि बच्चे को किस दिशा में भेजना है। ठीक
0: जरूर,
1: है, चलते चलते बस एक सवाल ये कि सफलता के क्षण तो सभी शेयर करते हैं, सभी इंजॉय करते हैं, सफलता के क्षण शायद एक स्पोर्ट्समैन के जीवन में कम ही होते हैं, असफलताएं और दबाव ज्यादा होते हैं, उनसे कैसे आप निपटते थे? और एक सवाल और कि जो युवा इस समय स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें?
0: देखिए जहां तक सवाल है असफलता का, तो स्पोर्ट्स का शब्द ही यही है कि आपको गिरना, खड़े होना,
1: जी
0: ये स्पोर्ट्स सिखाता है, ये आपको कोई और नहीं सिखा सकता। और शायद यही एक कारण है कि एक स्पोर्ट्समैन जब गिरता है, सफलता है, तो वो उसको मेंटली टफ बनाता है, और जो प्लेयर उससे जूझ के आगे निकलता है तो वो या तो इतिहास रचता है या तो अपना एक नाम बनाता है
1: जी
0: और अच्छी जगह पे सेटल होता है। और युवाओं को मैं एक बड़ी छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ,
1: जी
0: जो मेरे सीनियर्स डॉक्टर यूके मिश्रा जी ने मुझे बताया था,
1: जी
0: और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, लोगों की थिंकिंग है कि मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, जो मेन चीज है वो है समय। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 4 साल से लेके 18 साल तक ये आपका समय है काम करने का, चाहे आप स्टडी में करिए चाहे स्पोर्ट्स में करिए। जिसने अपने आप को इन 18 साल में जी तोड़ मेहनत कर दी किसी भी फील्ड में, मैं स्पोर्ट्स की भी बात नहीं कर रहा हूं, चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स में तो है ही है, अगर इस समय आपने अपने आप को मेहनत करके ढाल दिया, तो ये आप मान के चलिए आपका आने वाला समय आरामदायक होगा। लेकिन अगर इस समय आपने आराम कर लिया तो आगे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा।
1: निश्चित रूप से आशीष जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण और रुचिकर बातें की हमसे, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आइए अब सुनते हैं हैमर थ्रो खेल चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत।
3: खेल से शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, मानसिक महत्व भी इसका कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जीवन में जो चुनौतियां आती हैं खेल के दौरान, मैदान में आपको अक्सर देखने को मिलती है, तो चुनौतियों का सामना करने में खेल का कितना महत्व है उससे

0: हमें कुछ सीख मिलती है। आज हम हैमर थ्रो, एक खेल है, उस पर बात करेंगे और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, भारत में इस खेल की लोकप्रियता क्या है और उसके समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हैमर थ्रो खिलाड़ी चंद्रोदय नारायण सिंह जी। चंद्रोदय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चंद्रोदय जी, आप हमारे श्रोताओं को अपने विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें।
1: मेरा नाम चंद्रोदय नारायण सिंह है
0: जी।
1: मैं अंतर्राष्ट्रीय हैमर थ्रोअर हूँ। प्रोफेशन से मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मौजूदा समय पर मैं इंडियन ऑयल में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ, यहीं प्रयागराज में।
0: आपके कोच रुस्तम खान जी रहे हैं, आप लक्ष्मण अवार्ड 2012 के विजेता भी रहे हैं और जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि आप 9 बार इस खेल के नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2014 के फाइनलिस्ट भी आप रहे हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2013 जो कि पुणे में हुआ था, उसके भी आप रजत पदक विजेता रहे हैं। तो आपका जो एक खेल यात्रा है उसको किस रूप में देखते हैं?
1: मैं अपने खेल यात्रा को ऐसे देखता हूं जैसे मैंने अपनी लाइफ को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आज जो मैं पाया हूं, वो एक हर आदमी चाहता है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए
0: जी। हैमर थ्रो जो खेल है इसको आपने करियर के रूप में चुना है, आपने कब चुना और इस खेल को चुनने के लिए जो प्रेरणा इसके पीछे होती है क्या है?
1: इस खेल को चुनने की प्रेरणा मुझे मेरे मदर फादर से मिली थी। मेरे फादर खुद इंटरनेशनल हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो थे
0: जी।
1: मेरी मदर भी नेशनल हॉकी टीम की खिलाड़ी रही हैं, तो मुझे अपने परिवार की तरफ से पूरा सपोर्ट था स्पोर्ट्स करने के लिए
0: जी।
1: और मेरे गुरु भी, जिनका आप नाम ले रहे, मोहम्मद रुस्तम खान साहब, ये इंडिया के सबसे बड़े हैमर थ्रोअर कोच कहे जाते हैं।
0: अगर भारत की बात करें तो क्रिकेट महत्वपूर्ण खेल है, लोकप्रिय भी है, उसके बाद बैडमिंटन वगैरह का नाम आता है। आजकल जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं उसमें जो स्थानीय लोकल जो खिलाड़ी हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है, तो इससे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हैमर थ्रो जो खेल है, चूंकि भारत में इतना लोकप्रिय नहीं है अन्य देशों की तुलना में, इसको आप किस रूप में देखते हैं? भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं या इसकी चुनौतियां क्या हैं?
1: हैमर थ्रो जो है ये यूरोपियन गेम्स है
0: जी।
1: एथलेटिक्स में एक गेम होता है थ्रो में, जैसे चार थ्रो होता है, जेवलिन, डिस्कस, हैमर, शॉटपुट, तो उस थ्रो में एक कैटेगरी होती है हैमर थ्रो। ये यूरोप से आया था। इसको कहा जाता है वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम। टेक्निकल की बात करते हैं तो वर्ल्ड का मोस्ट टेक्निकल गेम दो होते हैं, एक पोल वॉल्ट होता है, एक हैमर थ्रो है, जिसको वर्ल्ड ने खुद सर्टिफाइड किया है कि मोस्ट टेक्निकल गेम। और इस गेम का सरकार ने जितना बढ़ावा दिया है समय, कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज बहुत अच्छी है। हैमर थ्रो एक ऐसा खेल है कि गांव से जो बच्चे आते हैं वो इसको ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, वो इसको ज्यादा महत्व समझते हैं शहर के मुकाबले, क्योंकि उनको मालूम है कि हैमर में समय देना पड़ता है, आपको 8 साल की प्रैक्टिस देनी पड़ेगी तब आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो ज़्यादा टाइम टेकिंग है ये, मतलब आपकी स्टार्टिंग में तो आपको 5 साल 7 साल 8 साल तो प्रैक्टिस करेंगे, जब आप तब आप उसमें परफेक्ट होंगे। एक कहावत कही थी ना, प्रैक्टिस में मेक परफेक्शन
0: जी।
1: तो हम हैमर को इस रूप में देखते हैं।
0: आपने जो हैमर थ्रो खेल चुना उसकी भारत में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लोकप्रियता कम है, तो इसको अगर कोई एक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी है या शहरी पृष्ठभूमि का है वो अगर इसका चुनाव करता है तो उसके लिए क्या क्या कठिनाइयां सामने आती हैं और साथ ही साथ भारत में क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा या निजी प्रयासों के द्वारा?
1: हैमर एक ऐसा गेम है जो इस टाइम हमारे गांव में बहुत ज्यादा एडवांस है। गांव के बच्चों को उसको खेलने में मजा आता है, उनको देखने में भी उतना अच्छा लगता है कि वो सोचते हैं कि इसको करने के लिए। इसके साथ कठिनाई ये है कि ये आपको देखिए, नॉर्मल खिलाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल हैमर थ्रो बनने के लिए आपको डाइट, उसके बाद रेस्ट आपकी कितनी है, कितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके साथ मेहनत कर सकते हैं।
0: आपने मेहनत की बात की, लेकिन मेहनत के साथ साथ जब सुविधाएं मिलती हैं, यानी तकनीक, जिसे आज के समय में हम कह सकते हैं, तकनीक का इस खेल में कितना योगदान है?
1: तकनीक का तो इसमें इस खेल में इतना योगदान है कि ये वर्ल्ड का, विश्व का सबसे कठिन गेम कहा गया है। जो इसकी टेक्निक कही जाती है, जिस तरीके से इसको फेंका जाता है, वो एक तरह से मतलब कि बहुत चैलेंजिंग होता है एक आदमी के लिए। एक आदमी जब स्पोर्ट्स करने आता है तो हैमर जब उठाता है तो स्टार्टिंग मतलब देखने में तो अच्छा लगेगा कि ऐसे टर्न कर सकते हैं हम, लेकिन जब आप 7.5 किलो का हैमर उठाते हैं, उसको स्विंग करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इस गेम में हम जितनी टेक्निक, जितना हम नेचर से, जितना हम फिजिक्स से, बायोलॉजी जो हम जान रहे हैं उसका यूज करते हैं तो उसका हमको रिजल्ट मिलता है। अगर हम उसका रिजल्ट, उसका यूज नहीं करेंगे तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं कि परफॉर्मेंस नहीं बढ़ना, मीटर चेज नहीं होना, जो टारगेट मिला वो टारगेट चेज नहीं हो पाते हैं।
0: आज भी ये खेल, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव के पृष्ठभूमि के लड़के हैं या खिलाड़ी हैं वो इसको सहज रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय

0: और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें तो इस खेल में भारत के जो खिलाड़ी हैं उतना प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्या कारण है इसका?
1: थोड़ा सा भारत में थोड़ा सा टेम्परेचर की बात होती है, क्योंकि ये यूरोप से आया है तो यूरोप आप जान रहे हैं कि ठंडा राज्य रहा है
0: जी।
1: भारत में आप गर्मी का तो उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है खिलाड़ियों को, लेकिन आप हैमर का जहां तक हम देख रहे हैं कि ये 8-10 साल बाद, जैसे आज हमारे देश में नीरज चोपड़ा जी हैं जिन्होंने जेवलिन में नाम रोशन किया, नहीं अभी तक कोई जेवलिन भी नहीं जानता था
0: जी जी जी,
1: लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे ने ऐसा करके दिखाया कि लोग आज एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो को यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही एक समय आएगा, जैसे डिस्कस थ्रो था, विकास गौड़ा जी थे हमारे, कई ऐसे खिलाड़ी थे, अनिल कुमार जी थे, जिन्होंने उस खेल को बढ़ावा दिया और जिससे लोकप्रिय खेल हुआ। तो ऐसे अब हैमर का भी समय आएगा, हैमर को 7-8 साल लगेगा ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को।
0: किसी भी खेल के पीछे प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की एक महती भूमिका होती है
1: जी।
0: तो इस खेल के लिए भारत में जो ट्रेनिंग की स्थिति है और उसकी क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: चुनौतियां तो बहुत हैं
0: जी।
1: पहली चीज तो स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन में होना चाहिए, ज्यादातर उसको कोशिश करना चाहिए कि वो नॉर्मल आम जनता में नहीं समझे अपने आप को, क्योंकि वो एक खास चीज करने जा रहा है तो उसको अपने आप को खास मानना पड़ेगा इस स्पोर्ट्स को करने के लिए
0: जी। चंद्रोदय जी, आपका एक लंबा खेल अनुभव रहा है, एक लंबा करियर रहा है, वर्तमान में आप सरकारी जॉब में हैं, तो कोई ऐसा यादगार अनुभव हो जिसे आप श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
1: मेरा यादगार लम्हा रहा है जब मैंने विश्व के सबसे बड़े हैमर थ्रो से मुलाकात की थी, जिन्होंने 1986 में 86 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिनको शायद ही लोग नाम सुने होंगे, यूरी सैदिक नाम था उनका
0: जी,
1: यूरोपियन थ्रोअर थे वो। एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब मैं उनके पास ट्रेनिंग कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि जिस साल उन्होंने ओलंपिक मेडल लिया था, उनके जो कोच थे बंदर चुक साहब
0: जी,
1: वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे ओलंपिक में, कोच भी और उनकी ट्रेनिंग भी, कोच थर्ड था और उनकी ट्रेनिंग फर्स्ट सेकेंड थे। तो ये ऐसा यादगार पल था जिसको हमने कभी सुना था, जिनको मोबाइल पे और वीडियोस देख के सीखते थे, उनसे जाके सीखना का एक एक्सपीरियंस जो हमको सरकार ने मौका दिया, फेडरेशन एसआई ने, ओलंपिक संघ ने हमको जो मौका दिया
0: जी,
1: वो दुनिया में सबसे यादगार पल है हमारा।
0: और कोई अनुभव?
1: अनुभव तो बहुत अच्छे अच्छे रहे हैं, अच्छे भी रहे हैं, खराब भी रहे हैं
0: जी जी।
1: अच्छे अनुभव ऐसे ऐसे रहे हैं कि जहां उम्मीद भी नहीं थी वहां पर हम अपना बेस्ट करके गए, कई खिलाड़ियों ने मतलब कि उम्मीद नहीं की थी कि हम बेस्ट हो सकता है वहां बेस्ट हुए। कई जगह अनुभव ऐसे भी थे कि जहां हम पहले से तैयार थे कि ये क्वालिफाई भी करेंगे हम और हम खेलने भी जाएंगे, लेकिन वहां पे कहते हैं ना कि खिलाड़ी का दिन होता है, वो दिन हमारे नहीं थे, हम नहीं क्वालिफाई कर पाए, कई बार अफसोस भी हुआ, दिल भी टूटा, बहुत कुछ होते हैं, खिलाड़ी की जिंदगी बड़ी ऊपर नीचे चलती है
0: जी। चंद्रोदय जी, जब कोई खिलाड़ी एक मैदान पर प्रैक्टिस करता है और जब कंपटीशन के मैदान पर प्रैक्टिस करता है या नेतृत्व करता है देश का, तो उस वक्त कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं और कई बार हम सफल भी हो जाते हैं, तो सफल और असफल होने के बीच की किन किन चीजों की भूमिका होती है, क्या क्या चुनौतियां आती हैं जब हम नेतृत्व करते हैं और उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं?
1: देखिए, खिलाड़ी के लिए सफल असफल तो ये आम बात है
0: जी,
1: क्योंकि जितनी वो मेहनत करता है कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सफल असफलता खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है
0: जी।
1: आज सफल हुए हैं, कल न कल सफल होंगे ही, हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं, कभी ना कभी तो हम सफल होंगे।
0: क्योंकि आप एक हैमर थ्रो खिलाड़ी भी रहे हैं और एक आपका लंबा अनुभव रहा है, तो एक सफल हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए किस प्रकार की अनुशासन और दिनचर्या की आवश्यकता होती है?
1: एक हैमर थ्रो खिलाड़ी बनने के लिए आपको बहुत डेडिकेशन देना पड़ेगा
0: जी।
1: अगर ट्रेनिंग नॉर्मल रूटीन बताया जाए तो सवेरे 5 बजे उठना, 5 बजे से 10 बजे तक प्रैक्टिस करना, फिर अपने रिकवरी में चले जाना, फिर शाम में 2 बजे 3 बजे प्रैक्टिस पर उतरना, 9 बजे तक 8:30 बजे तक प्रैक्टिस करना, तो उसकी एक लाइफ बंधी हो जाती है कि दोस्त यार नहीं रहते हैं, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था
0: जी,
1: तो एक दिनचर्या ये हो गई थी मतलब कि हमको अपने आप को सफल बनाना है बस।
0: आपने डाइट की बात की कि एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए,
1: अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए।
0: जैसे डाइट की आपने बात की, तो डाइट में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करें।
1: देखिए, डाइट तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जितना चाहिए
0: जी,
1: वो उतनी पूर्ण करना चाहिए उस खिलाड़ी को
0: जी,
1: क्योंकि एक खिलाड़ी अपने शरीर का दिन भर में प्रैक्टिस के टाइम कम से कम 10 से 12 लीटर पसीना बहाता है
0: जी,
1: तो उस पसीने को रिकवरी करने के लिए आप पानी से तो कर नहीं पाएंगे, तो आपके लिए उसको हिसाब से डाइट देनी पड़ेगी
0: जी। भारत में इस खेल की संभावनाओं और जो युवा इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: भारत में इस खेल की संभावना मुझे बहुत अच्छी दिखती है
0: जी।
1: मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल

0: छोड़िए, आप रियल वर्ल्ड में आइए, आप चुनौतियों से देखिए, तब आपको बहुत मजा आएगा।
1: चंद्रोदय जी, आप स्टूडियो में आए और इतना महत्वपूर्ण समय आपने दिया, हमें उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता हैं उनको लाभ अवश्य मिलेगा।
2: अब सुनते हैं इस सप्ताह के खेल समाचार। आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ राउंड में सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स ने बनाई अपनी जगह। एथलेटिक्स में पोल वाल्टर, देव मीना और कुलदीप कुमार ने एक ही दिन में दो बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर सुर्खियां बटोरी। और गुरिंदर वीर सिंह ने रांची में आयोजित फेडरेशन कप में 10.09 सेकंड समय के साथ 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसके साथ ही 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। आज के अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति था, जिसे आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं
6: इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही बहती ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आचार्य गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं रागपुरिया धनाश्री। विलंबित रचना झूमरा ताल में निपट है। बोल हैं तोहे गुमान। मध्यलय 3 ताल में है। बोल हैं सैया मोरा परदेस। 3 ताल में निबद्ध तराना के बोल हैं ताना दीम तनोम। तो आइए सुनते हैं राग पूरिया धनाश्री में ख्याल। कलाकार हैं आचार्य गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आचार्य गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का गाया राग पूरिया धनाश्री। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग

0: भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा के साथ कल सवेरे 5:50 पर इसी मीटर पर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।